हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 मई 2026। सुबह के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की तीन दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े पांचवें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को

0: आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भक्ति भौतिक सुखों के लिए नहीं, अभी तो आध्यात्मिक सुखों के लिए होनी चाहिए। सुख का साधन प्राप्त किया जा सकता है, किंतु सुख नहीं। यह निर्णय हर व्यक्ति को स्वयं ही लेना पड़ता है कि वो किस ओर

और में सब कुछ भौतिक और अभौतिक दोनों सर्वोच्च चेतना या ईश्वर से आया है। एक भक्त अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है। भक्ति दिव्य प्रेम या सार्वभौमिक प्रेम पैदा करती है और स्वार्थ की भावना को

भक्ति का मौलिक सूत्र यही है कि हमारी पुकार परमात्मा को ले आती है। एक बार हृदय से पुकारो तो आसन, योग, श्रवण, मनन किसी की जरूरत नहीं। केवल भाव करो, प्रेम से पुकारो तो ईश्वर जरूर आता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुने हमारी आज की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

सुबह 6:40 पर आप सुन पाएंगे श्री रामचरित मानस गान संगीतकार सतीश भाटिया और 6:50 पर सुनेगा कार्यक्रम खेती में आज। सदाबहार नगमों का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 7:00। सुगम संगीत आप सुन पाएंगे सुबह 7:45 पर, सुबह 11:30 पर, सुबह 9:30 और रात्रि 9:15 पर।

नमस्कार उदयपुर, ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सुबह 8:30 पर हमारे FM रेडियो लेक सिटी चैनल और मीडियम वेव दोनों ही चैनल पर आप ये प्रोग्राम सुन सकते हैं। पुरानी फिल्मों से फिल्मी तरानों का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 10:00 गोखड़ा कार्यक्रम। राजस्थानी गीतों पर आधारित ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं सुबह 11:00।

किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत आप सुन पाएंगे दोपहर 2:30 पर। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी शाम 5:00।

किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती और घर आप सुन पाएंगे शाम 7 बजे, जिसमें होगी चौपाल की बात और साथ ही कुछ राजस्थानी लोकगीत। रविवार संगीत सभा आप सुन पाएंगे रात्रि 10 बजे।

ये थे हमारे आज की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुने श्री रामचरित मानस गान, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

सीता स्वयंवर वाले दिवस की प्रातवेला में राजा जनक ने राजपुरोहित शतानंद को मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। मुनि ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को राजा जनक की विनती कह सुनाई। बोले, यज्ञशाला चलकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए कि ईश्वर किसे ये गौरव प्रदान करते हैं। जिस प्रकार पूर्व में सूर्य का उदय होते ही कुमुदिनी सकुचा जाती है और तारागण का प्रकाश फीका होकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्रीराम तथा लक्ष्मण के धनुष यज्ञ स्थल पर आते ही जानकी के स्वयंवर में आए राजाओं के मुखमंडल श्रीहीन हो गए। राजाओं के समूह में श्रीराम और लक्ष्मण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे आकाश पर तारामंडल के बीच दो पूर्ण चंद्र निकल आए हों।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान, संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए अब सुने कार्यक्रम खेती में आज।

खेती में आज कार्यक्रम होने वाला अगले किसान भाई बहना ने नानू भाई रो राम राम सा। देखो सारणी कार्यक्रम में देखो आप जानकारी करा कि किसान भाई बहन जो है देखो बागवानी फसलां पुष्प एवं सगंधीय पौधा जो है एनी टाइम देखो पौध अवस्था में है तो अनारो उचित प्रबंधन कणी प्रकार कर सके है। जटे बागवानी फसलारी बात करा तो नया बाग लगा रहे वाते किसान भाई खट्टा खोद दीदा वेगो और धूप और कीट देखो वना रोग रो नियंत्रण वेग्यो वेगा। अणी टाइम पे अणा गड्ढा में आधा ऊपर वाली मिट्टी और आधी कंपोस्ट में क्लोरोपायरीफास दवा मिलाई ने पूरी तरह देखो अपने ऊपर तक भर देनो है। गर्मी के कारण उचित जल प्रबंधन देखो आवश्यक है। अंडे बाते देखो बागवानी फसला में 10-12 दिन रे अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहनो है और जरूरत रे हिसाबों कटाई छटाई भी करनी चाहे। अणी टाइम पे किसान भाई आम अमरूद पपीता लीची अंगूर आंवला बेर नाशपाती आलू बुखारा और नींबू में देखो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करता रहे। जटे देखो बात करा आम री तो आम में फुदका रोग कीट नियंत्रण रहवाते फला में देखो मटर रे आकारी अवस्था पर मोनोक्रोटोफास 1.25 मिलीलीटर पानी में मिलाई देखो छिड़काव करना है। दासी मक्खी रे नियंत्रण रहवाते कार्बारिल 0.2% लारे 0.1% शर्करा और 0.1% मेलाथियन मिलाई ने ट्रेप बनाई लटकाणो है। जटे खर्रा या पाउडरी रोग रे वाते देखो 0.2% घुलनशील गंधक रो प्रयोग करनो है। कोयलिया फल रे विकार वाते बोरेक्स 1% रो छिड़काव फल लागवा पे सिंचाई रे लारे करनो है। आम्रे फला ने उत्तक क्षय रोग रे बचाव रे वाते 8 ग्राम बोरेक्स रो 1 लीटर पानी में गोल बने छिड़काव करनो है और फला रे गिरवा ने रोकवा रे वाते और वृद्धि हार्मोन NAA 20 PPM रो छिड़काव करनो है। जटे अंगूर की बात करा तो अंडे बाग में गर्मी रे मौसम में 1 सप्ताह रे अंतराल पर सिंचाई करनी है। एंथ्रेक्नोज और स्कोरस्पोरा पत्ती धब्बा रोग री रोकथाम रवाते फाइटालोन या पचे ब्लाइटॉक्स रो 0.3% रो छिड़काव यानी 750 ग्राम 250 लीटर पानी में प्रति एकड़ मई में देखो अपने छिड़काव करनो है और 15 दिन रे अंतराल पर सितंबर तक छिड़काव करते रहनो है। जटे केला री बात करा तो रोपित केला रवाते 1.5 मीटर री दूरी पर 50x50 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाई लीधा। प्रत्येक गड्ढा में 10 किलोग्राम सड़ी गोबर या पचे कंपोस्ट खाद 10 ग्राम कार्बोफ्योरान 50 ग्राम फास्फोरस और खेत रे ऊपर ही मिट्टी मिलाई ने देखो गड्ढा ने भरनो है। रोपित केला में 25 ग्राम नाइट्रोजन पौधा 50 सेंटीमीटर गोलाई में काटने मिट्टी में मिलाई ने सिंचाई करनी है। कागजी नींबू में फल फटवारी समस्या रे निराकरण रवाते पोटेशियम सल्फेट रो जो 4% रो गोल पानी में मिलाई ने छिड़काव कर सके। अमरूद री सघन बागवानी भी देखो किसान भाई रवाते लाभदायक वे अणमें अमरूद री 1x2 मीटर री दूरी पर लगानो है और अणी बात रो हमेशा ध्यान रखनो है कि बाग में पौधा लगाओ री दूरी जलवायु मिट्टी री उर्वरता और प्रजाति विशेष पर भी निर्भर करे। अमरूद री नई बढ़वार जन पर फूल लाग रहा है तो शाखा रो 3/4 भाग काटने निकल देनो है ताकि अपने फसल में वृद्धि वह सके। अमरूद में 10-15 दिन रे अंतराल पर सिंचाई करते रहनो है। पुष्पण अवस्था पर 10% यूरिया रो छिड़काव 10-15 दिन रे अंतराल पर

करवाऊं, जो है देखो फसल में अधिक फसल मिले है। अमरुद की फसल में देखो मार्च मई महीना तक फूल आवे और फसल अगस्त तो लेने मध्य अक्टूबर तक मिलती रहे। अमरुद में बाहर नियंत्रण रहते 10% यूरिया रे गोल रो छिड़काव अणी महीना में देखो अपने फूला पर करना है और छटाई करता रहना है ताकि नई शाखा जो है वे फसल में अधिक फल देवा वाते लाभदायक है। तेज धूप देखो झुलस वारे रोक रहे वाते पेड़ा रे बड़ा अंगा और तना पर कॉपर और चूना रो लेप आपा लगाई सका हाँ। जटे औषधीय फसलारी अगर आप वाता करा तो मैथारी फसल में 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन री तीसरी और अंतिम टॉप ड्रेसिंग अवश्य करनी है। मेंथा फसल की कटाई 100-120 दिन पर जब पौधा में कलिया बनवा लागे तब करनी है और दूसरी कटाई पहली कटाई रे 70-80 दिन पर करनी है। पौधा री कटाई मिट्टी री सतह 4 और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर करनी चाहिए। कटाई रे बाद पौधा ने 2-3 घंटा तक खुली धूप में छोड़ देना है और कटाई रे बाद कटी फसल ने छाया में हल्को सुखाई ने आसवन विधि द्वारा आप तेल निकाल सका। जटे सर्पगंधा री बात करा तो अंडी नर्सरी देखो अणी महीना में डाल दीदी वेगा। प्रति हेक्टर खेतरी रोपाई रे वाते 6-7 किलोग्राम बीज री आवश्यकता वे। जटे तुलसी री अगर आप बात करा तो अंडी वावणी देखो अणी महीना में कर सका जो एक फायदेमंद औषधीय फसल है। मई में रोपाई दोपहर रे बात करनी है और रोपाई रे बाद तुरंत खेत में सिंचाई कर देनी है। हल्की वर्षा वाला में तुलसी जो है वंडी रोपाई बहुत उपयुक्त है और 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल रे वास्ते 750 ग्राम या बचे 1 किलोग्राम तुलसी रा बीज पर्याप्त है। अंडी रोपाई पंक्तियों पंक्ति एक पौधा दूसरी पौधा री दूरी जो है 60 × 30 सेंटीमीटर री दूरी पर करनी चाहिए। जटे सगंधीय पौधा री अगर आप बात करा तो रजनीगंधा में 1 सप्ताह रे अंतराल पर देखो सिंचाई और 2 सप्ताह रे अंतराल पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहे जणु खेत में खरपतवार नहीं बढ़ेगा जो कि फसल रे वाते हानिकारक वे। अगर रजनीगंधा ने देरू लगावा तो आपने देखो व्यवसाय में योग्य पुष्प डंडिया तो मिल जावे परंतु नवजात कंद जो है वे कम बने। अंडे वाते देखो आपने टेम पे देखो आने वाली वावणी कर देनी चाहे और कंद ने पंक्तियां में लगाना ठीक रहेगा। पंक्तियों पंक्ति री दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर और पंक्तियां में कंदु कंद री दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहे। 1 एकड़ रजनीगंधा लगावर बात लगभग 50 से 60 हजार कंदरी आवश्यकता वे। अच्छी पुष्प डंडिया प्राप्त करवा रहे वाते 3 और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला कंद लगाना हौरे और कंद लगाती वेरा खेत में नमीरो वर्णो रेणो आवश्यक है। कंदू कल्ला अंकुरित वही ने दिखाई देवा लागे तो सिंचाई कर देनी चाहिए और समय समय पर वातावरण के अनुसार सिंचाई करता रहो अच्छी पैदावार वे। जटे गुलाबरी फसल रे अगर आप बात करा तो गुलाबरी फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई और निराई गुड़ाई करते रहना है। चाइना एस्टर गेंदे कार्नेशन में देखो शीर्ष नोचन और लिलियम में फुलारी तुड़ाई शुरू कर देनी है। पुष्प वाला पौधा में कीट या रोग रा प्रकोप दिखाई दे तो 0.2% फफूंदी नाशक कैप्टान या पचे बावेस्टिन और 0.2% कीटनाशक दवा रोगोर मेटासेस्टोटॉक्स आदि रो गोल वणाई ने 20 से 25 दिन रे अंतराल पर छिड़काव करते रहना चाहे। ग्लेडियोलस री खेती में सिंचाई लगभग 10 से 12 दिन रे अंतराल पर करनी चाहे। ध्यान रखना चाहे कि यदि कंद जमीनू निकल रहा है तब वणा में 2-3 सप्ताह तक पानी रोक ना करना चाहे अणी तरह का पौधा रो विकास जो वेगा वो अच्छे वेगा। जटे डेफोडिल और नरगिस रे कंद में कल्ला अंकुरित वैरा वे तो सिंचाई कर देनी चाहे। अच्छी उपज लेवा रे वाते खेत में देखो नमी बनाई रखनी है। रोग या कीट रो प्रकोप वे तो 0.2% बावेस्टिन और 0.2% रोगोर या पचे मेसासिस्टॉक्स आदि रो गोल वणाई ने 20 से 25 दिन रे अंतराल पर छिड़काव करते रहना चाहे। तो किसान भाई एनी टाइम पे देखो बागवानी फसला और पुष्प और सगंधीय जो पौधा है वन में अणा वाता रो ध्यान देगा तो वणा ने हौ लाभ वेगा। और देखो घड़ी रियाड़ी देखा तो कार्यक्रम चालवारो अपनो टाइम भरो तो आज्ञा दो नानू भाई ने राम राम सा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती में आज। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुने।

0: अगली पेशकश सिलसिला फिल्म से, आवाजें लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की।
1: मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

ये गीत था फिल्मताल से, आवाज़ें थी सोनू निगम और अनुराधा श्रीराम की। अगला गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ों में, फिल्म का नाम सुहाग।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: सदाबहार नगमों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। अगला गीत शान और सुनिधि चौहान की आवाजों में, फिल्म का नाम तारा रम पम।

0: इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे बस यहीं तक। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, आइए अब सुने आबोहवा।
1: जलवायु परिवर्तन क्या है, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है। जलवायु परिवर्तन क्या है, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800,000 सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समंदर और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है। इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800,000 सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समुद्र और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
0: अभी आप सुन रहे थे आबोहवा, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए अब सुने सुगम संगीत।

0: आइए सुने कार्यक्रम की अंतिम गजल पंकज उदास की आवाज में।
1: मोहम्मद फराज की एक ताज़ा गजल पेश खिदमत है। यह गजल आपको जरा आहिस्ता चल की याद दिलाएगी।

पंकज उदास की गई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत बस यहीं तक। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से समाचार बस कुछ ही पलों में।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
3: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
4: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
2: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा

0: 17 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
1: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
5: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास

0: चाय की चुस्की और आपसी बातें, दिन की शुरुआत और मीठी मुलाकातें। खुश रहें आप, दुआ यही करते हैं। सुप्रभात के साथ हर खुशी की कामना आपके लिए करते हैं और एक नई सुबह और नई ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं आज का नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त विद्या और मेरे साथ
1: मैं आपकी दोस्त परवीन।
0: तो स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार। और संडे स्पॉटलाइट में क्या है कुछ खास तो बताएंगी परवीन?
1: बिल्कुल विद्या, संडे स्पॉटलाइट में यानी कि सप्ताह की झलक में आज हमारे लिसनर्स को हम बताएंगे राष्ट्रीय मंडल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मारखोड़ दिवस और सप्ताह की कुछ प्रमुख खबरें जो लेकर आएंगे आपके लिए। करेंगे IPL अपडेट्स की बातें और हिस्टोरिकल फैक्ट में अगर विद्या बात करेंगे तो आकाशवाणी और लोक संस्कृति क्या है ये हमारे लिसनर्स को हम बताएंगे। जानकारी और मनोरंजन में लेकर आएंगे वर्चुअल कॉन्सर्ट और डिजिटल इवेंट। और आज का दिन तो बड़ा ही खास होता है क्योंकि हमारे लिसनर्स हमसे जुड़ेंगे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू वॉइसेस ऑफ लिसनर्स में। आज का हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगेगा, आप क्या हमसे साझा करना चाहते हैं तो वो आप लिखकर भेज सकते हैं। और हमारे आज के जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर है वो है 9462697568।
0: तो सुनते रहिए प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर।

0: मानवता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मंडल दिवस भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अन्य देशों में भी मनाया जाता है, जिससे हर मसले का शांतिपूर्ण तरीके समाधान हो सके।
1: बिल्कुल परवीन, वीक रिकैप में हम बात करेंगे राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे के बारे में। यह दिवस उन देशों की एकता, सहयोग और मित्रता का प्रतीक है जो राष्ट्रमंडल संगठन से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रमंडल में दुनिया के कई देश शामिल है जो मिलकर शांति, शिक्षा, खेल, संस्कृति और विकास के क्षेत्र में सहयोग करते हैं। 2026 का राष्ट्रमंडल खेल जो 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक स्कॉटलैंड के सबसे बड़े शहर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल देशों के सदस्यों के लिए आयोजित किया जाएगा।
0: विद्या, अगर हम बात करें इस दिन के मूल रूप से, तो अगर इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन यानी कि 24 मई 1819 के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे देशों के बीच संबंधों को एकता का प्रतीक रहा है, और ऐतिहासिक अगर बात की जाए तो इसे पहले एम्पायर डे यानी कि साम्राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता था, और वर्ष 1958 में यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन ने इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया था।
1: राष्ट्रमंडल दिवस ये संदेश देता है कि अलग अलग भाषा, परंपरा और संस्कृति वाले देश भी एक परिवार की तरह मिलकर आगे बढ़ सकते हैं।

0: यही प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर। परवीन, हर दिन में कुछ न कुछ खास होता है और उस दिन को मनाने के पीछे होते हैं कुछ रहस्य और जानकारियां। और आज है 24 मई का दिन, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुनने में परवीन थोड़ा अटपटाया का है, रोचक है ना?
1: बिल्कुल।
0: और लेकिन ये जो मारखोर है वो मध्य और दक्षिण एशियाई के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली जंगली बकरी की प्रजाति और उनके प्राकृतिक आबादी के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आइए जानें इससे जुड़ी खास बातें। आखिर क्या है मारखोर? मारखोर दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बकरी है, जो अपने सर्पिल यानी घुमावदार सिंह के लिए जानी जाती है।
1: बिल्कुल विद्या, अगर हम जागरूकता को बढ़ावा देने की बात करें तो मारखोर यानी कि कैपरा फाल्कोनेरी और उसके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के प्रति वैश्विक ध्यान आकर्षित करना है। पारिस्थितिकी संतुलन की अगर बात की जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों के इकोसिस्टम को बनाए रखने में मारखोर की भूमिका उजागर करना है।

विद्या, जब नमस्कार उदयपुर लेकर आते हैं ना, तो बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। जैसे अब जो हमारे लिसनर्स से हम बात करने वाले हैं कि सप्ताह में हुई क्या क्या ऐसी बातें हैं, ऐसी प्रमुख खबरें हैं जो हमारे लिसनर्स को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और हमारे लिसनर्स को कह दें कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9।

0: 9756।
1: बिल्कुल, तो चलिए बात करते हैं हमारी सप्ताह की खबरों की। तो आज की जो पहली खबर है वो भीषण गर्मी और हीट वेव का अलर्ट है, क्योंकि उदयपुर सहित राजस्थान के कई जिलों में तापमान 46 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जिससे मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी जारी की है और लोगों को दोपहर में धूप से बचने की सलाह दी है।
0: बिल्कुल परवीन, और शहर में भक्ति और अनुष्ठान का माहौल। पुरुषोत्तम मास शुरू होने के साथ साथ उदयपुर शहर के प्रमुख मंदिरों में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, कई जगह अनुष्ठान भी हो रहे हैं।
1: बिल्कुल, बात करें एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की, तो ट्रैफिक जैम की समस्या से निजात दिलाने के लिए उदयपुर में 363 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है।
0: और अब सरकारी स्कूलों में केवल पढ़ाई किताबों तक सीमित नहीं रहेगी, भावनात्मक मजबूती और मानसिक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक अनूठी मिसाल पेश की, सरकारी स्कूल अब बनेंगे खुशी शाला। 5वीं तक के बच्चे सीख पाएंगे जीवन कौशल। यह पहल स्कूलों में सकारात्मक और सुरक्षित वातावरण तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
1: विद्या पर्यटन को बढ़ावा देने में शहर में राजस्थान ट्रैवल ट्रेड फेयर के आयोजन की तैयारियां चल रही है, जिसमें देश भर के ट्रैवल एजेंट्स हिस्सा लेने के लिए एकत्रित होंगे। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की, तो इसके उपलक्ष्य में उदयपुर चैप्टर और मानव विज्ञान सर्वेक्षण भारत सरकार पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में विभाजित दुनिया की जोड़ते संग्रहालय विषय पर विशेष संगोष्ठी और विचार विमर्श कार्यक्रम प्रताप नगर स्थित जोनल एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम में आयोजित हुआ है। और साथ ही साथ बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हालिया विदेश दौरे में राजस्थान की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खास पहचान मिली है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विभिन्न देशों के शीर्ष नेताओं को राजस्थान की विश्व विख्यात कलाकृतियां भेंट कर वोकल फॉर लोकल अभियान की वैश्विक स्तर पर मजबूती दी है।

0: तो परवीन कल यानी 23 मई को खेले गए आईपीएल 2026 के मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार पारी खेली और पंजाब किंग्स को जीत का गौरव हासिल हुआ।
1: बिल्कुल विद्या, लीग स्टेज का अंत रविवार को धमाकेदार डबल हेडर के साथ होगा, यानी कि आज सुपर संडे में। पहले मुकाबले में दोपहर 3:30 मुंबई की भिड़ंत राजस्थान से होगी, जबकि शाम 7:30 से कोलकाता और दिल्ली आमने सामने होंगे। इन्हीं मुकाबलों से प्लेऑफ की चौथी टीम का फैसला होना है। राजस्थान पहले मैच में ही मुंबई को हराकर केकेआर की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। राजस्थान सिर्फ जीतकर चौथी टीम के रूप में प्लेऑफ में जगह पक्की कर लेंगी। दूसरी तरफ अगर राजस्थान हारता है तो केकेआर के लिए भी प्लेऑफ के दरवाजे खुल जाएंगे। मुंबई और राजस्थान में बराबरी की टक्कर है। दोनों के बीच अब तक 33 मैच हुए हैं, जिसमें से 17 मुंबई ने और राजस्थान ने 16 मैच जीते हैं। तो आज का सुपर संडे हमारे दर्शक जो है बिल्कुल बेसब्री से इंतजार करेंगे। तो हमारे श्रोताओं के लिए थी ये हमारी आज की आईपीएल अपडेट।

ये है कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। कार्यक्रम रहेगा जारी, लेकिन इस समय सुबह के 9 बजने को हैं। अब सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से बस कुछ ही देर में।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने ईंधन बचत और सार्वजनिक खर्चों में कटौती के लिए गाइडलाइन जारी की। मंत्रियों के काफिले सीमित होंगे और विदेश यात्रा पर रोक रहेगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सरकार की देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने की योजना से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ घुसपैठ की आशंका समाप्त होगी। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार। और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ हिस्सों में

0: आंधी बारिश का दौर चला। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने ईंधन बचत और सार्वजनिक खर्चों में कटौती को लेकर सभी सरकारी विभागों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इनमें सरकारी खर्चों में कमी लाने, डिजिटल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने और ऊर्जा संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त विभाग की ओर से जारी परिपत्र में सरकारी काफिलों में वाहनों की संख्या सीमित करने, राजकीय खर्च पर विदेश यात्राओं पर रोक लगाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये भी तय किया गया है कि पेट्रोल डीजल से चलने वाले सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ई व्हीकल्स में बदला जाएगा। संविदा वाहनों में भी ई व्हीकल्स को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही राज्य भर में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। इसके अलावा एक ही दिशा में आने जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कार पूलिंग अपनाने और तात्कालिक रूप से निजी वाहनों का कम से कम उपयोग करने को कहा गया है। ये खर्च नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देश सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त शासी संस्थाओं पर लागू होंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का हब बनने की अपार संभावनाएं हैं। श्री वैष्णव कल जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने भिवाड़ी में खुले प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का जिक्र करते हुए कहा कि इससे करीब 6 करोड़ चिप का उत्पादन होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि इस क्लस्टर के जरिए अब तक 20 कंपनियों से 1200 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजनाएं आकर्षित की जा चुकी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और कांकाणी इलाके को सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान के रूप में विकसित करने की दिशा में काम शुरू किया जा चुका है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार की स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के तहत देश की सीमाओं को अवैध बनाने की योजना का स्वागत किया है। श्री शेखावत कल बीकानेर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और किसी भी तरह की घुसपैठ की आशंका समाप्त हो जाएगी।
1: आने वाले 3 वर्षों में भारत की सीमाएं अवैध हो जाएंगे। हम भारत की सीमाओं को अवैध बनाने के लिए सभी उन्नत टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए, जहां सीमा पर सीमा की तारबंदी को और अधिक सुदृढ़ करना है उसे सुदृढ़ करते हुए भारत की सीमाएं अवैध बने और भारत में एक भी व्यक्ति घुसपैठिए के रूप में प्रवेश न कर सके, इसको सुनिश्चित करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा करना प्रारंभ किया है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीकानेर से, हमारे राजस्थान से, क्योंकि भारत में जो पाकिस्तान के साथ में हम सीमा साझा करते हैं उसकी 1/3 से ज्यादा सीमा जो है राजस्थान में है, तो राजस्थान के बॉर्डर पर उनका आना राजस्थान की सीमा की सुरक्षा के लिए और राजस्थान की सीमा के बदलते हुए परिदृश्य में भविष्य में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।
0: श्री शेखावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीकानेर दौरे की तैयारियों का भी जायजा लिया। श्री शाह का कल रात बीकानेर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 26 मई को सांचू बॉर्डर चौकी का निरीक्षण कर जवानों से संवाद करेंगे। वे सीमा सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग को हर आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। श्री खर्रा कल अजमेर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों का अध्ययन कर आगे की कार्रवाई करना निर्वाचन आयोग का काम है।
2: हम तो तैयार हैं, राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चुनाव कराने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का है। राज्य निर्वाचन आयोग जब भी उचित समझेगा और सरकार से उनको जो मदद की आवश्यकता होगी सरकार वो मदद देने को तैयार है। राज्य निर्वाचन आयोग जब चाहे चुनाव की तैयारी करे।
0: गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में जारी आदेश में कहा

0: है कि पंचायत और निकाय चुनाव अब और टाले नहीं जा सकते। अदालत ने सरकार से चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 जुलाई तक की समय सीमा तय की है। साथ ही ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और परिसीमन तथा मतदाता पुनरीक्षण का काम 20 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुष्कर घाटी में बढ़ते सड़क हादसों को गंभीरता से लेते हुए अजमेर जिला कलेक्टर को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घाटी के दोनों तरफ हाइट गेज लगाने और बड़े वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने को कहा। श्री देवनानी ने कहा कि पुष्कर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, यहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं, ऐसे में घाटी क्षेत्र में सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। श्री सिंह ने कल महाराष्ट्र के सावली विहीर औद्योगिक क्षेत्र में तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है और आने वाले समय में इसे बढ़ाकर 50% तक किया जाएगा।
1: हमने यह समझा सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
0: प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। हालांकि कल पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ हिस्सों में आंधी बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर और भरतपुर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चली और हल्की बरसात हुई। वहीं जैसलमेर 45.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। बाड़मेर, बीकानेर और फलौदी में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब मापा गया। 44 डिग्री पारे के साथ पिलानी, चित्तौड़गढ़ और कोटा भी प्रचंड गर्मी की चपेट में रहे। राज्य के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों में गर्म हवाओं का प्रकोप अधिक है। सरहदी जिलों में तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों तक हीटवेव की प्रबल संभावना है। पश्चिमी जिलों में तेज लू और पूर्वी तथा उत्तरी जिलों में हीटवेव के साथ गर्म रातों का ऑरेंज और येलो अलर्ट बताया गया है। इस बीच कल से नौतपा शुरू हो रहा है, ये 2 जून तक चलेगा। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों सूरज सबसे ज्यादा तपिश पृथ्वी पर डालता है, जिससे गर्मी बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने ईंधन बचत और सार्वजनिक खर्चों में कटौती के लिए गाइडलाइन जारी की। मंत्रियों के काफिले सीमित होंगे और विदेश यात्रा पर रोक रहेगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सरकार की देश की सीमाओं को अवैध बनाने की योजना से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ घुसपैठ की आशंका समाप्त होगी। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार। और प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच कुछ हिस्सों में आंधी बारिश का दौर चला। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 101.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। नमस्कार। उदयपुर कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत। आकाशवाणी और भारत की लोक संस्कृति का अटूट रिश्ता है और आज हम ऐतिहासिक जानकारी में जिक्र करेंगे आकाशवाणी और लोक संस्कृति। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आइए जाने अब तक का सफर। अपनी स्थापना के समय से ही आकाशवाणी ने देश की सांस्कृतिक विरासत, लोक संगीत, बोलियों और पारंपरिक कलाओं को संजोए रखने में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। आकाशवाणी और हमारी लोक संस्कृति का गहरा जुड़ाव रहा। लोक भाषाओं और बोलियों का प्रसारण

0: स्थानीय लोक कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शन का एक सशक्त मंच प्रदान करता है। लोक संगीत और नाटकों का संरक्षण, ग्रामीण और क्षेत्रीय लोकगीतों, लोक गाथाओं और पारंपरिक नाटकों को रिकॉर्ड कर उन्हें सहेजने का ऐतिहासिक कार्य आकाशवाणी द्वारा किया गया।
1: बिल्कुल विद्या, आकाशवाणी ने न केवल समाचारों का माध्यम है बल्कि ये भारत की ग्रामीण और पारंपरिक विरासत का एक जीवंत दस्तावेज भी है। विविध भारतीय और विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से स्थानीय बोलियों में नाटक, लोक कथाएं और कृषि आधारित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जो लोक संस्कृति को जीवंत रखते हैं। आकाशवाणी समय समय पर सांस्कृतिक संध्याओं और संगीत समारोह का आयोजन भी करता है जहां लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हैं।
0: लोक संस्कृति हमारी पहचान है। राजस्थान के लोकगीत, यहाँ के वाद्य यंत्र, लोकगीतों की मिठास, गांव की चौपाल से लेकर शहरों की रौनक तक आकाशवाणी ने हर दिल तक अपनी आवाज पहुंचाई है। आकाशवाणी ने हर संस्कृति को सम्मान का मंच दिया है। बदलते आधुनिक भारत का आईना है आकाशवाणी।
1: दूर दराज के क्षेत्रों के लोक कलाकारों का बकायदा ऑडिशन, स्वर परीक्षण लेकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और ग्रेडिंग भी दी जाती है। जैसा कि अभी हमने विद्या देखा ही था कि वॉकथॉन यानी कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण हुए थे और यहाँ पर भी बहुत सारे आयोजन किए गए थे, पूरे देश में बहुत सारे आयोजन हुए थे ताकि लोगों को जागरूक कर सके आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर।
0: बिल्कुल, और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के पर हम जश्न मना रहे हैं। हमें गर्व होता है कि हमारा आकाशवाणी समय के साथ खुद को आधुनिकता में ढाल चुका है। तकनीकी बदलती रही, समय बदलता रहा, लेकिन आकाशवाणी और हमारी लोक संस्कृति की विश्वसनीयता और अपनापन आज भी वैसा ही है।

0: कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी जियो तो ऐसी कि सबके लिए मिसाल बन जाए।
1: क्या बात परवीन, आज का दौर आधुनिकता का दौर है, जहाँ मनोरंजन की दुनिया तेजी से बदल रही है। जहाँ कभी लोग प्रोग्राम देखने बड़े बड़े स्टेडियम ऑडिटोरियम जाते थे, वहीं अब हम ये सब घर बैठकर देख सकते हैं, क्योंकि वर्चुअल कॉन्सर्ट्स और डिजिटल इवेंट्स का दौर शुरू हो चुका है। सबसे पहले जाने वर्चुअल कॉन्सर्ट्स का मतलब। आप घर बैठे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाइव म्यूजिक, डांस, कॉमेडी या किसी भी तरह के शोज का आनंद ले सकते हैं। आज मोबाइल और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को हमारी स्क्रीन तक ला दिया है।
0: बिल्कुल विद्या, कहते हैं ना, एक ऐसा डिजिटल संगीत कार्यक्रम है जिसे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन होस्ट या फिर लाइव स्ट्रीम किया जाता है। इसमें दर्शक घर बैठे, जैसा कि आपने बताया है कि घर बैठे बैठकर स्मार्टफोन, कंप्यूटर या फिर VR हेडसेट के जरिए संगीत का आनंद लेते हैं, जहां कलाकार या तो लाइव परफॉर्म करते हैं या उनके 3D अवतार मंच पर गाते हैं। अगर हम बात करें पारंपरिक कॉन्सर्ट के विपरीत, तो जहां आपको एक निश्चित स्टेडियम में जाना पड़ता था, वहीं वर्चुअल कॉन्सर्ट में आप अपने कमरे में आराम से बैठकर शो का लुत्फ उठा सकते हैं।
1: डिजिटल इवेंट्स के फायदे भी हैं, पहला समय और पैसे की बचत, दूसरा दुनिया के किसी भी कोने से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने मनोरंजन को और अधिक आसान और सुलभ बना दिया है। ये टेक्नोलॉजी केवल सुविधा नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने का एक मजबूत माध्यम भी है।
0: बिल्कुल विद्या, इसमें दर्शक मंच पर बहुत करीब से नजर रख सकते हैं, जिसमें उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वे सीधे स्टेज पर ही मौजूद हैं। इन आयोजनों में टिकट की कीमत अक्सर सामान्य से कम होती है और दुनिया भर के लाखों लोग एक साथ इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसे कुछ वर्चुअल इवेंट है जैसे कि वेबिनार है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है, हाइब्रिड इवेंट्स है, डिजिटल ट्रेड शो या एक्सपो हम बोल सकते हैं, वर्चुअल जॉब फेयर्स होते हैं। तो हम आसानी से इन सारी चीज़ों का मजा ले सकते हैं घर बैठे।

विद्या, हमारे लिसनर्स को एक बार फिर हम बता दें, हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9462697568। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है, आप हमारे प्रोग्राम में अपनी कोई बात साझा करना चाहते हैं, तो इन व्हाट्सएप नंबर से हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर एक बार फिर 9462697568 पर।

0: परवीन वॉइस ऑफ लिसनर्स में ये पहला संदेश आया है विक्रम सिंह सिसोदिया का। इन्हें आज का प्रोग्राम अच्छा लगा और सॉन्ग्स भी पसंद आए।
1: बिल्कुल विद्या, अनिल जैन मेरठ से लिखते हैं कि आकाशवाणी उदयपुर से प्रसारित होने वाले सारे प्रोग्राम्स वो हमेशा सुनते हैं और उन्हें बेहद पसंद आते हैं।
0: प्रोग्राम प्रस्तुतकर्ता को हमारा प्यार भरा नमस्कार। ये संदेश आया है नरेंद्र शर्मा का सेक्टर 8 से। इन्होंने भी लिखा है आज का कार्यक्रम इन्हें पसंद आया।
1: बिल्कुल विद्या, सेक्टर 4 से महिमा जैन लिखती, वैसे तो इन्हें सारे ही प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी आईपीएल 2026 की जो अपडेट्स हम देते हैं ना स्पेशली, वो उन्हें बड़ी ही पसंद आई। मतलब आईपीएल अपडेट्स देने का अंदाज उन्हें काफ़ी पसंद आया है। तो हमारे लिसनर्स को हम कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसे ही आप हमें मैसेज करते रहिए ताकि उससे हमें लगे कि हमारे लिसनर्स हमसे कनेक्ट हैं।
0: और हम तो कनेक्ट हमेशा ही रहेंगे, लेकिन अब घड़ी है वो हमें इजाज़त नहीं दे रही है। आज के नमस्कार उदयपुर से लेते हैं हम विदा। आज के इस कार्यक्रम में मैं थी आपकी दोस्त विद्या और मेरे साथ
1: परवीन।
0: तो दीजिए इजाज़त,
1: नमस्कार।
0: और कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। ये आकाशवाणी उदयपुर है। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुने सुगम संगीत। पहली गजल जगजीत सिंह की आवाज में।

सुगम संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। ये गजल थी जगजीत सिंह की आवाज में। आइए सुने अगली गजल लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाजों में।

जगजीत सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़ों में गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत बस यहीं तक। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजे हैं, आइए अब सुने फिल्मी तराने पुरानी फिल्मों से।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से,
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर,
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
5: RBI कहता है,
8: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
9: पुरानी फिल्मों से फिल्मी तराने, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। अगला गीत वो कौन थी फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की।

ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म थी वो कौन थी। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम कालिया।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में अभी आपने सुना बड़े दिल वाला फिल्म से ये गीत, पुरानी फिल्मों से फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। अगला गीत भूपेंद्र की आवाज़ में, फिल्म का नाम आहिस्ता आहिस्ता।

ये गीत था फिल्म ज्वेल थी, उससे आवाज़ें थी लता मंगेशकर और साथियों की। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शोले फिल्म से, आवाज़ आर डी बर्मन की।

ये गीत था फिल्म प्रेम रोग से, आवाज़ें थी लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की। पुरानी फिल्मों से फिल्मी तराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से, और कार्यक्रम का अंतिम गीत कभी कभी फिल्म से, आवाज़ मुकेश की।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?

0: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
1: आरबीआई कहता है,
0: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
2: राजस्थानी लोकगीत आरो कार्यक्रम हुनेरा होसा गोखड़ा और गोखड़ा कार्यक्रम में मां नरेहारा लोकगीत लेने आया हाँ जो आपने होना वांगा सा। अबे थोड़ी सी करा वाता वाताकंडी, सिर्फ और सिर्फ मौसम रे। मौसम देखो तावड़ो तो यूं पड़ी रो है जाने की यूं लागे कि आपने माते कणी सूरज री रोशनी ही दी आपने माते ज नाग दी वे। अत्रो तो पसीनो, अतरी तो गर्मी लागी रही है सा। और असा में देखो काम धंधा जो है वे तो करना ही पड़े, घरों बाने निकलनो ही पड़े। तो आपने कोशिश यह करनी है कि जत्रो जरूरी वे वणिस टाइम घरों बाने निकलनो, अगर जरूरी नहीं वे तो घरों बाने नहीं निकलनो। घरों बाने निकलता टाइम सबू पहला यो ध्यान रखनो, पानी री बोतल आपने लारे वेणी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सा। कनान तावड़ो आपने माते तीखो पड़े ना आपनो जी घबरावे, प्यास लागे नठी वठी देखा कटे पानी नहीं मिले तो चक्कर आईने पड़ी सका सा। तो सबू पहली बात है कि पानी री बोतल आपने लारे लेने निकलनी है। अगली बात करांगा अणी गीत रे बात।

देखो सर, गोखड़ा कार्यक्रम चाली रहो और गोखड़ा कार्यक्रम में मैं आपके वास्ते नरे हरा लोकगीत भी लेने आया हाँ और बात करी रहा गर्मी री कि गर्मी में अगर निकलो तो पानी री बोतल लारे लेने निकल जो घर भूखा कदी नहीं निकलना है सा खाई पीने ज निकलना है ताकि यो है कि यदि धूप में आप ही निकला तो अपने शरीर की जितनी भी एनर्जी है वह सूख ही जावे सा। तो हमेशा खाई पीने निकलनो, पानी री बोतल लेने निकलनो, माथा पे कई ओढ़ी पहरी पछे निकलनो। तो अना सब चीज़ा रो ध्यान रखांगा तो आप ही सब सुखी रहांगा और सुखी रहांगा तो लोकगीत हुणवा में मज़ो आएगा सा। तो हुणा सा यो आगलो लोकगीत।

अनुराधा पौडवाल और साथी की आवाज़ में गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं तक। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है, दोपहर के 12 बजने को हैं। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम बगिया के फूल।

0: जय हिंद बच्चों।
1: और सुरिता कैसी हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो। पहले तो तुम ये बताओ कि आज बड़ी खिली खिली खुश खुश नजर आ रही हो भाई, आज ऐसी क्या बात है?
0: अरे भाई, खिलना तो पड़ेगा ही ना कि छुट्टियां चल रही है और बच्चे सब घर में होते हैं, उनके सुबह से उठते ही उनकी डिमांड्स चालू हो जाती है। तो मम्मी गुस्सा ना करके खुश हो जाती है, और इसलिए तो आज हम यहाँ पर बगिया के फूल कार्यक्रम में आके भी हमारे प्यारे प्यारे से बच्चों के लिए चहकते रहते हैं, उनकी मनपसंद के उनको गाने सुनवाते हैं और ढेर सारी जानकारियों के साथ उनको रूबरू भी तो करवाते हैं।
1: बिल्कुल करवाते हैं। और देखो ना सरिता, अभी छुट्टियां चल रही हैं, अब बच्चों से घर, बच्चों की चहल पहल से घर पूरा भरा हुआ है। कहीं कहीं बच्चे मेहमान गए हैं, तो कई हमारे यहाँ भी मेहमान बच्चे आए हैं। लेकिन एक बात हम देखते हैं सरिता, हम बच्चों से भी कहते हैं कि देखो थोड़ा मौसम का ध्यान रख के फिर चहलकदमी करनी है। भाई दिन में आप आराम इंडोर गेम खेलो, सुबह शाम की आप आउटिंग रखो। हम ये बच्चों से बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप बाहर मत निकलिए, लेकिन अर्ली मॉर्निंग अगर आपको घूमने जाना फतेह सागर जाइए। लेकिन दिन का समय तो आपको अपने घर में ही रहना होगा,
0: अवॉइड करना ही चाहिए, क्योंकि दिन में इतनी चिलचिलाती गर्मी है और अभी क्या है, लूज मोशन और वॉमिटिंग्स बहुत ज्यादा हो जाती है। अपन कहीं बाहर जाकर जैसे ही घर पे आते हैं या थोड़ा सा हमने बाहर का कुछ खा लिया तो हमारी जैसे तबीयत खराब हो जाती है। तो इस टाइम पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए माला कि थोड़ा सा हमें लिक्विड बहुत ज्यादा लेना चाहिए, या साथ में अपने को ग्लूकोज की बॉटल अपने को लेके जानी चाहिए, वो कुछ डाल के वो पानी हमें पीना चाहिए, नींबू शिकंजी पीनी चाहिए, जैसे भी हो लस्सी, दही की लस्सी पी सकते हैं,
1: केरी का पना पी लो,
0: बिल्कुल हो, और वो तो हमको लू से बचाता भी तो है।
1: बिल्कुल भाई, बहुत सारी चीजें खाने पीने के लिए, और तुमने जैसे ही नाम लिया मेरे मुंह में पानी आने लगा। बच्चों से कहेंगे बच्चों ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थ जिसको कहते हैं लिक्विड ज्यादा से ज्यादा ले, सरिता दीदी ने भी आपको बताया। और एक बात और कहेंगे सरिता कि बच्चों की एक आदत होती है, हम ये नहीं खाएंगे, हमें ये पसंद नहीं है। मम्मियां बेचारी, बहुत कुछ मम्मियों को मजा भी आ रहा है कि बच्चों की छुट्टियां, लेकिन मम्मियां इस बात से परेशान है कि बच्चे कहते हैं हम ये नहीं खाएंगे, हमारे लिए ये मत बनाना।
0: माला सुनो एक मिनट, ये क्या है, ये सिर्फ छोटे बच्चों की बात नहीं है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना
1: उनके तो ज्यादा नखरे हो जाते हैं, वो ज्यादा परेशान करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो भाई हम मम्मियों से कहेंगे कि भाई थोड़ा फॉर्म चेंज कर दे, कुछ मिक्स सब्जी के बजाय मिक्स पराठा बना दे, कुछ और बना दे, कुछ शेप चेंज कर दे, ताकि ना बच्चों को, मतलब कहते हैं ना सरिता कि मुंह में खाने से पहले आंखें भोजन करती हैं, पर देखने में अट्रैक्टिव हो, कुछ थोड़ी सी कलात्मक चीजें हम देख लें, कलरफुल बना ले थाली को, तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा। और देखो ना, इस मौसम की डिमांड भी, गर्मी बहुत जोरों पर है, तो भाई गर्मी के हिसाब से हमें खाना कुछ ऐसा बना, तले भुने से हम थोड़ा परहेज करें, है ना, कुछ ठंडी ठंडी चीजें, जितना हो सके हम बच्चों को लिक्विड दें और घर से बना हुआ दें। भाई हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि बाहर की जो डिब्बा बंद चीजें वो खाएं या फिर डिब्बा बंद शरबत है वो लें, घर में मम्मी जो अच्छे से बना

0: सकती है, चाहे वो केरी का पन्ना हो, इमली का शरबत हो,
1: ठंडाई हो, जैसे सीजन में ठंडाई बहुत ज्यादा फायदा करती है बच्चों। तो जैसे मम्मी तो वैसे आजकल की बहुत क्रिएटिव मम्मी है, पता है ना माला, हम भी बहुत क्रिएटिव हो चुके हैं बच्चों को देखते देखते।
0: और पता है सरिता रोज नया क्रिएशन करते हैं किचन में।
1: बिल्कुल, तो आजकल की मम्मियां बहुत क्रिएटिव है बच्चों को। अगर आजकल वैसे भी देखा जाए ना तो बच्चे बिल्कुल सब्जी नहीं खाते, तो वो सब स्टफ पराठे के रूप में ही उनके पास जाता है कि पनीर का पराठा हो गया, आलू का पराठा, प्याज का पराठा, मतलब पराठों की लाइन लग जाती है, इतने पराठे हमें बनाने पड़ते हैं,
0: बनाने पड़ते हैं। और फिर बच्चे, चलो हम इस बात से खुश हो जाते हैं कि चलो बच्चे खा लेते हैं। तो ये तो बात रही सरिता बच्चों के बारे में, और आज हम बात करेंगे गंगा दशहरे के बारे में। भाई गंगा दशहरा, जैसा नाम से पता चलता है कि आज के दिन गंगा मैया का अवतरण हुआ था, इसलिए गंगा दशहरा मनाया जाता है। लेकिन आज का, मतलब हम आज की बात नहीं कर रहे हैं,
1: हम बात कर रहे हैं 25 तारीख की, 25
0: मई की, हम कल मनाएंगे, लेकिन आज हम बच्चों से बात कर रहे हैं। तो गंगा मैया, जैसे सरिता हमारे यहाँ गंगू कुंड है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर गंगा जी का चौथा पाया है, मतलब गंगा का जो पानी है वो यहाँ भी आता है। हाँ, लोग यहाँ पे स्नान करते हैं, और अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो बहुत लोग अर्ली मॉर्निंग जाते हैं और स्नान करते हैं, कहते हैं कि आपके जो भी पाप है वो धुल जाते हैं। मैं तो कहती हूँ कि चलो पाप ना धुले, लेकिन आपकी एक आउटिंग होगी, और एक
1: मॉर्निंग में कितना अच्छा वातावरण होता है, उसमें आपकी हेल्थ कितनी
0: अच्छी हो जाती है। आप सुबह जल्दी उठते हो, वहाँ जाते हो, स्नान करते हो, तो मतलब कुल मिला के आपकी अच्छी सी एक एक्सरसाइज हो जाती है। चार लोगों के बीच आप जाते हो, फिर वहाँ पे कुछ महिलाएं कथा कहानियां सुनती है, और मैं तो कहती हूँ कुछ बच्चों को भी मैं देखती हूँ कि बच्चे भी आते हैं, तो भाई ये हमारी संस्कृति को जानने पहचानने का एक बहुत सुनहरा सा मौका है।
1: बिल्कुल।
0: और देखो सरिता, बच्चे इसी बात से जानते हैं, घर से ही तो बच्चे सीखते हैं।
1: बिल्कुल, घर से ही सीखते हैं, और सुबह सुबह जैसे ही बड़े जा रहे हैं तो बोले हम भी चलेंगे, उनको बहुत इंटरेस्ट रहता है, और छुट्टियां भी चल रही है तो सुबह स्कूल का बर्डन तो है ही नहीं उनके पास, तो सुबह जाते हैं, घूमते हैं, और वो भी स्नान करते हैं। तो जैसे ही सुबह सुबह अगर हम स्नान कर लेते हैं ना, तो एकदम पूरा दिन फ्रेश, और कथा कहानियों से जहाँ स्टार्टिंग होती है हमारे दिनों की, तो फिर क्या कहने
0: हैं। देखो सरिता, अभी तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है यहाँ, अधिक मास, जिसको कि धर्म मास के नाम से जाना जाता है, रोज कुछ ना कुछ कथा आयोजन उदयपुर शहर में सभी तरफ है, भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, और कुछ धार्मिक कहानियों का, किस्सों का, मतलब मैं हर मंदिर में कुछ ना कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। तो हम बड़े तो जाते हैं, साथ में बच्चे भी जाते हैं, भाई उनको भी सीखने देखने का
1: और
0: मौका
1: नहीं
0: मिलता।
1: जाते तो उनको लेकर जाएं, पेरेंट्स या बड़े जो भी जा रहे हैं उनको लेके जाएं, ताकि उन्हें तभी तो पता चलेगा कि आखिर होता क्या है इन चीजों में।
0: भाई पद्मिनी एकादशी क्या है, क्यों मनाई जाती है, इसके क्या करने का क्या परिणाम है। भाई देखो, हमने भगवान नहीं देखे, हम मानते हैं, लेकिन हमने सुना तो है, और सुना उसी को हम मान रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो बच्चों को अध्यात्म से भी जोड़ना चाहिए, है ना, धर्म उपवास भी बच्चों को बताना चाहिए। और बच्चे ये सब कहाँ से सीखते हैं, अपने घर परिवार, दादी नानी, माँ से, बुआ चाची से। तो हम आपसे कहेंगे, जब भी आप कुछ घर में ऐसा करते हो तो बिल्कुल बच्चों को साथ बिठाइए, पास बिठाइए, और बच्चे आपसे सवाल करते हैं। कई बार सरिता मैंने देखा कि बच्चे जब सवाल करते हैं तो बड़े डांट देते हैं, बिल्कुल ऐसा ना करें भाई, आप उनकी क्यूरियोसिटी है, वो जानकारी लेना चाहते हैं, तो उनको प्यार से बताएं, उनको समझाएं, है ना,
1: कि व्रत उपवास का भी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व होता है, और हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा, अगर ठीक है ये सारी चीजें बनाई गई है, लेकिन हम देखा जाए तो हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो व्रत उपवास हमारी बॉडी को बहुत हेल्दी रखते हैं, और इसमें जो गुड होते हैं, गुड एंजाइम्स होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा पनपते हैं, और वो हमारी हेल्थ को और भी अच्छी बना देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखो कहते हैं ना, भारत के लिए, हम इंडिया जो हम भारतवासी, हम कहते हैं कि हमारे यहाँ 7 दिन होते हैं, है ना, और 9 त्योहार होते हैं,
1: बिल्कुल
0: 12 महीने होते हैं और 13 त्योहार होते हैं। तो कुल मिला के हमारी संस्कृति बहुत रंग रंगीली है, रोज हमारे 30 त्योहार, पुरुषोत्तम मास में रोज है कुछ ना कुछ। अभी परसों में देख रही थी कि फूलों की होली खेली जा रही थी, तो मतलब जो 12 महीने के त्योहार है ना, वो इस महीने में भगवान के मंदिरों में जो लीलाएं होती है, बाल लीलाओं में श्री कृष्ण जी की लीलाएं होती है, भागवत कथा की, उसमें सब इस तरह के उपवास, ये सब धर्म आयोजन किए जा रहे हैं। तो भाई बच्चों को देखने का, सुनने का, हमारी संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलता है, और बात हम बहुत सारी करेंगे, लेकिन पहले बच्चों को सुनाएंगे एक प्यारा सा भजन।
1: बिल्कुल, सुनवाते हैं ये प्यारा सा भजन।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: ये कृष्ण कन्हैया, मतलब भगवान कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं ना वो याद आ जाती है। भगवान कृष्ण इतने नटखट थे कि उनकी लीलाएं हमारे जीवन में रची बसी और हर बालक में हम उन्हीं की छवि को देखते हैं।
5: बिल्कुल बिल्कुल, उनकी बाल लीला हमें बहुत कुछ संदेश देती है। और देखो ना सरिता, जो पुरुषोत्तम मास है, श्री कृष्ण का सबसे प्रिय महीना मानते हैं। श्री कृष्ण जी को ये महीना बहुत पसंद है और इस पूरे महीने में उनकी लीलाएं, उनकी कथाएं, कहानियां, उनके

0: के जीवन चरित्र सब मंदिरों में यही सब चलता है, धर्म अध्यात्म से हम जुड़े रहते हैं। तो भाई हम तो ये कहेंगे कि और देखो ना सरिता, यदि हमें तनाव से बचना है ना, परेशानियों से बचना है, तो कहीं ना कहीं हमें आध्यात्म का सहारा लेना ही
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: लेना ही चाहिए। और भगवान ऐसी अदृश्य शक्ति है जो
0: जी
1: हमें शक्ति देती है,
0: हाँ
1: उनका
0: हाँ
1: नाम लेते ही हम कितने सारे तनावों से दूर हो जाते हैं कि भगवान मेरे साथ है।
0: बिल्कुल साथ
1: वो
0: है।
1: अदृश्य शक्ति हमेशा साथ रहती है। और जो दूसरों की दुआएं होती है, कह दें हमारे दोस्तों की दुआएं
0: हाँ
1: या
0: हाँ
1: हमारे परिवार की दुआएं या किसी को जब हम धोख लगाते हैं तो जो दुआएं हमें मिलती है ना माला,
0: वो हमेशा
1: वो
0: काम आती है।
1: हमेशा हमारे साथ होती है। कई बार ऐसी चीजें हमारे साथ हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए,
0: हाँ
1: अनहोनी हो
0: हाँ
1: जाती है, लेकिन उस समय वो जो दुआएं हमें मिलती है ना, उस समय वो दुआएं बहुत ज्यादा काम आती है और वो हमारी शक्ति बन जाती है। और जहां हम बहुत ज्यादा कुछ होने वाले होते हैं, वो हम 1% में ही निपट जाते
0: निपट
1: हैं।
0: जाते हैं।
1: इसलिए कहा जाता है कि जब कोई आशीर्वाद लेता है तो उसे अच्छे से आशीर्वाद दिया करें, वो दुआएं हमेशा उसके जीवन में काम
0: काम
1: आती
0: आती है
1: हैं।
0: बिल्कुल। तो हम बच्चों से यही कहेंगे कि भाई आप भी कुछ ऐसे पॉजिटिव काम करें, बड़ों का दिल ना दुखाएं, बड़े यदि आपसे कुछ कहते हैं तो उनका कहना माने। कई
1: बिल्कुल।
0: बार बच्चे होते हैं सवाल जवाब करते, माना कि आपकी क्यूरियोसिटी है, लेकिन सवाल जवाब करने का भी एक तरीका
1: तरीका होता
0: होता
1: है,
0: है।
1: बिल्कुल।
0: बड़ों से किस तरह पेश आना चाहिए, किस तरह बात करनी चाहिए। जो आप एग्रेसिव होकर बात करते हो, कई बार बार बार बच्चे कहते हैं अरे आपको कुछ नहीं पता, आप कुछ नहीं जानते,
1: बिल्कुल।
0: ऐसी बातें हम बड़ों को बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। क्या ये अच्छा लगता है
1: नहीं,
0: कि एक
1: बिल्कुल।
0: छोटा बच्चा अपने बड़े से ये कहे कि आप नहीं जानते? भाई ये बहुत गलत बात है। बच्चों हमारी बात से थोड़ा सा आप सहमत हो जाओ, थोड़ी सी हमारी बात पर ध्यान दो कि भाई अपने बड़ों का जो हमें कहना चाहिए, हमारे संस्कार ही हमें इजाज़त नहीं देते कि हम बड़ों के साथ बदतमीजी से पेश आए।
1: बिल्कुल है। और बच्चों को अगर अपनी बात रखनी है तो आराम से आप अपनी बात समझा सकते हैं बच्चों। और जो आपके फादर मदर जो भी आपको बोल रहे हैं उसको भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइफ बहुत ज़्यादा कठिन है। जहाँ हम हर जगह जाके देखते हैं, अगर कहीं संगत खराब होती है बच्चों की तो उनकी लाइफ भी पूरी खराब हो
0: खराब हो
1: जाती है।
0: जाती
1: तो इस जगह माता पिता को ज़रूर बोलना भी चाहिए और उन
0: हाँ।
1: पर ध्यान भी देना चाहिए कि आखिर उनके बच्चे क्या कर रहे हैं,
0: और
1: क्योंकि
0: बिल्कुल
1: ये एज ही ऐसी होती है कि कब आप गलत
0: पथ से
1: उसमें
0: भ्रष्ट हो जाते हैं बच्चे।
1: वही।
0: हाँ तो बिल्कुल बच्चों आपको अपने जो बड़े कुछ कह रहे हैं तो ध्यान से सुने, उनकी बात का बुरा ना माने। हाँ हम जानते हैं कि बड़ों की बात आपको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनका जो कहने का तरीका होता है थोड़ा सा डांट रूप में होता है। भाई उनका कहना भी जरूरी है, यदि हमेशा प्यार ही प्यार से कहते हैं तो आप प्यार की बात को तो सुनते ही नहीं हो।
1: पर दवाई
0: तो
1: भी तो कड़वी होती है ना,
0: हाँ, और
1: लेकिन वो
0: कड़वी
1: असर
0: दवा असर
1: हमें
0: कितना
1: स्वस्थ कर देती है
0: मीठा
1: ना।
0: असर करती है ना। तो
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल। तो सरिता ये तो बात रही बच्चों के बारे में,
1: लेकिन
0: और
1: अब भाई माला दीदी के पिटारे में होती है ढेर सारी कहानियां बच्चों। और किससे कहानियों की जिंदगी हमें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो हमें एक सबक देकर जाती है। और वो सबक, कहीं हम किसी मुसीबत में होते हैं और वो सबक जब हमें हम याद आ जाता है तो हम उस मुसीबत से भी निकल जाते हैं। तो आइए पूछते हैं आज माला दीदी को कि वो कौन सी कहानी आप सभी के लिए लेकर आई है।
0: बिल्कुल बिल्कुल छोटी और प्यारी सी कहानी हम आज हम सरिता बच्चों को सुनाएंगे। एक जंगल था, उसमें एक कछुआ और एक खरगोश रहा करता था। खरगोश बहुत सुंदर था, उसको अपनी सुंदरता पे और अपनी चाल पे बहुत घमंड था। जब भी कोई जंगल का जानवर इधर उधर निकलता तो वो कहता मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ, मैं सबसे तेज भागता हूँ। ये बात कछुए को अच्छी नहीं लगती थी। कछुआ जानता था कि वास्तव में खरगोश तेज दौड़ता है, लेकिन हर बात हर समय अपनी घमंड और ये घमंड भरी बातें करना
1: अपनी
0: उसको
1: शेखी
0: हाँ
1: बगाड़ना
0: अच्छी नहीं लगती थी।
1: बिल्कुल।
0: एक दिन है ना कछुए ने खरगोश से कहा माना कि तुम तेज दौड़ते हो, क्यों ना हम एक दौड़ लगा के देख लें। खरगोश ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। उन्होंने एक निश्चित दिन तय किया कि हमें नीम के पेड़ से बरगद के पेड़ तक जाना है।
1: बिल्कुल।
0: ठीक है। अब कछुए ने कहा अरे ये तो चींटी की चाल चलेगा, मैं तो तेज दौड़ के चला जाऊंगा। और कछुआ दौड़ने लगा और कछुआ वास्तव में काफी आगे
1: धीरे
0: निकल गया, काफी आगे निकल गया। अब उसको थकान होने लगी, उसने देखा अरे कछुआ तो धीरे धीरे चलेगा, तब तक मैं एक नींद ले लेता हूँ। और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठते उसको नींद आ गई, वो सो गया और वो ये भूल गया कि मैंने दौड़ में हिस्सा लिया। इधर कछुआ था वो धीरे धीरे धीरे चलते चलते चलते चलते उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच
1: पहुंच
0: गया
1: गया।
0: और इंतजार करने लगा कि खरगोश आए और मैं उसको बताऊं। अब जब शाम हल्की सी होने लगी और खरगोश की नींद खुली तो उसने देखा कि अरे शाम हो गई। वो दौड़ा दौड़ा बरगद के पेड़ को छूने के लिए दौड़ने लगा। बहुत तेज दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते वो पहुंचा, और जब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से कौन मौजूद था। हाँ
1: कछुआ
0: कछुआ मौजूद था और कछुआ हंस रहा था। अब खरगोश को बहुत इंसल्ट महसूस हुई। कछुए ने कहा क्यों भाई, तुम तो तेज दौड़ने वाले हो लेकिन आज तुम पीछे रह गए ना। अब खरगोश को बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसने कछुए से कहा भाई मुझे माफ़ कर दो, आज तुमने मेरा घमंड तोड़ दिया, क्योंकि हर समय मुझे ये घमंड था कि मैं तेज़ दौड़ता हूँ, मैं सबको पीछे कर सकता हूँ। आज तुमने ये बता दिया कि धीरे चलने वाले लोग भी कभी कभी तेज चलने वालों

0: से आगे निकल
1: और
0: जाते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: कहा भी जाता है कि छोटे छोटे प्रयासों से जहां हम शुरुआत करते हैं तो वो अंत तक बहुत अच्छे से जाते हैं, और जो जल्दबाजी में जो हम काम करते हैं ना, कई बार वो बिल्कुल खराब हो
0: हो
1: जाते
0: जाता
1: हैं। तो
0: है।
1: बच्चों हमेशा सफलता, छोटी छोटी सफलताओं पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। यानी कि हम स्टडीज के लिए ही बोलना चाह रहे
0: बिल्कुल
1: हैं कि
0: बिल्कुल।
1: हर रोज की पढ़ाई आपको हर रोज करनी चाहिए। जैसे अभी भी छुट्टियां हो गई है तो ठीक है, आप छुट्टियों को बहुत इंजॉय कीजिए, लेकिन जब आपका स्कूल टाइम होता है तो आप अपनी रूटीन जरूर बना के रखिए। हर रोज की पढ़ाई हर रोज कर लेते ना
0: बिल्कुल
1: तो एग्जाम
0: बिल्कुल
1: टाइम में बर्डन नहीं होता, तनाव नहीं होता। तो कई सारे बच्चे जो अभी गलत हरकतें कर लेते हैं वो नहीं करने की नौबत
0: बिल्कुल।
1: आती है। तो
0: देखो सरिता, कुछ बच्चे पता है कि सोचते, अरे आज नहीं मैं कल कर लूंगा, अरे मैं कर लूंगा, उनकी मम्मी पापा कहते हैं पढ़ लो, अरे आप चिंता, एग्जाम आएंगे मैं कर लूंगा।
1: कर
0: अब आप ये
1: लूंगा।
0: बताइए बच्चों कि यदि हम 10 दिन का खाना आपको कहें कि 1 दिन में खा लो तो क्या आप खा सकते हो?
1: नहीं खा
0: क्या ये
1: सकते,
0: पॉसिबल है सरिता?
1: नहीं बिल्कुल
0: नहीं है।
1: नहीं।
0: जब 10 दिन का खाना आप 1 दिन में नहीं खा सकते तो पूरे साल की पढ़ाई आप 1 दिन में कैसे कर लोगे? कैसे कर
1: बिल्कुल
0: लोगे? आपने ये सोच कैसे लिया? आप रोज की पढ़ाई रोज कीजिए, रोज का खाना रोज खाइए, रोज की मस्ती रोज कीजिए। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं सारा 1 दिन में कर लूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। यही सोचा था खरगोश ने कि अरे मैं तो दौड़ के ये पहुंच जाऊंगा, और वो कछुए से
1: हार
0: हार
1: गया।
0: गया।
1: तो बच्चों अब सुनवा दे एक प्यारा सा गीत।
0: बिल्कुल।

0: बहुत प्यारा सुन रहा है भजन। और भाई सही भी है ना, सुख में तो सब साथ होते हैं और दुख में कोई नहीं साथ देता। तो बच्चों को हमने ये भजन इसीलिए सुनाया है कि बच्चों जब भी अपनी संगति करें, दोस्ती करें, तो भाई अच्छे लोगों से करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं सरिता, जो है ना अच्छे समय में तो साथ देते हैं और जब भी कोई परेशानी आती साथ छोड़ के भाग जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये बच्चों पे नहीं, हम बड़ों पे भी लागू।
1: और इसीलिए तो कहा भी जाता है कि जब आपका बुरा समय आता है तब आपके साथ कौन खड़ा रहता है,
0: तब
1: पहचान हो जाती है कि कौन आपके साथ है, कौन पराया है। तो इसीलिए बच्चों के जीवन में भी उत्सव उपवास का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ये भी उत्सव जो होते हैं हमारे जीवन को रंगीन बनाए रखते हैं। हर रोज कोई त्योहार आता है तो हम उसकी तैयारी करते हैं या फिर बच्चों को बताते हैं कि ये त्योहार आने वाला है, इस त्योहार में तुम ये कर सकते हो। उत्सव उपवास नहीं होते तो भाई शायद हमारा जीवन नीरस हो जाता।
0: बिल्कुल नीरस हो जाता, बेरंग जीवन हो जाता। सरिता हमारी तो संस्कृति इतनी कलरफुल है, इतनी रंगीन है कि हमारे तो आए दिन तीज होते हैं, त्योहार होते हैं, उपवास होते हैं और व्रत होते हैं। और कहना चाहिए कि हमारे नाना तरीके पकवान भी होते हैं, व्रत के हिसाब से अलग अलग तरह के पकवान होते हैं। होली पे गुजिया बनती है ना, और जो कहना चाहिए कि दिवाली पे नई नई मिठाइयाँ बनती है, घेवर बनते हैं। अलग अलग त्योहार की अलग अलग मिठाइयाँ, अलग अलग तरह के कपड़े, अलग अलग तरीका कहना चाहिए प्रथाएं हैं। तो भाई हमारी कल्चर तो बहुत रिच है। हम बच्चों से कहेंगे भाई गर्मी की छुट्टी में आपको समझने का, सीखने का, जानने का मौका मिले, जरूर अपनी कल्चर से रूबरू हो, जरूर सीखें।
1: बिल्कुल सीखना ही चाहिए। और जहाँ उपवास की हम बात कर रहे थे कि अभी बहुत सारे उपवास आ रहे, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो हर रोज कुछ तीज त्यौहार बच्चों हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। लेकिन बच्चों के जीवन में भी उपवास का बहुत ज्यादा महत्व होता है क्योंकि ये हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है और हमारे अंदर आत्मनियंत्रण, धैर्य और कृतज्ञता जैसे गुण भी विकसित करता है। क्योंकि जब हम उपवास करते हैं तो हम पूरे दिन भूखे रहते हैं, यानी कि हमें एक ही टाइम खाना होता है, फलाहार लेना होता है। तो बच्चों को पहले धीरे धीरे पेरेंट्स को सिखाना चाहिए इस और हमारी संस्कृति की ओर उन्हें सिखाना चाहिए कि आपको उपवास करना है तो आपको कब क्या खाना है, कैसे खाना है, क्योंकि उनकी डाइट को भी ध्यान में रखना होगा। कई बार बच्चे भूखे नहीं रह सकते,
0: बिल्कुल नहीं रह सकते।
1: कई बार बच्चे भूखे नहीं रह सकते तो उस समय बच्चों के साथ जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनके पोषण में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब हम व्रत भी करते ना तब भी हमें पूरा पोषण
0: बिल्कुल।
1: तो कई सारे हम जानते हैं कि भाई जब व्रत करते तो कितना सारा, कई बार ऐसा होता है कि डाइट भी बहुत ज्यादा हो जाती है।
0: सरिता जब हमारे उपवास में जो हम खाते हैं ना, फलाहार जो खाते हैं, वो इसी तरह से डिजाइन किया हुआ है कि उससे हमारे पोषण में कोई कमी ना आए।
1: बिल्कुल
0: भाई, हम फल भी लेते हैं, कुछ मीठा भी लेते हैं, दही भी लेते हैं, माना कि हम अन्न से परहेज करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन दूसरे ग्रेन तो हम लेते हैं, तो भाई वो हमारे शरीर को अच्छा सा पोषण देते हैं। और देखो सरिता, व्रत तीज त्योहार ये हमारे जीवन को बहुत ही कहना चाहिए कि खुश मिजाज बनाते हैं, बच्चों को भी कुछ नया सीखने को मिलता है,
1: हटके करते हैं हमारी, अगर रोज की रूटीन अगर एक साथ चलती रहती तो हम भी बोर हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो कुछ नया करना बहुत अच्छा होता है बच्चों, जिससे कि हमारे जीवन में तरोताजगी रहती है।
0: बिल्कुल, लेकिन सरिता हम चलते चलते बच्चों से एक बात और कहेंगे कि भाई छुट्टियों का समय चल रहा है, हमें पता है कि आप लोग बाहर जाने का प्रोग्राम बना है, लेकिन देखो अभी नौतपा, कल से नौतपा लग जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: तो बाहर हम कहेंगे कि भाई 2 जून तक आप जहां तक हो सके
1: कम से
0: घर
1: कम,
0: में घर में ही रहें, सुबह शाम निकले और बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहे तो बिल्कुल आप जून के महीने में बनाइए, खूब अच्छे से जाइए। लेकिन बच्चों से फिर एक बात कहेंगे कि जब भी आप बाहर घूमने जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार के जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो छोटी छोटी बातें जो हमें अपनी माँ बता रही है, दादी नानी बता रही है, उन पर ध्यान जरूर दें।
1: बिल्कुल देना ही चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चों के साथ इतने सारे कैसे सोने लग गए आजकल, घूमने तो सभी जाते हैं, पेरेंट्स के सबसे पहले जैसे ही छुट्टियां होती है पहले से प्लानिंग हो जाती है कि हमें वहां घूमने जाना है, तो उस जगह पे जाने से पहले उस जगह का पूरा एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, वहां क्या क्या हमें चीजों की जरूरत पड़ती है उस

0: हिसाब से आपको पैकिंग वगैरह करनी चाहिए और
1: बिल्कुल।
0: बच्चों को बिल्कुल अच्छे से समझाना चाहिए कि उन्हें क्या करना है और उन्हें क्या नहीं करना
1: और
0: है।
1: भाई एक बात और कहेंगे बच्चों से कि माना आपकी जिद करना वाजिब है, लेकिन कभी कभी बच्चे इस तरह जिद कर लेते हैं कि पेरेंट्स का बजट को गड़बड़ा जाता है। तो
0: बिल्कुल
1: प्लीज आप बाहर जाके किसी भी चीज की जिद ना करें। आपके पेरेंट्स समझदार हैं, उनको लगेगा आपको जरूर दिला देंगे, और वैसे तो आपके पास खिलौने और सब कुछ है ही।
0: बिल्कुल
1: कौन पेरेंट्स ये चाहता है कि अपने बच्चों की फरमाइश पूरी ना करें,
0: बिल्कुल सही
1: लेकिन कभी कभी बच्चे आउट ऑफ बजट जाके फरमाइश पूरी करवाते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। फिर क्या है ना सरिता की यात्रा का मजा ही खराब हो जाता
0: बिल्कुल हो ही जाता है,
1: है
0: क्योंकि
1: ना,
0: हर नई जगह जाते हैं, हर रोज नया इनको कुछ दिलाना
1: दिलाना
0: पड़ता है,
1: पड़ता है।
0: आपका
1: हाँ
0: लगेज भी बढ़ जाता है और पेरेंट्स को पता है कि इनके लिए ये यूजफुल नहीं है,
1: नहीं है,
0: पर फिर भी वो वहां ऐसी जिद करते हैं कि उनको दिलाना पड़
1: पड़ता
0: जाता
1: है
0: है, तो
1: और फिर वो
0: बच्चों को
1: काम
0: भी
1: की नहीं होती,
0: काम की नहीं
1: बजट भी
0: होती।
1: डिस्टर्ब होता है। तो
0: बिल्कुल
1: प्लीज बच्चों बाहर घूमने जाएं, सैर सपाटा करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अच्छी अच्छी चीजें खाएं, पोषण का ध्यान रखें, बड़ों का कहना माने, हमारे तीज त्यौहार से जुड़े रहें। और अब देखो सरिता समय भी हो चला है, तो ले ले इजाजत।
0: बिल्कुल लेते हैं इजाजत। जय
1: जय
0: हिंद
1: हिंद बच्चों।
0: बच्चों।

बगिया के फूल, ये साप्ताहिक कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। लीजिए आप सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला नगमा अनुराधा पौडवाल और मना रुदास की मिली जुली आवाज़ों में है। फिल्म का नाम है हीरो।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

फिल्म लव स्टोरी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कल जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे आमेर महल का भ्रमण करेंगे। श्री रूबियो के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इस हाई प्रोफाइल यात्रा को भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक, कूटनीति और रणनीतिक संबंधों से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन के भारत प्रवास पर हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में हुई इस चर्चा में पश्चिम एशिया संकट से उपजे मौजूदा हालात और रक्षा सहयोग पर चर्चा की गई। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है। दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और इसके सार्थक परिणामों की उम्मीद है। केंद्र सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को मजबूत करने के लिए जांच केंद्रों GATC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए बताया कि नए नियमों में GATC वजन और माप की 23 श्रेणियों का सत्यापन कर सकेंगे। इनमें पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG, LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर जांच भी शामिल है। इस पहल का उद्देश्य व्यापार को पारदर्शी बनाना और तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज भीलवाड़ा में हमीरगढ़ हवाई पट्टी का जायजा लिया। श्री मेघवाल ने भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल और जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधु से जिले के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान सांसद अग्रवाल की ओर से भीलवाड़ा जिले से व्यावसायिक उड़ानें शुरू करने की मांग रखी गई। उन्होंने कहा कि इससे वस्त्र उद्योग को संबल मिलेगा। श्री मेघवाल ने इस प्रस्ताव को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। प्रदेश में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद ODOP 2024 में दो अहम बदलाव किए गए हैं। इसके तहत रत्नाभूषण उत्पाद से जुड़े उद्यमों के विस्तार पर भी मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। साथ ही निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी अपग्रेडेशन भी हो सकेगा। उद्योग विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सूक्ष्म इकाइयों को 20 लाख रुपए और लघु श्रेणी की इकाइयों को 15 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान मिल सकेगा। वहीं निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल की धूम आज प्रदेश भर में देखी गई। विभिन्न स्थानों पर अधिकारियों, खिलाड़ियों, युवाओं और फिटनेस प्रेमियों ने उत्साह के साथ इस मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर जयपुर के SMS

0: स्टेडियम के चारों ओर साइकिल रैली रखी गई। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करने के लिए ये आयोजन हुआ। हनुमानगढ़, जैसलमेर, कोटपुतली बहरोड, सलुम्बर, बालोतरा, झुंझुनू और पाली में भी साइकिल रैली के जरिए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। कई जगह योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम को भी इससे जोड़कर योगाभ्यास, जुम्बा, रोप स्कीपिंग सहित अन्य गतिविधियां हुई। आईपीएल क्रिकेट के लीग चरण का आज आखिरी दिन है। इस दौरान राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच प्लेऑफ के लिए मुकाबला देखने को मिलेगा। आज खेले जाने वाले पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की टीमों के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टक्कर होगी। वहीं दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा। दिल्ली और मुंबई पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। राज्य का ज्यादातर हिस्सा प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग ने आज 18 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज और येलो अलर्ट बताया है। इस बीच राजधानी जयपुर, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर सहित कई जिलों में कल शाम आंधी बारिश का दौर चला। हालांकि लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत नहीं मिल सकी। उधर पश्चिमी राजस्थान में लू के प्रकोप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। करीब 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ जैसलमेर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं कल से नौतपे की शुरुआत हो रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस दौरान गर्मी बढ़ने और तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। बहनें आप सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत।

0: ना मंजिल है ना ठिकाना है, ना मंजिल है ना ठिकाना है, अब नई कहानी और नया अफसाना है। कौन अपना कौन बेगाना है, कौन अपना कौन बेगाना है, जिंदगी के सफ़र में बस यही आजमाना है। जिंदगी एक सफ़र है, बस चलते जाना है। जी हाँ हमारी प्यारी सखियों, जब बात हुई है सफ़र की, तो आइए आपको लिए चलते हैं हम आपके पसंदीदा और मन चाहे कार्यक्रम महिला जगत के सफ़र पे, और करवाते हैं ज्ञानवर्धक मनोरंजक जानकारियों का सफ़र। तो मैं आपकी अपनी सखी प्रीति भटनागर और मेरे साथ हैं
1: डिम्पल श्रीमाली।
0: स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: और डिम्पल कैसी हो?
1: बस बढ़िया, और गर्मियाँ शुरू हो चुकी है।
0: जैसा कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, बच्चों की छुट्टियाँ हो चुकी है, तो कहते हैं ना कि हम मदर्स भी काफ़ी सारे कामों से फ्री हो चुकी हैं, और जो एक मन हो रहा है इस वक्त कि हम लोग कहीं किसी सफ़र पे चले जाएं, जैसा कि हमने बात ही सफ़र की है डिम्पल।
1: बिल्कुल, और अभी बहुत गर्मी है और हाँ। ऐसा लगता है कि ठंडी जगहों पर जाया जाए, घूमने फिरने जाना चाहिए जहाँ पर हरियाली है, ठंडक है, ऐसी जगह पर।
0: बिल्कुल, तो क्या है कि जैसे ही हम सोचते हैं घूमने फिरने जाने के लिए, तो कभी हम सोचते हैं कि मम्मी के घर चले जाएं, कभी हम सोचते कहीं और चले जाएं, या कई बार हम सोचते कि क्यों ना अपनी सिटी से किसी दूर जगह, जैसा कि अभी डिम्पल तुमने बोला। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे लिए ये भी एक चैलेंज होता है सखियों की, यार जब हम निकल रहे हैं तो हमें जो है अपना भी ध्यान रखना है, अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है ना, अपने साथ अगर कोई बड़े बुजुर्ग जाते हैं तो उनका भी ध्यान रखना है। तो क्यों ना डिम्पल हम सबसे पहले जो है गर्मी में सुरक्षित यात्रा के लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, इसी के बारे में बात करते हैं।
1: बिल्कुल, गर्मियों के मौसम में जब आप खासकर यात्रा करते हैं, तो उसमें आपको सुरक्षित यात्रा के लिए कुछ चीज़ें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि घर से निकलने से पहले, सबसे पहले आप भले लोकल जा रहे हैं, भले आप घर से निकल कर सब्जी मंडी ही जा रहे हैं, भले आप छोटे मोटे ऑफिस वर्क के लिए जा रहे हैं, किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, तो साथ में पानी की बोतल रखें, और कोशिश करें कि बीच बीच में पानी, नींबू पानी, छाछ और ORS जैसे गोल

0: है वो लेते रहे ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो, और खाली पेट और बिना पानी पिए बिल्कुल भी बाहर ना निकले।
1: बिल्कुल सही है। और गर्मियाँ जो गर्मी जो है इस वक्त कहना चाहिए अत्यधिक गर्मी हो चुकी है, तो गर्मी से संबंधित जो बीमारियाँ हैं उनके होने का खतरा भी रहता है। साथ ही साथ बुजुर्ग छोटे बच्चे और अगर कोई शिशु हमारे साथ में है तो कई बार तो जो है बुजुर्ग लोगों की जो पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग होते हैं और या शारीरिक रूप से भी वो लोग अक्षम होते हैं तो उन लोगों को समस्या ज़्यादा होती है क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं। तो अपनी यात्रा को सुखद बनाने के लिए जो है हमें बहुत सी सतर्कता रखनी चाहिए और स्वास्थ्य के लिए जो है सैनिटाइजर और मास्क भी जो है हमें अपने साथ में ले जाना चाहिए। और एक बात जो अहम आती है कि कोशिश ये करें कि कहीं भी जाएं, खाना तो हमें बाहर खाना है लेकिन खुला खाना ना खाएं, साथ ही साथ पानी भी जो है बोतल बंद पानी का उपयोग करें। और एक और ज़रूरी बात जो कि जनरल है कि अनजान लोगों से हम दूरी बना करके चलें।
0: बिल्कुल सही कहा। और हल्के और सूती कपड़े पहने, गहरे रंग के कपड़े नहीं पहने, क्योंकि जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं वो ज़्यादा धूप को आकर्षित करते हैं। इसलिए आप हल्के ढीले और आरामदायक कपड़े पहने, साथ ही सिर को टोपी पहने, छाते से ढककर रखें, गमछे से ढकें, इस तरह से तो आपका बचाव होगा, आप हीट स्ट्रोक से बचेंगे। और अगर आप बाइक या स्कूटर से यात्रा करते हैं तो 12 से 4 बजे के बीच जो है आप कोई भी बाहर निकलना ट्रैवल करने से बचें, क्योंकि ये वाला जो टाइम होता है सबसे ज़्यादा गर्म होता है। और इस बार तो आपको पता है नौ तपा भी आ रहा है।
1: हाँ, बिल्कुल सही है। साथ ही साथ जो है धूप का चश्मा भी आप लगा सकते हैं सखियों, और त्वचा के ऊपर जो है सनस्क्रीन जरूर से लगा करके निकलना चाहिए। और खान पान जो है हल्का, और कोशिश करें कि ताज़ा बना हुआ खाना खाएं, बाहर का खुला भोजन और ज़्यादा तला भुला खाने से बचना चाहिए। साथ ही साथ फल और सलादें इनको भी अपने कहना चाहिए कि डाइट के अंदर हमें शामिल करना चाहिए। और लू से बचने के लिए जो है जैसा कि अभी हमने बताया था ORS का घोल भी पीना चाहिए हमको, छाछ वगैरह जो है जहाँ कहीं भी हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी का उपयोग करते रहना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा। और हीट स्ट्रोक और जैसे बचने के अगर है आपको बचना है, किसी को कुछ हो गया है इस तरह की समस्या, तो ध्यान रखें, किसी को तेज़ सर दर्द हो सकता है, चक्कर, उल्टी, तेज़ बुखार या बेहोशी महसूस हो सकती है, तो उसे तुरंत छांव में लेटाएं, पानी पिलाएं और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़ भाड़ वाली जगह पर अपने सामान का ध्यान रखें। और अनजान लोगों से खाने पीने की चीज़ें न लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इस तरह की कंडीशन में ही होते हैं।
1: सही बात है डिंपल। और एक चीज़ हमने और भी देखी है कि जब जैसा कि हमने अभी बात की थी कि हमारे साथ में शिशु भी होते हैं छोटे, है ना, छोटे बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग लोग भी होते हैं, तो एक मेडिकल किट बना करके हमें अवश्य अपने साथ ले जाना चाहिए, ताकि कई जगह ऐसी होती है कि जहाँ हमें पता नहीं होता, या तो हम अगर हमें पता है कि हम किस जगह पर जाने वाले हैं तो आसपास में कहाँ कौन डॉक्टर्स मिलने वाले हैं इसके संबंधित जानकारी पहले से रखें, और नहीं तो कम से कम एक छोटा मोटा जो है मेडिकल किट अपने साथ में ज़रूर से हमको लेकर जाना चाहिए। और रिजर्वेशन वगैरह जो है वो सारे आगे से आगे बुक करवा लेने चाहिए, ताकि इस चिलचिलाती गर्मी के अंदर कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कहीं ऐसी जगह पर बैठ के वेट करना पड़ जाता है जहां हम गर्मी से हम परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, तो कुछ छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उनका हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक लिस्ट बना करके अगर हम निकलेंगे तो किसी तरह का कोई सामान छूटेगा नहीं,
0: बिल्कुल,
1: है ना, वो बहुत ज़रूरी रहता है। तो पहले से योजना बना के और छोटी मोटी लिस्ट बना करके उसके बाद में जो है सारा सामान अपने साथ में लेकर के और सारे रिजर्वेशंस वगैरह पहले से करवा करके फिर ही हमें निकलना चाहिए। और सामान है ना, एक चीज़ और होती है जनरली क्या होता है डिंपल, हम लोग जब निकलते तो हमने देखा है यार ये कपड़े भी डाल लूँ, वो कपड़े भी डाल लूँ, या ये भी रख लूँ, वो भी रख लूँ, ऐसे में हमारा सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: हाँ, तो सामान जो है उसकी भी हम कोशिश करें कि कम से कम सामान ले जाने की कोशिश करें, और पतले कपड़े जैसे कि वैसे भी गर्मी है,
0: कपड़े
1: है ना, सूती कपड़े वगैरह जो है उनको ही लेकर के जाएं, और एक ID प्रूफ वगैरह
0: अपने साथ में
1: जरूर से रखें, और अपने बच्चों को जो है उनके पास भी जो है इस तरह का कोई कार्ड या कुछ इस तरह के बना करके दे दें जो उनकी जेब में हमेशा रहें, ताकि बच्चे अगर इधर उधर हो भी जाते हैं तो आसानी से जो है पुलिस के द्वारा किसी तरह से वो आपके पास पहुंच जाएंगे, और आपका जो कहना चाहिए एक सुखद अनुभव है जो यात्रा के लिए आप लोग निकल रहे हैं उसका आराम से गर्मी के मौसम के अंदर भी आप पूरा पूरा आनंद उठा सकें, है ना। और अगर बच्चों को जैसा कि अभी हम एक चीज़ और बात कर रहे थे, बच्चे मानते नहीं है, और जैसा कि गर्मियों का सीजन चल रहा है तो खिड़की के पास बैठने की जिद करेंगे,
0: हाँ,
1: है ना, वैसे तो AC वाली होती है बसें, पर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ जगह पे हमें लगता है शाम हो गई है, थोड़ा खुला खुला सा मौसम है तो हम विंडो खोल लें, तो बच्चों का स्पेशली हमको ध्यान रखना है अगर वो खिड़की वाली सीट के ऊपर बैठ रहे हैं। साथ ही साथ अपने बच्चों को अपने जिस ट्रेन बस से आप सफ़र करने वाले हैं उसके नंबर वगैरह सब कुछ टाइमिंग वगैरह के बारे में भी हमें जानकारी दे के रखनी चाहिए, और ज्वेलरी का उपयोग ना करें।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: तो काफ़ी सारी बातें हो चली है, मुझे लगता है कि इस वक्त जो है हमें अपना थोड़ा कार्यक्रम को जो है

रुख मोड़ देना चाहिए। तो सखियों, सादगी किसी श्रृंगार से कम नहीं होती, चिंगारी किसी अंगार से कम नहीं होती। ये तो अपनी अपनी सोच का फर्क है, वरना दोस्ती किसी प्यार से कम नहीं होती।

0: बहुत ही अच्छा गाना था और ऐसा लगा है डिंपल कि सच में कहते हैं ना कि एक यात्रा पूरी करके फिर से हम लोग महिला जगत में आज पहुँचे हैं,
1: बिल्कुल सही कहा।
0: है ना। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं ना सखियों अभी आपसे कि छुट्टियां हो चली हैं और सभी लोग फ्री हो गए हैं, तो ऐसे में भी जो है कुछ लोगों का ऐसा होता है कि किसी रीज़न से या किसी उससे जो है हम लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, या कुछ लोगों का ऐसा होता है कि और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे आ जाते हैं फैमिली के कि वो बाहर नहीं निकल पाते हैं और घर में बैठ करके बोर हो रहे होते हैं, तो उनके लिए भी हम बात करना चाहेंगे सखियों आपसे। साथ ही साथ कुछ जो हमारी महिला सखियां हैं वो कहते हैं ना कि घर में उनके ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी कि वो चाहकर भी जॉब नहीं कर पाती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। कई बार वो घर से बाहर नहीं निकल पाती है घर की
0: बिल्कुल
1: जिम्मेदारियों के आगे, फिर भी कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे कि वो
0: हाँ
1: अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकती है और
0: हाँ
1: आत्मनिर्भर बन सकती है।
0: बिल्कुल
1: ऐसे
0: बिल्कुल
1: बहुत सारे काम हैं और वही काम आज हम डिस्कस करेंगे अपनी सभी सखियों के
0: बिल्कुल।
1: साथ में।
0: ऑनलाइन जो है पार्ट टाइम जॉब, किस किस प्रकार की जॉब जो है महिलाएं कर सकती है, उसके बारे में हम अपनी सखियों से बात करेंगे। तो सखियों जो है गृहिणियों के लिए घर बैठे ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब्स एक अच्छा विकल्प है जिसमें वो घर भी संभाल सकती हैं, अपने बड़े बुजुर्ग को सबको देख सकती है, बच्चों को देख सकती है, और एक चीज़ और आती है कि उसमें उसको फ्लेक्सिबल आवर्स मिल जाते हैं डिम्पल।

0: जिसमें कि वो जो है ऑनलाइन ट्यूशन से लेकर कंटेंट राइटिंग से लेकर डेटा एंट्री, सोशल मीडिया से लेकर मैनेजमेंट से लेकर रीसेलिंग से लेकर काफ़ी सारे काम जिसमें कि बिना कुछ लगाए है ना सेल्फ शुरू कर सकती है। बाकी जनरली क्या होता है कि हम सोचते हैं कि किसी तरह का बिजनेस करें तो हमें कहीं ना कहीं कुछ पैसा लगाना है, ये सब हो ही जाता है ना। तो बिना किसी निवेश के जो है आप किस तरह से क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, आज समय बदल रहा है, लेकिन अब समय जो बदला है उसमें गृहिणी सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है, वो अपने हुनर से अपने घर बैठे नई पहचान बना रही है। कुछ पंक्तियाँ कहूँगी उनके बारे में कि चूल्हे की गर्मी से सपनों को मत जलने दो, अपने हुनर को दुनिया में चलने दो, घर की जिम्मेदारी भी और खुद की उड़ान भी अब हर गृहिणी के हाथ में है, नई पहचान भी।
0: वाह, बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ हैं सच में। सुनने के बाद तो कहते हैं ना कुछ कर गुजरने की इच्छा या जज्बा पैदा हो गया कि वास्तव में जो है हमें भी जो है अपने समय का या खाली समय का कुछ उपयोग जरूर से करना चाहिए।
1: और आजकल प्रीति, इंटरनेट और मोबाइल ने रोजगार के नए दरवाजे खोल दिए हैं। अब
0: बिल्कुल
1: महिलाएं जो घर बैठे ऑनलाइन पार्ट टाइम काम करके भी अपनी आमदनी बढ़ा पा रही है।
0: हाँ
1: जैसे कुछ भरोसेमंद ऑनलाइन काम के बारे में भी बात कर सकते हैं हम, जैसे कि अगर आपको पढ़ाने का शौक है तो आप ऑनलाइन पढ़ाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। आज
0: बिल्कुल,
1: कई ऐप और वेबसाइट है जहाँ पर आप पढ़ाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं।
0: पढ़ाना ही नहीं
1: और
0: डिम्पल, साथ साथ मैंने देखा है कि ऑनलाइन जो है डांस वगैरह, पेंटिंग वगैरह
1: बिल्कुल
0: है ना, ये सारी चीज़ें भी हो जाती है ना, म्यूजिक वगैरह भी सिखा देते हैं आजकल तो ऑनलाइन।
1: बिल्कुल, अगर आपको लिखना पसंद है तो
0: हाँ
1: लेख, कहानियाँ, रेसिपी या ब्लॉग लिखकर भी आप पैसा कमा सकती
0: हाँ
1: हैं।
0: वेबसाइटों के लिए आप लिखें और उनको उन पे भेज दें तो उससे आपको
1: बिल्कुल
0: आमदनी हो जाएगी।
1: बिल्कुल,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जैसे कि कलम में छुपी ताकत को पहचानिए, अपने शब्दों से नया आसमान बनाइए, जो सपने कभी चुप थे जिम्मेदारियों में उन्हें अब अपनी मेहनत से आवाज़ दीजिए।
0: बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। तो जैसे कि डिम्पल ने बात की है तो हम ये सारे काम भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है डेटा एंट्री तो बहुत ही आसान काम है जो कि आपको मार्केट से भी मिल जाता है कई बार, तो आप जो है डेटा एंट्री का काम भी जो है घर पर बैठ करके कर सकते हैं। इसमें सिर्फ सखियों जो है करते करते आपकी स्पीड, कहते हैं ना टाइपिंग स्पीड ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है, तो उसके द्वारा भी आप अपना आमदनी का एक कहना जरिया बना सकते हैं। और रीसेलिंग की अगर हम बात करते हैं, ऑनलाइन वर्क वगैरह जो है, तो उसमें आप जो है कपड़ों को है, ज्वेलरी को है, या और भी कोई जो सामान है, उन सभी चीज़ों को अपना कहना चाहिए ग्रुप वगैरह बना करके, या जो अलग अलग जो हमारे वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर बेच सकते
1: बेच सकते
0: हैं।
1: बिल्कुल, जिसमें सिलाई कढ़ाई फैब्रिक पेंटिंग से रिलेटेड काम है, पेंटिंग से रिलेटेड, ओवरऑल पेंटिंग बोल सकते हैं आप,
0: हाँ
1: ज्वेलरी है, सजावट है, बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट के काम हैं आपके, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें आप सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं। छोटा काम कभी छोटा नहीं होता है, और आज घर की रसोई से शुरू हुए कई छोटे व्यवसाय जो हैं बड़े ब्रांड बन चुके हैं। आप अपना खुद का किचन जो है वो ऑनलाइन चला सकते हैं, आप
0: बिल्कुल
1: ऑर्डर ले सकते हैं उस पर, और ऐसा भी नहीं है कि आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से करेंगे, आपको पता है कि आपका क्या नुकसान है क्या फायदा है, आप किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, आपके ऊपर कोई वर्क प्रेशर नहीं रहेगा, आप
0: बहुत सारे फायदे हैं,
1: बहुत
0: मतलब
1: फायदों के बीच में रहकर आप अपनी अर्निंग कर सकती हैं।
0: बिल्कुल सही है। साथ ही साथ एक इंश्योरेंस एजेंट का काम भी होता है, वो
1: बिल्कुल
0: भी जो है हम घर बैठे भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें कभी कभी हो सकता है कि बाहर जाना पड़े, लेकिन आजकल जो है पेमेंट भी जो है ऑनलाइन आ जाता है, तो आप जो है इंश्योरेंस का काम भी कर सकती, चाहे हम व्हीकल की बात करें, चाहे जो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह होती है उनकी बात करें, तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन जो है घर में काम शुरू करने से पहले जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी हमको जानकारी पहले से इकट्ठी रहनी चाहिए, साथ ही साथ जो है उनकी विश्वसनीयता का हमको अवश्य पता लगाना चाहिए। जैसे आपने कोई ऑनलाइन वर्क लिया है ना, तो उसके बारे में हम पहले पूरा पता करें उसके बाद ही वर्क लें। और जो पहले पैसे मांगते हैं, मैंने देखा है डिम्पल आजकल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पहले आपको ये जमा कराना पड़ेगा
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: सिक्योरिटी बोल करके ले लेते हैं या इस तरह से जो है बेवकूफ़ बनाते हैं, तो उन चीज़ों से जो है आपको बचना पड़ेगा। पहले इनको चेक करें और किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना करें। साथ ही साथ अगर कोई ऑफर मिल रहा है आपको तो उस पर बिल्कुल भी आपको जो है विश्वास नहीं करना। कुल मिलाकर फेक जॉब से बचना भी है हमको।
1: बिल्कुल सही कहा। और आत्मनिर्भर बनने के लिए बड़े शहर या बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं होती है, जरूरत है सिर्फ आत्मविश्वास और शुरुआत करने की। जो खुद पर विश्वास रखती है वो हर मुश्किल पार करती है। घर की चौखट से निकलकर अब महिलाएं सपनों से संसार रचती है।
0: बिल्कुल, तो सखियों जैसा कि हमने काफ़ी सारी जानकारी दी है, उन सभी चीज़ों को आपको है जो ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हमने बताया किसी तरह का कोई पैसा नहीं देना है रजिस्ट्रेशन के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे है ना, तो जो पैसे मांग रहे हैं उनसे बच कर रहें, हमेशा जो है भरोसेमंद और जाने माने प्लेटफॉर्म पर ही जॉब ढूंढें, और ऐसे प्लेटफॉर्म पर सिक्योरिटी और सपोर्ट आपको दोनों बेहतर मिलेंगे। तो काफ़ी बातें हो चली हैं, फिर से एक बार चलेंगे और सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा।

0: तो सखियों, ये सुना हमने एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत, और जो आज का दिन है उस दिन को भी हमें भूलना नहीं है।
1: बिल्कुल, आज एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, 24 मई,
0: बिल्कुल।
1: और 24 मई बहुत खास दिन है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं।
0: बिल्कुल। तो वैसे तो जो है हम बात कर रहे हैं सखियों आपसे राष्ट्रमंडल दिवस के बारे में। तो राष्ट्रमंडल दिवस जो है हर साल मार्च के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, जो 56 सदस्य देशों के बीच में शांति, एकता और साझा मूल्यों का जश्न है। भारत में इसे 24 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सहयोग को बढ़ावा देना है। इस बार राष्ट्रमंडल दिवस जो है 9 मार्च को मनाया गया था।
1: बिल्कुल, और इसका उद्देश्य इतिहास, संस्कृति और मूल्यों का उत्सव मनाना है। पहले इसे एम्पायर डे के नाम से भी जाना जाता था, और 1958 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन द्वारा इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया गया।
0: बिल्कुल सखियों। तो यह दिवस जो है राष्ट्रमंडल देशों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, बहस और ध्वजारोहण समारोह के साथ मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अरबों नागरिकों को एक साथ लाकर के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सहयोग को बढ़ावा देना है। यह विभिन्न संस्कृतियों के आदान प्रदान और समानता को बढ़ावा देने का एक मंच है। तो जो है आज इस दिवस को, एक चीज़ और बता दें कि 24 मई 1819 को जन्मी महारानी विक्टोरिया की याद में शुरू किया गया था।
1: बिल्कुल, और एक दूसरा जो खास दिवस है
0: हाँ
1: वो भी है, अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। सखियों,
0: बिल्कुल
1: नाम से तो आपको लगता होगा कि ये क्या नाम है, और
0: बिल्कुल।
1: शायद आपने सुना भी नहीं होगा, इसीलिए
0: हाँ
1: शायद हमें इस दिवस को मनाने की भी ज़रूरत है कि मारखोर होता क्या है और ये दिवस हम मना क्यों रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: सखियों, अगर हम बात करें एक ऐसे दुर्लभ और अद्भुत वन्य जीव की जो अपनी खूबसूरती, साहस और संघर्ष के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, तो सखियों बात करते हैं एक ऐसे जंगली जानवर की जिसके घुमावदार सिंग और मजबूत शरीर उसे बेहद खास बनाते हैं। मारखोर मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, और इसे दुनिया के सबसे सुंदर जंगली बकरियों में गिना जाता है।
0: बिल्कुल सही है। और अभी जो है यह जीव शिकार और पर्यावरणीय खतरों के कारण विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया था, इसीलिए पूरी दुनिया में इसके संरक्षण और जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाया जाता है।
1: मारखोर सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण और जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पहाड़ी जंगलों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है।
0: और जब यह जंगल सुरक्षित रहते हैं तो नदियाँ सुरक्षित रहती है, हवा शुद्ध रहती है और जीवन संतुलित बना रहता है। लेकिन बढ़ती हुई कटाई, अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन ने मारखोर के अस्तित्व को भी जो है खतरे में डाल दिया है।
1: और आज ज़रूरत है कि हम वन्य जीवों के संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी समझें। सरकारें, वन विभाग और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मिलकर मारखोर को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वन्य जीवों का संरक्षण केवल कानून से नहीं बल्कि लोगों की जागरूकता और सहयोग से संभव है।
0: बिल्कुल सही है।

0: बच्चों और युवाओं को चाहिए कि वे पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बने। स्कूलों, गांवों और शहरों में वन्य जीवों के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का संदेश फैलाएं।
1: सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक जागरूकता फैलाने के लिए करें। कभी भी वन्य जीवों के अवैध शिकार या व्यापार का समर्थन न करें। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है सखियों कि धरती सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि हर जीव जंतु की भी है। जीवन तभी मुस्कराएगा जब हर जंगल हरा भरा कहलाएगा। मारखोर हो या कोई और प्राणी, सबका संरक्षण ही धरती की

0: तो सखियों हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस की। इस दिवस को जो है पहली बार आधिकारिक तौर पर 24 मई 2024 को मनाया गया था और 8 अन्य देशों का भी इसको समर्थन मिला था। यह दुनिया में मारखोर जो है यह दुनिया में सबसे बड़ी जंगली बकरी की एक प्रजाति होती है
1: और यह मुख्य रूप से अफगानिस्तान, भारत के स्पेशली जम्मू और कश्मीर वाले इलाके, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। और मारखोर शब्द फारसी भाषा से आया है जिसका अर्थ है सांप खाने वाला या सांप मारने वाला, जो इसके सर्पिल सिंगों की बनावट से प्रेरित है।
0: बिल्कुल, और फिलहाल जो है इसको संरक्षण की ज़रूरत लग रही है, तो इसे जो है IUCN की रेड लिस्ट में संकट के करीब श्रेणी में रखा गया है। तो मारखोर के संरक्षण के लिए जो है प्रमुख रूप से शिकार पर प्रतिबंध, आवास की बहाली और सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है। भारत में लिम्बर और लाचीपोरा अभ्यारण्यों में संरक्षण और पाकिस्तान में समुदाय आधारित ट्रॉफी हंटिंग के माध्यम से इसकी आबादी बढ़ाने के सफल प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो है ये ठंडे रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों में रहता है। तो अभी जो है फिलहाल जो है इनके साथ जो इस तरह की जो समस्याएं आ रही है, जो ये संकट की श्रेणी में आ रहा है, उसके प्रति ध्यान को आकर्षित करने के लिए जो है इस दिवस को हम मना रहे हैं, है ना। तो एक बार जो है इस कार्यक्रम को हम आगे की ओर लेके चलेंगे, पर फिलहाल फिर से चलते हैं और सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

0: एक बार फिर से चलेंगे सखियों अपने महिला जगत कार्यक्रम की ओर और बात करेंगे, जैसा कि हम महिलाएं हैं और फ्री समय भी आ चला है हमारे पास, तो एक बहुत ही कहना चाहिए आवश्यक मुद्दा है। कौन ऐसा होगा कि जो डिंपल अपने घर को सुंदर नहीं देखना चाहता?
1: और महिलाएं तो हमेशा अपने घर को सजाने में लगी रहती है और चाहती हैं कि उनका घर सुंदर लगे।
0: तो आपके पास टाइम आ चला है, कहना चाहिए बिल्कुल अब आपको समय मिल गया है। वैसे तो हम लोग रोज़ ही करते हैं, है ना, और स्पेशली जब ओकेजन्स आते हैं तो हम लोग अपने घर को सजाते संवारते भी हैं, पर फिलहाल जो है हम बात करना चाहेंगे सखियों आपसे कि गृह सज्जा के अंदर अपने लिविंग रूम की सजावट हम किस तरह से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, और आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसका घर सबसे खूबसूरत लगे। हमारे घर में लिविंग रूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करती है, और कोई गेस्ट भी आता है तो हम उन्हें वहीं पर स्वागत करते हैं। ऐसे में लिविंग रूम की सजावट में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। तो सखियों, लिविंग रूम को सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, और ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ मार्केट से ख़रीद के लाएं। बहुत सारी चीज़ें जो आपके घर में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उन चीज़ों को चुन सकते हैं, और कुछ चीज़ें जैसे होती है जो परमानेंट, जो लंबे समय के लिए होती है, उनको भी आप जब चुनती हैं तब कुछ इस तरीके से चुनें कि वो सुंदर लगे और

0: दिखने में भी अच्छा रहे और आपकी किफ़ायती भी रहे आपके लिए।
1: बिल्कुल सही है। तो लिविंग रूम को जो है आकर्षक बनाने के लिए हल्के रंगों का प्रयोग करें, आरामदायक फर्नीचर चुनें और जो नेचुरल रोशनी जहाँ से आती है वो जगह जरूर से खुली रखनी चाहिए। साथ ही साथ जो है इंडोर प्लांट्स और पेंटिंग से भी हम सजावट कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और खाली दीवारों पर गैलरी वॉल बनाएं जहां आप परिवार की तस्वीरें या फिर कोई दूसरी कलाकृतियां लगा सकते हैं। 3D वॉल आर्ट या जो डेकोर की दूसरी जो चीज़ें आती हैं वो आप कमरे पर की दीवारों पर सजा सकती है।
1: बिल्कुल, अभी जो है एक मंत्र वाल डेकोर चल रहा है, उसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। इससे कमरे को जो है हम एक आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण वाला लुक भी दे सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और कमरे में रोशनी बढ़ाने के लिए वार्म लाइट्स का जो उपयोग कर सकते हैं, और या फिर सुंदर लैंप हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। टेबल पर ताज़े फूल या इंडोर पौधे भी लगाकर आप जो है डेकोरेशन कर सकते हैं।
1: हाँ, इससे कमरे में बहुत ताजगी सी आ गई हो ऐसा लगने लगता है ना। और साथ ही साथ अगर आपका जो है लिविंग रूम का एरिया है वो छोटा है, तो छोटे रूम के लिए जो है आपको सोफे ऐसे चुनने चाहिए जो दीवार के साथ लग सके, है ना, पीछे की तरफ
0: बिल्कुल
1: ज़्यादा स्पेस ना रहे जिनके, ताकि बीच में जगह अच्छे से आपको मिल पाए और कमरे के बीच में जो है एक सुंदर सा आकर्षक सा जो है सेंटर टेबल भी लगाना चाहिए। और टेबल भी हमने देखा है आजकल डिम्पल बहुत अलग अलग स्टाइल के टेबल्स आने लगे हैं।
0: बिल्कुल, और वह उससे भी सुंदरता बढ़ती है, और ये एक लंबे समय तक काम में आने वाली चीज़ होती है। आप सोच
1: हाँ
0: समझ कर लें, अच्छे सुंदर सा लें तो
1: हाँ
0: वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। और
1: बिल्कुल
0: कमरे को बड़ा और हवादार दिखाने के लिए हल्के या पेस्टल रंगों का यूज़ करें। गहरे रंग के कुशन और पर्दे का इस्तेमाल मत करें। आप कमरे में रंगत भर सकते हैं अगर आप अपने कलर चॉइसेस को ध्यान में रखें तो।
1: बिल्कुल सही है। और दीवारों पर जो है मिरर लगाने से कमरा न केवल सुंदर दिखता है बल्कि रोशनी जो है वो परावर्तित होने के कारण वो आपको और भी बड़ा सा लगने लगता है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और विभिन्न जो है अलग अलग टेक्सचर के कुशंस हैं, पर्दे हैं और कालीन का भी जो है आप उपयोग कर सकते हो। वास्तु के अनुसार लिविंग रूम को घर के पूर्व या उत्तर दिशा में रखना शुभ माना जाता है, जिससे कहते हैं कि एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। तो वैसे तो हम देखें तो बहुत कहना चाहिए कि बहुत सारी बातें हैं जिनके द्वारा है जो है हम अपने घर को बहुत ही खूबसूरत सा बना सकते हैं। साथ ही साथ हमने चीज़ देखी है कि जो लाइट्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम लैंप की तो बात कर ही रहे हैं, उसके अलावा भी हम जो लाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो किस तरह की लाइट का यूज़ किया जाए कि जो है रोशनी प्रॉपर आए और किस जगह पर उनको लगाया जाए। कुछ जो है ऐसी पेंटिंग्स भी हम लगा सकते हैं और भगवान की पेंटिंग्स के अलावा भी जो है स्पेशली जो है उसमें हम लोग एक चीज़ को और ऐड कर सकते हैं डिम्पल, अपने घर के ही सदस्यों के द्वारा बनी हुई पेंटिंग्स वगैरह का यूज़ करें। जनरली मार्केट में तो पेंटिंग्स बहुत महंगी मिलती है।
0: बिल्कुल सही कहा, घर में बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि बहुत अच्छा क्राफ्ट कर सकती है, आर्ट कर
1: हाँ
0: सकती है, तो वो खुद की बनाई हुई चीज़ों को भी
1: हाँ
0: सजा
1: और
0: सकती
1: हमारे
0: है,
1: अपने बच्चों की बनाई हुई भी लगा दें तो उनसे क्या होगा कि बच्चों को भी जो है एक कहते हैं ना कि
0: मोटिवेशन मिलता
1: मोटिवेशन
0: है।
1: मिलेगा और बहुत अच्छा लगने वाला है। तो काफ़ी सारी बातें हैं कि सखियों जो है हम कर सकते हैं आपसे, पर फिलहाल जो है हमें लगता है कि ये समय हो चला है हमारा आपसे इस कार्यक्रम से विदा लेने का। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार
1: नमस्कार।
2: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
3: अच्छा
2: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
3: वो क्या है मम्मी जी?
2: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
3: आम भी ना मम्मी जी।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।

बहनें अभी सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत, आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है और फिल्म का नाम है आरजू।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को अभी आपने सुना फिल्म थी यादों की बारात। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम अगर तुम ना होते।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए फिल्म आसपास के इस गीत के साथ है फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विकास चर्चा।

विकास चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे इंटर्नशिप योजना के बारे में। भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है इंटर्नशिप योजना, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में व्यावहारिक कार्य अनुभव प्रदान करने और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। इस योजना के तहत इंटर्न्स को 9000 प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें 8100 केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं और 900 की राशि संबंधित कंपनी द्वारा उनके CSR फंड में दी जाती है।

इंटर्नशिप 6 महीने से लेकर 9 महीने तक की हो सकती है और भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत सभी इंटर्न्स का बीमा कवरेज भी किया जाता है। आवेदन करने वाले युवाओं की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए और इस योजना में 10वीं 12वीं पास, ITI सर्टिफिकेट धारक, डिप्लोमा धारक या स्नातक, BA, BSc, BCom और स्नातकोत्तर युवाओं के लिए भी ये ट्रेनिंग उपलब्ध है। रोजगार की स्थिति, उम्मीदवार पूर्णकालिक रोजगार में नहीं होना चाहिए, ना ही पूर्णकालिक शिक्षा प्राप्त कर रहा होना चाहिए। हालांकि दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन पाठ्यक्रम करने वाले युवा पात्र हैं। आवेदन के लिए पोर्टल पंजीकरण, इच्छुक और पात्र युवा आधिकारिक वेबसाइट माई भारत पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पोर्टल पर अपनी शैक्षणिक योग्यता और दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स पर आधारित अपनी युवा प्रोफाइल को पूरा करना होगा। अपनी पसंद के क्षेत्र, राज्य, जिले और योग्यता के आधार पर उपलब्ध इंटर्नशिप देखी जा सकती है और वहाँ पर आवेदन भी किया जा सकता है।

विकास चर्चा कार्यक्रम अभी आपने सुना आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में दोपहर समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से

0: पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
0: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है। ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना

0: 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एच 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल

0: स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। यह धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानशी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा

0: क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। किसान भाई अब सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम नंदू भाई, राम राम।
1: राम राम अनीता भाई सा, राम राम।
0: और कृषि जगत कार्यक्रम होने वाला सब किसान भाई बहना ने भी अपनो
1: राम राम, राम सा।
0: हाँ, देखो भाई कार्यक्रम रो टेम भी हो और चाहे अत्री भरी दुपेरी है तो भी अपने सब किसान भाई बहन जो है अपने कार्यक्रम में उपस्थित हो गया है और आवे भी है। और देखो आप आना ने भात भात री जानकारी करावा, हाँ, चाहे मौसम रिवो, खेती बाड़ी रिवो, अपने कृषि वैज्ञानिक कई कई बतावे है, आगे कई करनो है, खेती बाड़ी में कई कई काम काज करनो है, अना सब बातारी जानकारी आप आटे हल मल ने सबरे एक दूसरे डारे साझा करा। हाँ, और आज देखो आप किसान बात में बात करांगा कृषि में मोबाइल ऐप रो भी उपयोग करनो चाहे सा, क्योंकि देखो आज डिजिटल युग रे महीने ते एक तकनीक महीने खेती किसानी रे पारंपरिक तरीका ने पूरी तरीकों जो है बदल दी दो है। कृषि मोबाइल ऐप अने डिजिटल क्रांति रो एक खास हिस्सो भी बन गयो है, जो बीज उ लेने बाजार तक री समझ छतरी भी जानकारी आवे वे भी किसान भाईरी उंगलिया पे जो है उपलब्ध आसानियों कराई सके है।
1: बिल्कुल अनिता भाई साहब ठीक कह रहे हो। देखो आजकल जो है डिजिटल युग है सा, और आजकल मोबाइल और इंटरनेट देखो बनना बंडे कई भी काम नहीं भी सके, और अपना किसान भाई बहन भी जो है जो इंटरनेट और ऐप जो है अलग अलग वंडो बहुत ज़्यादा उपयोग करे। और क्योंकि आप ही जाना कि अपना देश कृषि प्रधान देश है और यो जो ऐप है यो किसाना ने सशक्त बनावा वाते और बनारी आय ने दुगनी करवा रो जो प्रधानमंत्री जी लक्ष्य रखियो है सा, वन्ने पूरा करवा में देखो मील रो पत्थर साबित वेगा सा। और कई भी जानकारी देखो ऐप रो इस्तेमाल करीन अपना किसान भाई बहन वनी टेम्पिस ले सके सा।
0: बिल्कुल, और मौसम रो अणियो अपने सटीक पूर्वानुमान भी किसान भाई लगे सके है। खेती पूरी तरीके हूँ देखो प्रकृति पे निर्भर वेवे, मेघदूत और किसान सुविधा जैसा ऐप जो है वे किसान ने बनारे स्थानीय क्षेत्र रे मौसम रो सटीक पूर्वानुमान बारिश तापमान नमी और हवारी जो गति है वनडे बारे में भी जानकारी देवे है सा।
1: बिल्कुल अनिता भाई सा, अपने किसान भाई बहना ने आप ही बताना चाहवांगा कि देखो अणियो कई कई लाभ है, अणियो किसान यो तय कर सके कि देखो वना ने कणान बुवाई करनी है, कणान सिंचाई करनी है, या कणी टाइम पे आपने कीटनाशकारो छिड़काव करनो है सा। और देखो अचानक वेवा वाली बारिश है या ओलावृष्टियों फसल ने वंचावारे बात है या जानकारी जो है अपने किसान रे बात जीवन रक्षक साबित वही सके सा। और अणी जानकारी रे आधार पर किसान भाई बहन अपने जितरो भी कृषि कार्य है वंडो प्रबंधन कर सके सा।
0: बिल्कुल, और अंडर लाल लारे देखो अगर आगे बात करा तो अणी महीने बाजार भाव और मंडीरी भी जानकारी अना एपों जो है अपने किसान भाई ने मल सके है। बिचोलिया रे चंगुलू वचवारे वाते किसान भाई जो है वना ने सही बाजार भाव पतो वेणो जरूरी है। ई नाम और एग्री मार्केट जैसा ऐप देश भर री विभिन्न मंडिया महीने जितरी भी मंडिया है वना महीने फसला रे ताजा भाव बतावे, किसान अपनी फसल ने वटे वेच सके है और जटे वना ने बेहतर कीमत मिले है वटे वनारो भी मोल भाव भी कर सके और वणी जो है अपने माल ने वेचवारी क्षमता ने भी बढ़ाई सके है सा। और कार्यक्रम में देखो आगे और भी बातचीत करांगा, लेकिन आपको तो होना एक राजस्थानी लोकगीत।
1: बिल्कुल होना सा।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो अनिता वैसे यो हुणियो आपी राजस्थानी लोकगीत और लारे लारे संदेश भी हुणियो सा। और कार्यक्रम में देखो आपी बात कर रहा कि देखो आधुनिक युग है और इंटरनेट रो जमानो है सा और अणी रो आपी इस्तेमाल जो है कृषि रे क्षेत्र में भी कर रहा है सा। और कृषि रे क्षेत्र में भी देखो अलग अलग मोबाइल ऐप आवे वनारो उपयोग जो है आपी कृषि ने सुधार उन्नत करवाते करा सा।
3: बिल्कुल। और देखो अने महीने अगर आप कृषि महीने मोबाइल ऐप रो उपयोग करा तो ये देखो कीट और रोग प्रबंधन भी आपने किसान भाइयों ने जानकारी देवे। फसला महीने अगर कोई भी कणी प्रकार की अगर बीमारी रा हिदार नजरे आवे तो किसान भाई गलत दवा रो चुनाव भी कर लेवे है। वणियों कही है कि वणारे जी फसल है वणी महीने वत्ता और रोग लाग सके तो प्लांटेक्स और पूसा कृषि जैसा ये जी ऐप है ये अनारी पहचान रे वाते अनारी तकनीक रो उपयोग करनो चाहे वो लाभ रे। अगर बात करें तो देखो किसान भाई रोगग्रस्त जतरा भी पौधा है वनारा फोटो खींचने ऐप पे अपलोड भी कर सके है। जंडे केड़े भी ऐप ने बीमारी री पहचान कर ही सके और वणियों वंडे उपचार रे वास्ते सटीक जो भी कीटनाशक काम में लेना है या कणी प्रकार का जैविक उपाय काम में लेना है यो भी ऐप वना किसान भाई ने डंडी जानकारी देवे है सा।
2: बिल्कुल अनिता भाई सान अंडे लारे लारे देखो मिट्टी रे स्वास्थ्य ने और वने में कणी तरह रो उर्वरक प्रबंधन भेणो चावे अंडे वाते भी देखो ऐप है सा। अनि में देखो आप ही बात करा कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो है यो ऐप रे माध्यम किसान अपनी जमीन री मिट्टी री जांच रिपोर्ट जो है भी किसान ऑनलाइन देखी सके सा। अंडो लाभ यो है कि देखो यो ऐप बतावे कि वनारे मिट्टी में कणी कणी पोषक तत्व री कमी है और कतरी मात्रा में उर्वरक जैसे कि यूरिया है DAP है बंडी जरूरत वनारी मिट्टी में है और अंडे आधार पर देखो खेती री लागत कम भे जावे और मिट्टी री उर्वरता भी बनी रहे क्योंकि देखो वणियों आधार पर आप कणी चीज री कमी है वो वणी में आप ही नाका तो वणियों कही पहली कही करता कि एक्स्ट्रा भी आप ही नाकी देता तो अब जितनी जरूरत है वंडी वतरीस अपी नाकंगा सा।
3: बिल्कुल। और देखो आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ अगर अपने किसान भाई है वी भी सलाह ले सके है एम किसान और अपने इफको किसान ऐप रे जरिए अपना किसान भाई वैज्ञानिक खेती रा नया नया तरीका उन्नत बीज और कृषि यंत्रारी जानकारी वही ले सके है प्राप्त कर सके। और देखो लाभ रे अगर बात करा तो किसान भाई सीधा कृषि वैज्ञानिकों सवाल भी पूछ सके है या पचे वीडियो रे माध्यम नई नई तकनीक सीख सके है। पारंपरिक खेती स्मार्ट खेती महीने जो है आजकल बदलती तकी जहरी है।
2: बिल्कुल आप ठीक ही रहा हो कि देखो किसान लोग भी जो है आधुनिक तकनीक का उपयोग करेगा तो देखो वनारी खेती में लागत जो है कम बेगा उत्पादकता जो है वह भी बढ़ेगा। अंडे अलावा देखो कणी जगह पर कणी फसल रो कतरो दाम मल रो है वंडे आधार पर ऐप में देखी अगर फसल रे आधार पर वंडे आधार पर अपनी फसल बेचेगा तो वणियों भी बनाने खूब सारो फायदो बेगा सा। या तो देखो आप ही किसान री बात की दिशा अब आपको तो एक राजस्थानी लोकगीत अणी कार्यक्रम

0: तो देखो भाई नंदू भाई, सुंदर सो मन भावन राजस्थानी गीत हुनियो आपा पिया आवो तो। और अभी देखो आपने सब किसान भाई बहन भी बैठे तका है, तो कार्यक्रम में आपा आगे जानकारी करावा कि आपने जो किसान भाई है स्प्रे रो जो उपयोग है वो कीटनाशकर वास्ते आराम कर सके है, वणियो वणा ने खूब फायदो रे वैसा कीटनाशकारो छिड़काव। देखो अबार जो आधुनिक कृषि है बागवानी है येड़ा महीने एक असो जरूरी आजकल हिस्सो बन गयो है। उचित तरीकों अगर अणी स्प्रे ने भी करे तो नहीं केवल देखो फसला ने हानिकारक कीटाओं और बीमारियों बचाई सके, बल्कि देखो संसाधनारी जा बचत है वा भी वेवे और अपना जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित बने तो करे वैसा।
1: बिल्कुल अनिता वैसा, अपने किसान भाई बहनों ने अभी कहना चाहवांगा कि देखो कीटनाशकों मुख्य उद्देश्य जो है फसलारी गुणवत्ता और पैदावार ने बनाए रखना है, और स्प्रे रे माध्यम रसायना ने सूक्ष्म बूंदार में बदलीन जो है पौधा रे वणा हिस्सा तक स्प्रे रे माध्यम पहुँचाए जावे जटे कीट छिप्या तक रहे। और अणी विधि में कहिए कि ठोस या दानेदार कीटनाशक री तुलना में ज़्यादा प्रभावी वेवे, क्योंकि यो कम समय में बड़ा क्षेत्र ने कवर कर ले। तो स्प्रे रे माध्यम अगर आप छिड़काव करा तो कीट जड़ी भी अवस्था में है और जड़ी भी पौधा रे क्षेत्र में है वही जगह आराम वो पहुंच सके और अणियों कीटनाशकों छुटकारो भी अपने जल्दी मिल सके सा।
0: बिल्कुल, और छिड़काव रहा अगर प्रकार की बात करा तो देखो नेपसेक स्प्रेयर अपने किसान भाई स्प्रे कर सके, यो सब ज़्यादा आम उपकरण है जड़ी में इन्हें किसान भाई पीठ पे टांगी ने इन्हें चाली सके है। यो छोटो और मध्यम खेता रे वाते आदर्श वे है। पावर स्प्रेयर अगर बात करा तो देखो अणी में इंजन या पचे मोटर उपयोग वे है, जणियों कहिए कि रसायन अधिक दबाव रे लारे लाले और तेजियों भी निकले है लाल लारे। अगर ड्रोन स्प्रेयर अगर बात करा तो देखो बताओ ड्रोन में इन्हें किस तरह कर सके।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, देखो आधुनिक तरीकों जो है ड्रोन स्प्रेइंग है सा, और ड्रोन रो उपयोग जो है कृषि में भी बढ़तो जा रहा है ना। आधुनिक कृषि में तो अब ड्रोन रो इस्तेमाल जो है हर तरह पे किसान कर रहा है, और सटीक तरीकों अणियों कहिए कि आपने कम पानी में इन्हें छिड़का पूरा खेत में एक ही की स्थिति में वे जावे तो अन्य कारण किसान जो है अणी ड्रोन रो इस्तेमाल जो है कीटनाशकर स्प्रे में भी ज्यादा में ज्यादा कर रहा है सा।
0: बिल्कुल, और स्प्रे गोल तैयार विधि की अगर बात करा तो देखो सटीक मात्रा में इन्हें लेबल पे जत्रो भी जो निर्देश दीदा तका है वनडे अनुसार कीटनाशक की मात्रा लेनी चाहे, जरूरत ज्यादा अगर वनार उपयोग जो है वो फसला ने अगर जलाई भी सके है, और कम उपयोग अगर किसान भाई करेगा तो देखो भाई कीटनाशक जो है भी मरेगा भी नहीं। अंडे लाल लाल पानी की गुणवत्ता की बात करा तो देखो हमेशा साफ पानी ने काम में लेना चाहे, गंदो या पचे खारो पानी रसायनारी प्रभावशीलता ने भी कम कर देवे है।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अबे देखो मिश्रण प्रक्रिया की बात करा तो पहले एक छोटी बाल्टी में कीटनाशक और थोड़ो पानी मिलाइन पचे प्रीमिक्स तैयार आपने करनो है पचे वन्ने स्प्रे टैंक में डालनो है सा।
0: बिल्कुल, और स्प्रे करवारी अगर सही तकनीक की बात करना तो देखो नोजल रो चयन करनो चाहे, कीट रे प्रकार रे आधार पे देखो नोजल बदल देनी चाहे। अगर पत्ता रे नीचे छिपे तक का कीड़ा है वना ने मारनो है तो कौन नोजल रो उपयोग करनो चाहे किसान भैया ने जी कोरा जैसा स्प्रे बनावे है सा।

0: દબાવ નિયંત્રણની અગર વાત કરા તો દેખો સ્પ્રેયરનો દબાવ સ્થિર રાખવાનો ચાવે તાકી બુંદારો આકાર સમાન બને તો કો રહેવે ઓર કવરેજની વાત કરા તો દેખો ભાઈ સ્પ્રે અણી તરીકે હું કરનો હૈ કે પોધારે ઉપરી ઓર નીચલા દોઈ હિસ્સા મહીને હઉ તરીકે હું ગીલા વી જાવે લેકિન અતરાવી જ્યાદા ગીલા નહીં કરના હૈ કે રસાયણ જો હૈ જમીન પર ટપકવા લાગ જાવે સા
1: બિલકુલ આપ ઠીક કહી રહ્યા અણી મેં આપણને ઉચિત સમય ઓર મોસમ રો ભી ધ્યાન રાખણો હૈ गलत समय पर कीधो गयो स्प्रे जो है आपने कणी काम रो नहीं रहेगा और निष्फल भी जाएगा। सुबह या शाम ने स्प्रे करनो और तेज धूप में रसायन जल्दी वाष्पित भी जावे और बणियों कही है कि पत्तियां ने नुकसान भी पहुंचावे तो आपने सुबह या शाम स्प्रे आप ही कर सका सा। और हवारी दिशा रो भी आपने ध्यान रखना है कि देखो हवारी जो स्थिति है वह विपरीत दिशा में वेणी चावे सा।
0: बिल्कुल और अगर जटे स्प्रे री उचित समय री बात करें तो हमेशा देखो सुबह 10 बजे पहला या पचे हांजे 4 बजे केड़े स्प्रे किसान भाई ने करना चाहे और हवारी जो दिशा री आप बात की दी तो वणी महीने कही है कि अनारो जो खेत है वणी खेत रे महीने अगर ये छिटकाव करे तो तेज हवा वे तो छिटकाव टाल देनो चाहे क्योंकि अणियों कही है कि जो यह दवाई है वह दूसरा खेत महीने या पचे अपने पे भी आई सके है सा।
1: बिल्कुल सा याद आप ही बात की दी कि देखो स्प्रे रे माध्यम कीटनाशक रो छिड़काव आप ही कतर कर सका सा। अब आपको तणी कार्यक्रम में एक राजस्थानी लोकगीत अपने किसान भाई बहनों ने और हुनावा सा।
0: हाँ सा।

0: तो अनीता भाई सा यो तो हुणियो आपी राजस्थानी लोकगीत और अब आपने घड़ियाड़ी देखा तो कार्यक्रम में विद्यालय वाली वक्त वे गयो है सा तो आपने किसान भाई बहनों आज्ञा लासा जय जवान
1: राम राम सा। किसान भाई अभी सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
3: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
2: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
4: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
2: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। अमरीकी विदेश मंत्री चार दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वांग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में हो रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा शुल्क लिया गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच तीन बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। महिला वर्ग में अमेरिका की कोको गॉफ मौजूदा चैंपियन के रूप में हिस्सा ले रही हैं। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भामरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी

0: ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 3:05 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के प्रसारण लेकर शाम 5 बजे आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। हमारी संध्याकालीन प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा साथी सुनेंगे उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम अब हमारे FM लेक सिटी चैनल के श्रोता भी एक साथ सुन सकेंगे।

0: हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त मोहित, और मेरे साथ हैं मनस्वी।
1: दोस्तों, आज के कार्यक्रम होगा जानकारी और मनोरंजन से भरपूर। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनेंगे

0: पोस्टर मेकिंग कंपटीशन के विनर्स का इंटरव्यू, न्यू गैजेट्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे स्मार्ट वेयर हाउसेज गैजेट्स के बारे में, और सेहतनामा में बात होगी हंटिंगटन्स डिजीज़ की, और फिल्मी दुनिया में चर्चा करेंगे राजेश रोशन, श्यामानंदन जालन और जॉन सी रैली, जिम ब्रॉडबैंड, एरिक कैंटोना और बचेंद्री पाल की। साथ ही मनाएंगे आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों का सफ़र और जानेंगे रेडियो और स्पोर्ट्स के खास रिश्ते के बारे में।
1: और हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, अंत में आज का इतिहास और स्पोर्ट्स अपडेट से जुड़ी जानकारी भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का युवाणी कार्यक्रम इस शानदार गीत के साथ।

0: आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित पोस्टर मेकिंग कंपटीशन के विनर्स का इंटरव्यू, जिसके प्रस्तुतकर्ता हैं मनोज कुमार अम्बेश।
1: नमस्कार। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर महानिदेशालय नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशानुसार शहर के विभिन्न महाविद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में इस बार मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय के विजुअल और फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कंपटीशन की दो विजेताएं हमारे साथ हैं, जो पहली हैं तमन्ना नकबाल और साथ में भक्ति जहांगीर। आप दोनों हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तमन्ना और भक्ति, नमस्कार।
2: नमस्ते। नमस्ते।
1: कार्यक्रम में बहुत सारा स्वागत है आपका। सबसे पहले आप दोनों को बधाई है कि आप दोनों विजेता हैं। आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो तमन्ना सबसे पहले अपने बारे में बताएं, अपने परिवार के बारे में बताएं।
2: जी, तो सबसे पहले तो नमस्कार। मैं आकाशवाणी की पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मेरा नाम तमन्ना नकवाल है। मैं मोहनलाल सुखाड़िया से विजुअल डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। मैं माउंट आबू की रहने वाली हूँ। मैंने स्कूलिंग भी केंद्रीय विद्यालय माउंट आबू से करा है। मेरे घर में पापा, मम्मी और मेरी बहन है। पापा ड्राइवर है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरी बहन स्टडी कर रही है। मुझे बचपन से है ना ड्राइंग का बहुत ज्यादा शौक था, आर्ट एंड क्राफ्ट बनाती थी। लेकिन मेरे भैया थे, बड़ी मम्मी के बेटे, वो बहुत ज्यादा अच्छी स्केचिंग करते थे, तो उनको देख के मुझे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन उन्हीं से मिली है कि मुझे ड्राइंग करनी है, मुझे पेंटिंग करनी है। फिर 10th में आने के बाद मैंने शुरू की ड्राइंग करना। फिर मेरी क्लास टीचर से मिस रेजा, उनको पता चला कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी पेंटिंग बनाती हूँ, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि तुम ड्राइंग के अंदर भी अपना स्कोप कर सकती हो, इसके अंदर करियर बना सकती हो। तो सब लोगों ने मिलकर मुझे सपोर्ट किया और आज मैं यहाँ पर हूँ और अपने हॉबी को अपना करियर बना पा रही हूँ।
1: भक्ति, आप अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए।
3: जी नमस्ते। पहले तो सभी को बहुत धन्यवाद मुझे मौका दिया यहाँ आने का। और मेरा नाम भक्ति है। मैं वैसे उदयपुर की ही रहने वाली हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग गुरु नानक से की है और अभी कॉलेज में 3rd ईयर की छात्र हूँ। और घर में ड्राइंग का माहौल थोड़ा सा ऑलरेडी था क्योंकि मेरे पापा ड्राइंग के टीचर हैं, तो बचपन में थोड़ा बहुत करते करते लाइक इंटरेस्ट भी जाग गया। और साथ में अभी मैं एज एन एंकर भी काम करती हूँ, इवेंट एंकरिंग वगैरह। सो दैट्स ऑल। और घर में मेरे 11 लोग रहते हैं, अभी हमारी जॉइंट फैमिली रहती है, और जिसमें बहुत सारा क्राफ्ट्स वगैरह का तो रहता है क्योंकि पेशे से हम सुथार हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी ड्राइंग्स वगैरह और फर्नीचर वगैरह सब में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जाग जाता है। जैसे क्राफ्ट्स वगैरह हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ग्लू वुड वगैरह कुछ भी जोड़ के बना दिया, समथिंग समथिंग।
1: तमन्ना, क्या आपके परिवार में कोई आकाशवाणी उदयपुर या विविध भारती के कार्यक्रम सुनते हैं?
2: जी, हमारे घर में दादा के टाइम से ही सब आकाशवाणी के मतलब आकाशवाणी रेडियो से सब दादा सुनते आए हैं। कभी भजन सुन लेते थे, कभी क्रिकेट इंडिया जो क्रिकेट होते थे वो सुनते थे। क्रिकेट का तो ऐसा था कि पापा ने बताया था कि जब क्रिकेट शुरू होते थे तो पूरा मोहल्ला एक साथ इकट्ठा होकर क्रिकेट सुनता था, क्योंकि उस वक्त टीवी हुआ नहीं करती थी। तो रेडियो से है ना, मतलब पापा ने मुझे बताया कि रेडियो एक जरिया था लोगों को जोड़ने का, लोगों को जोड़ने का, आपस में लाने का। मेरे दादाजी है वो रागमालाएं सुनते थे, कवालियां सुनते थे।

0: और मेरी मम्मी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा देखते थे, मतलब रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा सुनते थे, तो मुझे भी रेडियो का शौक लग गया था। और मैंने भी पापा से ज़िद करके काफ़ी रेडियो, मतलब बहुत बार ज़िद करी, तब जाके पापा मेरे लिए रेडियो ख़रीद के लाए थे और मैंने उसको सुनना शुरू किया था। और मुझे काफ़ी चीज़ें जानने को मिली थी कि रेडियो में इतनी सारी चीज़ें भी हम जान सकते हैं।
1: कौन से खास कार्यक्रम आपको बेहद पसंद है जो रेडियो पे आते हैं?
0: पुराने सॉन्ग ज़्यादा सुनती थी मैं पापा के साथ में।
1: भक्ति, आपके परिवार में कोई आकाशवाणी उदयपुर या विविध भारती के कार्यक्रम सुनते हैं?
2: हाँ, मेरी मम्मी खासकर सुनती हैं, जो कि दोपहर करीब जो राजस्थानी गानों का एक कार्यक्रम आता है, और मुझे भी एक बहुत अच्छा लगता है, वो है हेलो डॉक्टर। मैं मोस्टली सुनती हूँ और मैं कई बार उसमें अपने सवाल भी भेजती हूँ। और ये दो कार्यक्रम हम मोस्टली शायद जब जब भी वो आते हैं हम हमेशा सुनते हैं। शायद हेलो डॉक्टर वीकेंड्स पे आता है।
1: स्वास्थ्य से जुड़ा कार्यक्रम है
2: हाँ
1: जो शुक्रवार को
2: हाँ और
1: मॉर्निंग
2: जैसे
1: टाइम में
2: आज
1: आता
2: सुबह
1: है।
2: भी मैं कार्यक्रम सुनकर ही आई थी, जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात हो रही थी सुबह, गजेंद्र सर उसको।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज ये प्रोग्राम जो है हमारा ब्रॉडकास्ट हुआ है और युवाओं के लिए जो शिक्षा है उसके लिए फायदे मिलते हैं, उसके लाभदायक हैं, तो उस बारे में कार्यक्रम हुआ। तो अब आपसे अगला सवाल हमारा यही है, सबसे पहले तमन्ना कि यूथ के लिए जो कार्यक्रम आकाशवाणी उदयपुर पर या विविध भारती पर आते हैं वो यूथ को किस तरह से लाभ देते हैं?
0: उनको बेसिकली बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, उनको जानने को मिलता है वो अपने सपनों के पीछे जाए, अपने सपने पूरे करें, पूरा फुल मोटिवेशन मिलता है। तो मेरे ख्याल से सबको सुनना चाहिए, सारे यूथ आजकल की जनरेशन को तो सुनना ही चाहिए।
1: भक्ति, यूथ को रेडियो के प्रोग्राम सुनने से किस तरह से लाभ होता है?
2: मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल में कुछ भी देखने के बजाय सुनना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसमें हम एकाग्र होकर उस चीज़ को सुन सकते हैं और काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, हम अपने सवाल दे सकते हैं, हम उनसे जुड़ी जानकारी हम ले सकते हैं। क्योंकि मोबाइल में कुछ भी चीज़ हम देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन उसमें फील होता है पर्सनली। तो आई गेस जो प्रोग्राम होते हैं परीक्षा से रिलेटेड हैं, हेल्थ से रिलेटेड हैं, सारे युवा को सेंटर में रख के ही बनाए जाते हैं। तो ये ऐसा मुझे लगता है।
1: चलिए, अगर ये जानना चाहें कि तमन्ना को बड़े होकर अपने करियर में क्या करना है तो क्या जवाब रहेगा?
0: मेरा ऐसा है कि मैं ड्राइंग टीचर बनना चाहती हूँ, मतलब मुझे अपना खुद का आर्ट स्टूडियो खोलना है, मुझे एग्जीबिशंस भी करने हैं, लेकिन उसके अलावा मुझे ड्राइंग टीचर भी बनना है। क्योंकि स्कूलों के अंदर क्या होता है, ड्राइंग मतलब टीचर्स होते हैं वो बताते हैं बस कि तुमको फ्री पीरियड है, ड्राइंग है, तुमको काम करना है, तुम काम करो, कोई चीज़ बना देते उसको कॉपी करो। लेकिन मैं ड्राइंग बताना चाहती हूँ, मैं सिखाना चाहती हूँ कि असल में ड्राइंग होता क्या, कला होता क्या, क्योंकि स्कूल स्टूडेंट नहीं जानते ड्राइंग के बारे में इतना जितना मैंने सीखा है ड्राइंग को। हर एक आर्ट, एक लाइन, हर चीज़, मतलब पूरा एज इट इज़ मैं उनको बताना चाहती हूँ, प्रॉपर उनकी डिटेल देना चाहती हूँ।
1: भक्ति, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं?
2: मैं एक रिसर्चर बनना चाहती हूँ, जिसमें क्योंकि मुझे नई चीज़ें जानने का ज़्यादा शौक है बजाय मुझे कुछ बनाने का, क्योंकि मुझे थ्योरी ज़्यादा पसंद है पेंटिंग करने से। तो आई गेस कि मेरा फील्ड ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे ऐसा फील होता है कि एज अ पहले PhD देन रिसर्च में जाके फिर लाइफ टाइम अगर रिसर्च करने का मौका मिले तो मुझे अच्छा लगेगा।
1: आप दोनों पोस्टर कंपटीशन की विजेता हैं। जब पहली बार आपने अपने महाविद्यालय में इस पोस्टर प्रतियोगिता के बारे में सुना तो पहला ख्याल तमन्ना आपके मन में क्या आया?
0: मुझे जब पता चला कि इसके पूरे 90 ईयर्स पूरे हो रहे हैं आकाशवाणी के, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही चीज़ आई, क्योंकि मेरे घर में भी रेडियो का बहुत अच्छा माहौल रहा है। तो मैंने सोचा कि एक ही बड़े पेपर के ऊपर मैं अपने जितने भी जो मैं सोचती हूँ आकाशवाणी को लेके, रेडियो को लेके, वो मैं बनाऊँ। तो उसके अंदर मैंने बताने की कोशिश की है कि एक पूरा अलग अलग मैंने बताने की कोशिश की है कि मैंने 3 हिस्से में बताया है। पहले हिस्से में मैंने बताया है कि पूरी फैमिली बैठी है, जिसके अंदर बच्चों से लेके दादा दादी तक सब बैठकर ये काम कर रहे हैं, बना रहे हैं। वो उनको दिखाता है कि पुराने टाइम में रेडियो एक साधन था सब लोगों को जोड़ने का, सब लोगों को इकट्ठा करने का, लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता। आज के टाइम में कोई कहाँ होगा ना, एक साथ फैमिली बैठती भी नहीं आजकल के टाइम में। दूसरे के अंदर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि किसान है वो खेती कर रहे हैं, और उन्होंने रेडियो पेड़ पर लटका रखा है, जिससे उनको काम करते हुए उनका मनोरंजन भी हो रहा है, खेतों से जुड़ी उनको जानकारी भी मिल रही है, मौसम की जानकारियाँ भी मिल रही है, तो जिससे वो जागरूक हो रखे हैं। बीच में मैंने पुराने रेडियो से लेके मोबाइल का रेडियो आज तक बनाए हैं, मोबाइल के अंदर भी आजकल रेडियो रहते हैं। तो मैंने बताना चाहा है कि टाइम कितना भी निकल जाए, वक्त कितना भी बदल जाए, तकनीकी और माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रेडियो कैसे भी कैसे किसी भी तरीके से आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने यही बनाने का, जब मुझे पता चला कि मैंने यही सोचा था कि मैं यही चीज़ बनाऊंगी अपने पोस्टर में।
1: भक्ति, आपने जब पोस्टर

0: प्रतियोगिता के बारे में सुना तो आपके मन में पहला ख्याल क्या आया?
1: तो जब मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा था कि पोस्टर कंपटीशन है, सच कहूँ तो पहले मैंने इतना सीरियसली लिया नहीं था। उसके बाद में शायद मुझे ऐसा लगा कि चलो बनाया जाए, कुछ देखते हैं। फिर मैंने सर्च किया कि 90 साल का कैसा सफ़र था, तब पता चला कि 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, और मुझे लगा हो चुके हैं 90 साल। फिर पता चला कि अब होने वाले हैं 8 जून को। तो फिर मैंने सर्च किया लाइक कि पहले के स्टूडियो कैसे थे, कैसे धीरे धीरे जो जर्नी है वो आज के टाइम तक हमारे साथ आई है। तो फिर उसके मैंने फ़ोटोज़ निकाले, उनका एक कोलाज बनाया, और पोस्टर कुछ इस तरह से था कि बस आगे रेडियो था और उसके पीछे जो वेव्स थी वो ऐसा बता रही थी कि कैसे शुरुआत के पहले स्टूडियो से, पहला हमारा प्रोग्राम पहले पॉडकास्ट से चला करके आज इवन हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस चीज़ को एज अ मीडियम यूज़ करते हैं लोगों से जुड़ने का। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने पोस्टर में बताई।
0: हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात प्रोग्राम होता है जिसमें बहुत अच्छी जानकारी सभी को मिलती है, खासकर यूथ को जानकारियाँ मिलती हैं। जब तमन्ना आपको मालूम हुआ कि आपका पोस्टर विजेता के रूप में चुना गया है तो आपको कैसा महसूस हुआ?
2: मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि कंपटीशन पूरा होने के बाद हम लोग क्लास में चले गए थे। मैं अपना काम ही कर रही थी और थोड़ी देर में हेमंत सर का फ़ोन आता है कि जल्दी मेरे ऑफिस में आओ, और मैं वहाँ गई तो मैंने देखा आकाशवाणी की टीम पूरी बैठे हुए थे। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुकी थी। फिर उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा, मुझे बधाइयाँ थी, तो भी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं जीती हूँ, मेरा नाम आया है, क्योंकि सोचा तो मैंने भी नहीं था कि मेरा नाम आएगा।
0: भक्ति, आप भी हमारी विजेता हैं। जब आपको मालूम चला कि आपकी जो कृति है वो विजेता के रूप में चुनी गई है तो आपने उस वक्त कैसा महसूस किया?
1: जैसा तमन्ना ने बताया कि पहले तो यकीन नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी हुई, और एक्चुअली मैं घर पहुंच गई थी, लेकिन जब कॉल आया हेमंत सर का तो मैं जल्दी से वह कॉलेज आई वापस। मैं देखना चाहती थी कि क्या माहौल है वहाँ पे। तो वहाँ पे सब सारी टीम बैठी थी और सर बैठे थे, तब पता चला कि अच्छा प्राइज़ लगा है। तो थोड़ा सा नर्वसनेस था, लेकिन स्टिल बहुत हैप्पीनेस ज़्यादा थी, नर्वसनेस कम थी।
0: लेकिन जो डिजर्व करते हैं उन्हें ये मौका मिलता ही है, और ज़िंदगी उन्हें आगे बढ़ने का अवसर ज़रूर देती है। तमन्ना, जब आपने अपने घर पे बताया कि आपने पोस्टर कंपटीशन में भाग लिया है और उसमें विजेता के रूप में आप चुन ली गई हैं, तब परिवार का जो रिएक्शन था वो कैसा रहा?
2: मेरे घर पे, सच बताऊँ तो अभी सब लोग नाना के घर पे गए हुए हैं, वहाँ पे कोई प्रोग्राम है, तो सब बिजी ही थे। लेकिन मैंने जब बताया तो मम्मी एकदम शॉक हो गई, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम चिल्ला गए खुशी के मारे कि हाँ सच्ची में ऐसा हुआ। तो मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने बहुत सारी बधाइयाँ दी। फिर मैंने पापा को बताया, पापा ने बोला बहुत बढ़िया, हमारे परिवार में आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया है, और परिवार में मैं ही पहली लड़की हूँ जो इतना पढ़ पा रही हूँ, वरना और किसी ने इतनी पढ़ाई भी नहीं की है। तो बहुत ज़्यादा खुश हुए और कहा कि है ना, तुम ऐसे हमारे साथ, फैमिली के साथ, पूरे मोहल्ले का भी और हमारे स्कूल का भी ना, मतलब टीचर्स को भी जब पता चला तो बहुत ज़्यादा खुश हुए, उन्होंने बहुत प्राउड फील किया उन्होंने, तो बहुत अच्छा था वो रिएक्शन, और मेरे लिए भी काफ़ी यादगार था।
0: भक्ति, जब आपको मालूम हुआ कि आप विजेता हैं और जब आपने ये बात अपने घर पे बताई, परिवार में बताई, तो उनका रिएक्शन किस तरह से आपको मिला?
1: जब मैंने बात बताई तो सब खुश थे, मम्मी भी काफ़ी खुश थी, पापा भी ऑफकोर्स, क्योंकि वो भी इसी फील्ड से हैं। तो उन्होंने कहा ये शुरुआत है, यहीं नहीं रुक जाना है, ये इसमें बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना है कि हाँ मैंने सब पा लिया, लाइक कि अभी धीरे धीरे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे। और बाकी सब अच्छा था, सब खुश थे, और मेरी खुशी, मुझे लगता है मेरी खुशी सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि मैं उसको पर्सनली फील कर रही थी, क्योंकि मैं जाऊँगी, मैं इंटरव्यू दूँगी, बाकी सब भी बहुत खुश थे।
0: न्यूज़ ऑन AIR ऐप, जिसके बारे में आपने अपने पोस्टर में भी बताया था तमन्ना, उस बारे में आपको कितनी जानकारी है, ज़रा हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: न्यूज़ ऑन एयर ऐप, मुझे भी कुछ टाइम पहले मुझे पता चला था इसके बारे में, तब मैंने जाना था रेडियो ऐप ही है जिसे हम जहाँ पर है उसके अलावा ऑल इंडिया से लेकर ऑल कंट्रीज तक पूरे दुनिया की न्यूज़ हम तक पहुंच सकती है, हम लोग हर जगह की रेडियो सुन सकते हैं। तो मैंने यही जाना था इसके बारे में कि ये बहुत अच्छा रेडियो ऐप है।
0: भक्ति, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, इसके बारे में जानकारी है आपको?
1: ज़्यादा डीप जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने जब ये ऐप डाउनलोड किया था काफ़ी टाइम पहले, जब मैंने इसे देखा तब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस है, ना कि सिर्फ रेडियो, इसमें हम कई तरह की पॉडकास्ट सुन सकते हैं, कई ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे भी इसमें काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग्स थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, काफ़ी लाइव न्यूज़ सुन सकते हैं, लाइव रेडियो सुन सकते हैं, और इवन हमारी सिटी नहीं, हम इंडिया

0: की काफ़ी सारी सिटीज़ की चीज़ें सुन सकते हैं। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यह ऐप, और पर्सनली मैं इसको जब मुझे कोई पॉडकास्ट सुनना होता है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ बजाय कुछ यूट्यूब पर जा कर के सुनने में, तो मुझे अच्छा लगता है।
1: युवा और रेडियो, अगर इसके बारे में हम आपसे कुछ चंद लाइनों में जानना चाहें तो तमन्ना क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल के टाइम में स्क्रीन गैजेट बहुत ज़्यादा आ गए हैं, लोग बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं, और यूट्यूब सॉन्ग्स वगैरह ये सब ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से रेडियो बहुत ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि जो चीज़ें देखने से हमारा पूरा माइंड सिर्फ वो देखने में लगा रहता है, लेकिन हम सुनते हैं ना तो हमारी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो सुनने से हमारे अलग अलग क्रिएटिव्स आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं, इमेजिन करने लग जाते हैं कि हाँ हम ये सुन रहे ये चीज़ हुई होगी, ये चीज़ ऐसे हुई होगी, हम पूरा उस चीज़ को इमेजिन कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से यही है कि देखने से अच्छा तो सुनना चाहिए, और आज की जनरेशन को मेरे ख्याल से ज़्यादा रेडियो ही सुनना चाहिए, क्योंकि मोबाइल और स्क्रीन गैजेट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं हर चीज़ को लेकर।
1: रेडियो और युवा, इस बारे में भक्ति कुछ कहना चाहेंगे?
0: मुझ जैसे लोगों को, लाइक जो मेरी एज जो है उनको, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वो रेडियो से अभी इतनी जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि मोबाइल्स वगैरह हैं और रेडियो शायद वही सुनते होंगे जिनके घर में रेडियो बहुत ज़्यादा सुना जाता है। तो मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि हर एक युवा को, अभी अगर वो रेडियो नहीं सुनेंगे तो उनके आने वाले जनरेशन को कैसे पता चलेगा कि एक आकाशवाणी है क्या चीज़, न्यूज़ ऑन एयर है, और ऑल इंडिया रेडियो का हमारा जो पूरा सिस्टम है वो है क्या। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि शुरुआत जो नहीं करते उन्हें करनी चाहिए, सुनना चाहिए, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जो खासकर युवा को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, परीक्षा पर चर्चा है और हेलो डॉक्टर वगैरह काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, तो आई गेस सुनना चाहिए सबको।
1: तमन्ना, अगर यूथ को अपनी कोई बात कहनी हो, कोई संदेश देना हो, तो संदेश क्या होगा?
2: संदेश मेरे, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि सब चीज़ें ठीक है, जो हो रहा है वो भी ठीक है, लेकिन जो सपने देख रहे हैं वो, जो उनको करना है वो करें। काफ़ी लोग आएंगे बोलेंगे कि तुमको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये करो वो करो, ये सब नहीं करना है, मतलब जो वो सोच रहे हैं, वो जो करना चाहते हैं खुद, बस वो उसके पीछे रहे। क्योंकि मेरे टाइम में भी मुझे मेरे पेरेंट्स को काफ़ी लोगों ने बोला कि पेंटिंग है इसमें क्या स्कोप होगा, कुछ नहीं कर पाएगी, और ये ज़्यादा सिर्फ हॉबी बन के रह जाएगी, लेकिन पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगी कि जो वो सपने देखते बस उसको ही वो पूरा करें, उसके पीछे उसको उस पर फोकस करें, तो आगे जाके सब अच्छा होगा।
1: भक्ति, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: सेम जैसा कि तमन्ना ने कहा, एज अ ड्राइंग स्टूडेंट और एज अ म्यूजिक स्टूडेंट भी काफ़ी सारे बच्चों को ऐसा फील होता है, क्योंकि उनको इसी तरह का सिखाया जाता है कि ये फील्ड्स फ्यूचर के लिए सेफ फील्ड्स नहीं है, सेफ फील्ड्स में आता है साइंस, मैथ्स, बायो, इस तरह की चीज़ें। बट अगर आपका मन कहता है कि करना है, सो आप किसी की ना सुने, बस करें, और अगर आप करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं तो लाइफ में आप ज़रूर पहुँच जाएंगे।
1: पोस्टर प्रतियोगिता की दोनों विजेताएं तमन्ना नखवाल और भक्ति जहांगीर हमारे बीच यहां स्टूडियो में मौजूद रहीं। आप आए और आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, धन्यवाद।
3: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन के विनर्स का इंटरव्यू, जिसके प्रस्तुतकर्ता हैं मनोज कुमार अम्बेश।
4: बिल्कुल दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया हर दिन तेजी से बदल रही है, और अब स्मार्ट गैजेट्स सिर्फ घरों तक सीमित नहीं बल्कि बड़े बड़े वेयरहाउस और गोदाम के कामों को काफ़ी इजी और फास्ट बना रहे हैं। तो चलिए आज के न्यू गैजेट सेगमेंट में जानते हैं कुछ ऐसे ही नए स्मार्ट वेयरहाउस गैजेट्स के बारे में जो आजकल काफ़ी चर्चा में है।
3: बिल्कुल मोहित, आजकल वेयर हाउस में स्मार्ट इन्वेंट्री रोबोट्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ये छोटे ऑटोमेटिक रोबोट गोदाम के अंदर खुद सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, और इससे समय भी बचता है और मेहनत भी कम लगती है।
4: और दोस्तों, अब बाजार में डिजिटल स्मार्ट लॉक सिस्टम भी आ गए हैं। इसमें फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन और मोबाइल ऐप से गोदाम का लॉक कंट्रोल किया जा सकता है, यानी बिल्कुल बिना अनुमति के कोई भी अंदर एंट्री नहीं कर सकता।
3: इसके अलावा ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम भी काफ़ी नया और शानदार गैजेट माना जा रहा है। वेयर हाउस के बड़े एरिया में ड्रोन उड़ाकर स्टॉक और सुरक्षा दोनों पर नज़र रखी जा सकती है। इससे निगरानी पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गई है।
4: बिल्कुल, और आजकल स्मार्ट वेट सेंसर मशीन भी काफ़ी यूजफुल साबित हो रही है। ये मशीन सामान का वजन खुद रिकॉर्ड करके सीधे कंप्यूटर सिस्टम में सेव कर देती है।
3: और मोहित, अब AI सिस्टम स्मार्ट कैमरा भी तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। ये कैमरे सिर्फ रिकॉर्डिंग ही नहीं करते बल्कि किसी संदिग्ध गतिविधि या गलत मूवमेंट को तुरंत पहचान कर अलर्ट भी भेज देते हैं। इससे सुरक्षा पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है।
4: और दोस्तों, आजकल बारकोड और QR स्कैनर ग्लव्स भी काफ़ी चर्चा में हैं। इन स्मार्ट ग्लव्स को

0: पहनकर कर्मचारी हाथों हाथ सामान को स्कैन कर सकता है।
1: बिल्कुल मोहित, और तकनीक का यही बदलाव आने वाले समय में काम करने का तरीका पूरी तरह बदल देगा। ये थे आज के कुछ नए और शानदार स्मार्ट गैजेट्स एट वेयरहाउस।

0: करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों कहते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन कई बार कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो धीरे धीरे इंसान की जिंदगी को प्रभावित करने लगती है और कई लोगों को उनके बारे में सही जानकारी भी नहीं होती।
3: इसलिए सेहतनामा में हम आपके लिए लाते हैं सेहत से जुड़ी ऐसी ही कुछ ज़रूरी जानकारियाँ। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी दुर्लभ बीमारी की जो दिमाग और शरीर दोनों पर गहरा असर डालती है। इस बीमारी का नाम है हंटिंगटन्स डिजीज़।
2: यह एक जेनेटिक बीमारी है जो दिमाग की नसों को धीरे धीरे कमज़ोर कर देती है। इस बीमारी में व्यक्ति की सोचने समझने की जो क्षमता है वो और शरीर की जो हरकतें हैं और व्यवहार जो है वो अलग होने लगता है।
3: यह बीमारी शरीर के उस हिस्से को प्रभावित करती है जो हमारे मूवमेंट, भावनाओं और निर्णय लेने की क्षमता को नियंत्रित करता है।
2: दोस्तों इस बीमारी की शुरुआत की लक्षणों की बात करें तो हाथ पैरों का अनियंत्रित हिलना, शारीरिक का जो संतुलन है वो बिगड़ना, याददाश्त कमजोर होना, बात करने में परेशानी और मूड में अचानक बदलाव शामिल हो सकते हैं।
3: धीरे धीरे यह बीमारी रोज़मर्रा के कामों को भी प्रभावित करने लगती है। कुछ मरीजों को तो चलने फिरने, निगलने में या साफ बोलने में भी दिक्कत आने लगती है। हालांकि हर व्यक्ति में इसके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं।
2: यह बीमारी आमतौर पर 30 से 50 साल की उम्र के बीच दिखाई देती है।
3: हालांकि अभी तक हंटिंगटन्स डिजीज़ का पूरी तरह इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन सही दवाइयाँ, नियमित एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और हेल्दी डाइट और मानसिक सहयोग से इसके प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है।
2: डॉक्टरों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को में जो है लंबे समय तक शरीर की हरकतों पर नियंत्रण कम हो रहा है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है या व्यवहार में अचानक बदलाव दिखाई दे तो तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट या दिमाग के विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
3: दोस्तों जागरूकता और समय पर जांच ही ऐसी बीमारियों से बचाव और सही देखभाल का सबसे बड़ा तरीका है। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और अपनी सेहत का हमेशा ध्यान रखें। इसी संदेश के साथ आज के सेहतनामा में बस इतना ही।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: दोस्तों, फिल्मी संगीत और रंगमंच ये दो ऐसी दुनिया है जो हमारी भावनाओं, संस्कृति और मनोरंजन को एक नई पहचान देती है. और आज हम बात कर रहे हैं दो ऐसी महान हस्तियों की जिन्होंने अपने हुनर से इन दोनों को क्षेत्रों को जो है ऊंचाइयां दी.
4: एक है अपने मधुर संगीत से दिलों को छू लेने वाले मशहूर संगीतकार राजेश रोशन, जिनका आज जन्मदिन है. और दूसरे हैं हिंदी रंगमंच के कई नई दिशा देने वाले महान थिएटर निर्देशक श्याम नंद जालान, जिनकी आज पुण्यतिथि है.
3: बिल्कुल मनस्वी. सबसे पहले बात करते हैं राजेश रोशन की, जिनका जन्म 24 मई 1953 को मुंबई में हुआ था.
4: राजेश रोशन ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म कुंवारा बाप से की, लेकिन उन्हें असली पहचान 1975 की फिल्म जूली से मिली, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड भी मिला. इसके बाद उन्होंने याराना, काला पत्थर, खट्टा मीठा, करण अर्जुन, कहो ना प्यार है, कोई मिल गया और क्रिश जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में संगीत दिया.
3: उनके संगीत की खासियत रही मधुर धुनें और भावनाओं से जो जुड़ा है वो संगीत. किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी जैसे दिग्गज गायकों के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई.
4: जब कोई बात बिगड़ जाए, छू कर मेरे मन को और एक पल का जीना जैसे गीत आज भी लोगों की पसंद बने हुए हैं. जूली और कहो ना प्यार है जैसी फिल्मों में उन्हें कई फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले हैं. हाल ही में 2025 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ द रोशंस में भी उनके संगीत और फिल्मी सफ़र को दिखाया गया है.
3: अब बात करते हैं रंगमंच की दुनिया के महान निर्देशक और अभिनेता श्यामानंद की, जिनकी आज पुण्यतिथि है. उनका जन्म 13 जनवरी 1943 को बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था.
4: उन्होंने 1955 में अनामिका थिएटर ग्रुप की सह स्थापना की और बाद में पदातिक थिएटर समूह बनाया. वे आधुनिक हिंदी थिएटर के पुनर्जागरण के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं.
3: भारतीय रंगमंच में उनके योगदान के लिए उन्हें 1972 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. बाद में वे संगीत नाटक अकेडमी के उपाध्यक्ष भी रहे.
4: श्यामानंद जालान ने आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और पगला घोड़ा जैसे चर्चित नाटकों का निर्देशन किया. वे सिर्फ निर्देशक ही नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेता भी थे.
3: और 24 मई 2010 को कोलकाता में उनका निधन हुआ, लेकिन भारतीय थिएटर में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा.
4: तो दोस्तों, आज हम राजेश रोशन को जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और श्यामानंद जालान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं.

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों बात करेंगे दुनिया की कुछ ऐसी मशहूर हस्तियों की जिन्होंने अपने अभिनय संगीत और खेल की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई।
3: जी हाँ दोस्तों, आज हॉलीवुड अभिनेता जॉन सी रैली, ब्रिटिश अभिनेता जिम ब्रॉडबैंड और फुटबॉल की दुनिया के दिग्गज एरिक कैंटोना का इन सभी का जन्मदिन है।
2: बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं जॉन सी रैली की। इनका जन्म 24 मई 1965 को अमेरिका में हुआ था। वे हॉलीवुड के बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता, कॉमेडियन और सिंगर माने जाते हैं।
3: जॉन सी रैली ने शिकागो स्टेप ब्रदर्स, रैकेट रेल्फ और द एविएटर जैसी कई चर्चित फिल्मों में शानदार अभिनय किया। फिल्म शिकागो में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर के लिए भी नामांकित किया गया था।
2: अब बात करते हैं ब्रिटेन के मशहूर अभिनेता जिम ब्रॉडबैंड की, जिनका जन्म 24 मई 1949 को इंग्लैंड में हुआ था। वे अपने शानदार अभिनय शैली, गंभीर किरदारों और बेहतरीन स्क्रीन प्रेजेंस के लिए दुनिया भर में काफ़ी प्रसिद्ध हैं।
3: जिम ब्रॉडबैंड ने आयरिस फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता। इसके अलावा हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस में प्रोफेसर स्लगहॉर्न और द गेम ऑफ थ्रोन्स में अर्कमिस्टर एम्ब्रोस का किरदार भी लोगों को खूब पसंद आया।
2: और अब बात करते हैं फुटबॉल की दुनिया के सुपरस्टार एरिक कैंटोना की। इनका

0: जन्म 24 मई 1966 को फ्रांस के मार्सिले शहर में हुआ था और उन्हें फुटबॉल इतिहास के सबसे करिश्माई खिलाड़ियों में गिना जाता है।
1: एरिक कैंटोना ने खास तौर पर मैनचेस्टर यूनाइटेड FC के लिए खेलते हुए क्लब को नई पहचान दिलाई। उन्हें प्यार से किंग एरिक भी कहा जाता है। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ 4 प्रीमियर लीग टाइटल्स के लिए कई बड़ी ट्रॉफीज जीती
0: और वे अपनी आइकॉनिक कॉलर अप स्टाइल और दमदार पर्सनालिटी के लिए भी जाने जाते हैं।
1: तो दोस्तों, आज हम जॉन सी रैली, जिम ब्रॉडबैंड और एरिक कैंटोना को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और उनके शानदार योगदान को सलाम करते हैं।

0: दोस्तों बात करते हैं भारत की एक ऐसी साहसी महिला की जिन्होंने अपने हौसले और मेहनत से इतिहास रचा।
1: बिल्कुल, आज जन्मदिन है भारत की मशहूर पर्वतारोही बचेंद्री पाल का, जिन्होंने भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा की नई मिसाल कायम की।
0: जी हाँ मनस्वी, बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड में हुआ था। वे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी।
1: उन्होंने साल 1984 में एवरेस्ट 84 एक्सपीडिशन के दौरान कई मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया। रास्ते में बर्फीले तूफान जैसी कई बड़ी चुनौतियां भी आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर इतिहास रच दिया।
0: माउंट एवरेस्ट फतह करने के बाद भी बचेंद्री पाल लगातार एडवेंचर एक्टिविटीज और वुमन एम्पायर से जुड़ी रही।
1: उन्होंने 1993 में पूरी महिला टीम के साथ एवरेस्ट एक्सपीडिशन का नेतृत्व किया। 1994 में ग्रेट इंडियन वुमेन्स राफ्टिंग वॉयज को सफल बनाया और 1997 में

0: महिलाओं की ट्रांस हिमालयन एक्सपीडिशन का नेतृत्व भी किया।
1: बिल्कुल, और समाज सेवा में भी उनका योगदान बेहद लोकप्रिय रहा। 2013 की उत्तराखंड बाढ़ के दौरान उन्होंने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें कई बड़े सम्मानों से भी नवाजा गया। उन्हें पद्मश्री अवार्ड, अर्जुना अवार्ड्स, नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स और भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है।
1: उन्होंने अपनी प्रेरणादायक यात्रा पर आधारित किताब एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप भी लिखी, जो युवाओं को साहस और आत्मविश्वास की सीख देती है।
0: तो दोस्तों, आज हम भारत की इस महान पर्वतारोही बचेंद्री पाल को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और उनके अद्भुत साहस, संघर्ष और उपलब्धियों को सलाम करते हैं।

0: दोस्तों, इस साल देश का लोकप्रिय रेडियो नेटवर्क आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है। इन 90 वर्षों में आकाशवाणी ने सिर्फ समाचार और मनोरंजन नहीं बल्कि देश को खेल जगत की आवाज़ बनकर भी करोड़ों श्रोताओं के दिल में खास जगह बनाई।
1: बिल्कुल मोहित, एक समय ऐसा था जब लोग क्रिकेट, हॉकी और दूसरे बड़े मुकाबलों का रोमांच सिर्फ रेडियो कमेंट्री के जरिए ही महसूस करते थे। आकाशवाणी की आवाज़ ही लोगों को स्टेडियम जैसा एहसास दिलाती थी।
0: बिल्कुल, रेडियो पर आने वाली क्रिकेट कमेंट्री ने भारत में खेलों को घरों घरों तक पहुँचाने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है।
1: सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, एथलेटिक्स, कबड्डी और ओलंपिक जैसे बड़े खेलों का आयोजनों की जानकारी भी आकाशवाणी ने देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाई है।
0: आकाशवाणी ने कई महान खिलाड़ियों की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने में भी अहम योगदान जो है वो निभाया है।
1: आज के डिजिटल दौर में रेडियो भी अपनी अलग पहचान और भावनात्मक जुड़ाव बनाया हुआ है। आकाशवाणी आज भी समाचार, खेल और संगीत और संस्कृति के माध्यम से करोड़ों लोगों को जोड़ने का काम करता है।
0: दोस्तों, बात करते हैं आज के दिन के इतिहास की, यानी 24 मई के दिन इतिहास में क्या क्या खास हुआ, आइए जानते हैं।
1: साल 1543 की बात करें दोस्तों, तो जब पोलैंड के महान वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस का आज ही के दिन निधन हुआ था।
0: उन्होंने यह सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिससे विज्ञान की दुनिया में बड़ी क्रांति आई थी।
1: तो दोस्तों, इतिहास के पन्नों में दर्ज 24 मई की ये थी कुछ खास महत्वपूर्ण घटनाएं।

0: तो दोस्तों बात करें आज के स्पोर्ट्स अपडेट की, तो 24 मई को भारतीय खेल जगत में मुख्य आकर्षण इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के रोमांचक मुकाबले को लेकर है। मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का ये मैच, दिन का पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे खेला जा रहा है।
1: श्रोताओं आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर से मिलने के वादे के साथ आज लेते हैं आपसे विदा। आज मैं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त मोहित और मेरे साथ थी
0: मनस्वी। नमस्कार।
2: युवा साथी भी सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी, ये है आकाशवाणी उदयपुर। शाम के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
4: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
3: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की

0: बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोती की भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहां इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय सीबीएसई के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। और खेलों में मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने तीसरे ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 6:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। दोस्तों, फिल्म संगीत के साथ मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त विवेक अग्रवाल। बात करते हैं छुट्टियों के साथ बिताए जाने वाले दिनों की। गर्मियों की सुनहरी सुबह हो या तारों भरी रात, छुट्टियों का मौसम अपने साथ लाता है ढेर सारी यादें और ढेर सारी मीठी मीठी बातें, ढेर सारी मस्ती और परिवार के साथ बिताए जाने वाले वो खूबसूरत पल जो जिंदगी भर दिल में बसे रहते हैं। तो चलिए सुनवाते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज के इस थोड़े से सफ़र में हम बात करेंगे कि बच्चे गर्मी की छुट्टियों को कैसे यादगार बना सकते हैं, मोबाइल से दूर रहकर परिवार के साथ क्या क्या मज़ेदार काम कर सकते हैं, और सुनेंगे हिंदी सिनेमा के कुछ बेहतरीन नगमे।

श्रोताओं, आकाशवाणी उदयपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और हम बात कर रहे हैं गर्मी की छुट्टियों में दिन कैसे बिताएं। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे अगर सुबह जल्दी उठकर पार्क जाएं, यानी कि गार्डन जाएं, बगीचे में जाएं, पेड़ पौधों के बीच समय बिताएं तो मन भी खुश रहता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। गर्मी के दिनों में पतंगे उड़ा सकते हैं, घर में इंडोर गेम खेल सकते हैं, बाहर शाम के समय आउटडोर गेम भी खेले जा सकते हैं, क्योंकि छुट्टियां सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं, यादों को संजोने के लिए भी होती है।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर, और कार्यक्रम है आपका मनपसंद फिल्म संगीत। और हम बातें कर रहे हैं छुट्टियों के दिनों को कैसे बिताएं। दोस्तों वैसे देखा जाए तो छुट्टियों का जो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं घर में, वो बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार करते हैं, यानी कि पूरी परीक्षा होने के बाद वो इंतज़ार करते हैं इन छुट्टियों का। और

छुट्टियों की आने से पहले ही वे नई नई प्लानिंग शुरू कर देते हैं, योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं कि हमें छुट्टियों में क्या क्या काम करना है। देखो बच्चों, हम इस छुट्टियों में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे संगीत, पेंटिंग, डांस और किताबें पढ़ सकते हैं। ये सब करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, सोचने और समझने के अंदर विस्तार होता है और साथ ही साथ हमें नई नई चीज़ें भी जानने को मिलती है। और साथ में हम माता पिता अगर बच्चों के साथ थोड़ा समय निकालें तो बच्चे ज़िंदगी भर उस प्यार को नहीं भूलते।

साथियों, छुट्टियों में हम बहुत से काम कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ यात्रा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम कहीं बड़ी और ऊंची जगह पर जाएं या बहुत ही दूर जाएं। हम अपने गांव जा सकते हैं, अपने खेतों में घूम सकते हैं और हम इस तरह बच्चों को प्रकृति से भी जोड़ सकते हैं।

0: तो दोस्तों, इसी खूबसूरत बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। छुट्टियाँ सिर्फ आराम का नाम नहीं, रिश्तों को मजबूत बनाने, नई बातें सीखने और ज़िंदगी को मुस्कुरा कर जीने का मौका है। अपने बच्चों को समय दीजिए, उनके साथ हंसिए, खेलिए, गुदगुदाइए, क्योंकि बचपन लौट कर नहीं आता। मैं हूँ आपका अपना रेडियो दोस्त विवेक अग्रवाल। फिर मिलेंगे एक नए अंदाज और नए गीतों के साथ रात्रि 8 बजे। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी जयपुर अजमेर से पहले हिंदी में और उसके बाद जिले की चिट्ठी और बाद में राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कल से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होगी। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में होंगे कई कार्यक्रम। राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में अहम बदलाव किए। तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अनुदान को 1 करोड़ रुपए किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज गर्मी और लू का असर जारी, अगले कुछ दिन राहत के आसार नहीं। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल से जल संग्रहण और संरक्षण के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होगी। गंगा दशमी से शुरू हो रहा ये अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा। इस अभियान को लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। और ब्यौरा समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी जितेंद्र प्रधान से।
2: जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कल से शुरू हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत राज्य भर में आम जन को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पंचायतों

0: स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों, उद्योगपतियों, युवाओं और आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करने की पहल की है। अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक जिले के बीसलपुर बांध से जल पूजन और शिव अभिषेक से करेंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री भरतपुर के श्री गंगा माता मंदिर में आरती और सुजान गंगा नहर में दीपदान भी करेंगे। इसी तरह राज्य के विभिन्न जिलों में कुओं, बावड़ियों, तालाबों, नहरों और अन्य जल स्रोतों के पूजन के साथ जिला स्तरीय अभियान की शुरुआत होगी। जागरूकता को लेकर वंदे गंगा, प्रभात फेरियां, लेखन प्रतियोगिताएं, पीपल पूजन, पौधारोपण सहित कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
1: राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में अहम बदलाव किए हैं। नीति के तहत तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अधिकतम अनुदान को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस नीति में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य बजट 2026-27 के तहत वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान इसकी घोषणा की थी। उद्योग और वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि तकनीकी अपग्रेडेशन पर दिए जाने वाले अनुदान में बढ़ोतरी से उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप आधुनिक तकनीक को अपना सकेंगे। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ साथ गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद ODOP 2024 में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके तहत रत्नाभूषण उत्पाद से जुड़े उद्यमों के विस्तार पर भी मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। साथ ही निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी अपग्रेडेशन भी हो सकेगा। उद्योग विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सूक्ष्म इकाइयों को 20 लाख रुपए और लघु श्रेणी की इकाइयों को 15 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान मिल सकेगा। वहीं निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कल जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे आमेर महल का भ्रमण करेंगे। श्री रूबियो के दौरे पर को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री की इस यात्रा को भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक, कूटनीति और रणनीतिक संबंधों से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन के भारत प्रवास पर हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में हुई इस चर्चा में पश्चिम एशिया संकट से उपजे मौजूदा हालात और रक्षा सहयोग पर चर्चा की गई। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है। दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और इसके सार्थक परिणाम मिलने की उम्मीद है। प्रदेश के बालोतरा जिले में स्थित सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में दुर्लभ खनिजों का भंडार मिला है, जो देश को रॉकेट से लेकर न्यूक्लियर प्लांट्स का कच्चा माल उपलब्ध करवाने और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में सहायक होगा। केंद्रीय खान मंत्रालय की एक बैठक में सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद दुर्लभ खनिजों के भंडार को रेखांकित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: नारी शक्ति बंधन अधिनियम।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज भीलवाड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हमीरगढ़ हवाई पट्टी का जायजा लिया। इसके बाद श्री मेघवाल ने हमीरगढ़ रीको क्षेत्र में भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के कार्यालय में उद्यमियों से संवाद किया। श्री मेघवाल ने पत्रकारों से बातचीत में भीलवाड़ा में व्यावसायिक उड़ानें शुरू करने के प्रस्ताव को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के सामने रखने का आश्वासन दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसे लागू करवाना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

0: नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसमें महिलाओं को लोकसभा में और राज्य विधानसभा में 33% रिजर्वेशन देने के लिए जो बिल था पास किया हुआ उसको लागू करने का ही अवसर था, क्योंकि हमें सेंसस हमारी शुरू हुई है तो सेंसस के डेटा आने में समय लग रहा था, तो डिलिमिटेशन और सेंसस में संशोधन हम चाह रहे थे। हम सहमति बनाने में लगे हुए हैं, सहमति बनेगी तो प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। इसमें क्या है, सरकार की तो पहली प्राथमिकता है।
1: केंद्र सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को मजबूत करने के लिए जांच केंद्रों जीएटीसी की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए बताया कि नए नियमों में जीएटीसी वजन और माप की 23 श्रेणियों का सत्यापन कर सकेंगे। इनमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी और हाइड्रोजन डिस्पेंसर जांच शामिल है। इस पहल का उद्देश्य व्यापार को पारदर्शी बनाना और तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना है। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन पीठ का शुभारंभ किया गया है। राणा पूंजा सभागार में आज आयोजित एक कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पीठ की विधिवत शुरुआत की। समारोह को संबोधित करते हुए श्री देवनानी ने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से स्थापित ये अध्ययन पीठ भारतीय ज्ञान परंपरा और जीवन मूल्यों पर आधारित राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर उच्च स्तरीय शोध और अकादमिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगी। फिट इंडिया मूवमेंट के संडे ऑन साइकिल मुहिम के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर साइकिल रैली, योगाभ्यास सहित विभिन्न फिटनेस गतिविधियां आयोजित की गईं। विभिन्न स्थानों पर अधिकारियों, खिलाड़ियों, युवाओं और फिटनेस प्रेमियों ने उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। इस मौके पर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम के चारों ओर साइकिल रैली रखी गई। इसमें मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने भाग लिया। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करने के लिए ये आयोजन हुआ। हनुमानगढ़, जैसलमेर, राजसमंद, कोटपूतली, बहरोड़, सलूम्बर, बालोतरा, झुंझुनू और पाली में भी साइकिल रैली के जरिए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य का संदेश दिया गया। कई स्थानों पर योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम को भी इसमें जोड़कर योगाभ्यास, जूम्बा, रोप स्किपिंग सहित अन्य गतिविधियां हुई। और अब मौसम। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में प्रचंड गर्मी और लू का असर बना हुआ है। राजधानी जयपुर में आज दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित रहा। दोपहर में बाजारों में लोगों की आवाजाही कम रही। चूरू में दिनभर लू चलने से लोगों की दिनचर्या पर प्रभाव पड़ा। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां लोग तेज गर्मी से बचाव के लिए कई जतन कर रहे हैं।
2: जिले में तेज लू और चिलचिलाती धूप के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भीषण गर्मी के कारण दिन में बाजारों में लोगों की आवाजाही नहीं होने से चहल पहल कम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को प्रचंड गर्मी के कारण खासी परेशानी हो रही है। भीषण गर्मी के चलते वन्य जीव भी व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने समेत कई जतन कर रहे हैं। इस बीच विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रहे हैं। प्रचंड गर्मी के मद्देनजर चिकित्सा विभाग की ओर से आमजन को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
1: मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने, धूल भरी हवाएं चलने और तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। 26 और 27 मई को पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने और कहीं कहीं लू चलने की संभावना है। वहीं 28 से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ क्षेत्रों में आंधी और कहीं कहीं बारिश होने के आसार हैं। राजसमंद जिले के आमेट में आज एक सड़क दुर्घटना में 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार आमेट देवगढ़ स्टेट हाईवे पर मोटरसाइकिल को सामने से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे में घायल 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य

समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होगी। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में कई कार्यक्रम होंगे। राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में अहम बदलाव किए। तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज गर्मी और लू का असर जारी, अगले कुछ दिन राहत के आसार नहीं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से डूंगरपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख चिंतन जोशी ने तैयार किया है। गंगा दशमी के अवसर पर शुरू हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत डूंगरपुर जिले में कई गतिविधियां होंगी। ये अभियान 5 जून तक चलेगा। इसके तहत जल स्रोतों की सफाई, पौधरोपण, श्रमदान और जल संरक्षण प्रदर्शनियां सहित अन्य आयोजन होंगे। शहरों से लेकर गांवों ढाणियों तक जन भागीदारी से कई कार्यक्रम रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाल ही में डूंगरपुर के 2 दिन के दौरे पर रहे। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री शर्मा स्वच्छता सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई के डूंगरपुर मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि यहां लोगों ने स्वच्छता को जन उत्सव बनाया है। पूरे देश और प्रदेश में डूंगरपुर की स्वच्छता मुहिम की चर्चा है। रात्रि चौपाल के तहत मुख्यमंत्री जिले के 84 क्षेत्र की धम्बोला ग्राम पंचायत पहुंचे। उन्होंने महिलाओं, किसानों और युवाओं की समस्याएं सुनी और विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को टैबलेट वितरित किए। बालिकाओं की मांग पर मुख्यमंत्री ने धम्बोला के स्कूल में प्रयोगशाला बनाने के निर्देश दिए। साथ ही गांव में तालाब संरक्षण के लिए 50 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। जिले में जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले की शुरुआत की गई। जिला कलेक्टर देशल दान की अगुवाई में इसका शुभारंभ हुआ। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने आदि सेवा केंद्रों के जरिए ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को अभियान से जोड़ने की बात कही। TAD उपायुक्त सत्यप्रकाश कसवा ने बताया कि इस अभियान में जिले के 638 गांवों में संतृप्ति शिविर लगाए जाएंगे। वहीं आदि कर्मयोगी वॉलंटियर्स की मदद से जनजातीय क्षेत्रों में 17 विभागों से जुड़ी सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में खाद्य सामग्री से जुड़े दुकानदारों से साफ सफाई रखने और मिलावटी सामान नहीं बेचने की अपील की जा रही है। CMHO डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने बताया कि जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इसमें दुकानदारों को शुद्ध और साफ सुथरी खाद्य सामग्री रखने और बेचने के लिए पाबंद किया गया है। अभियान के तहत विभिन्न खाने पीने की चीजों के नमूने इकट्ठे कर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। जिले में पिछले दिनों ग्राम विकास रथों की रौनक देखी गई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी भीलुड़ा गांव में आयोजित ग्राम विकास रथ कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने लोगों से सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने की अपील की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी पिछले दिनों डूंगरपुर प्रवास पर रहे। राज्यपाल ने कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में राज्यपाल ने वीरांगना कालीबाई की शहादत को याद किया। उन्होंने विद्यार्थियों से कभी भी परीक्षा में नकल नहीं करने का आह्वान किया। जिले में पिछले दिनों कॉफी विद कलेक्टर संवाद कार्यक्रम हुआ। इसमें जिला कलेक्टर ने प्रतिभावान छात्राओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में छात्राओं से संवाद करते हुए जिला कलेक्टर ने उन्हें करियर मार्गदर्शन भी दिया। उन्होंने छात्राओं को अपडेट रहने और डिजिटल तकनीक सीखने के लिए प्रेरित किया। मेरा युवा भारत कार्यक्रम में पिछले दिनों डूंगरपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। इस दौरान कई प्रतियोगिताएं हुई। जिला युवा अधिकारी शुभम पूर्बिया ने बताया कि समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं की विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। जिले में पिछले दिनों मंगल कलश यात्रा की धूम रही। गांवों और शहरों में निकली इन यात्राओं में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। साथ ही उपखंड मुख्यालयों पर शिवालयों में विशेष कार्यक्रम रखे गए।
ये मौका था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का। गुजरात की सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देवस्थान विभाग और जिला प्रशासन की ओर से ये पर्व मनाया गया। इसमें शिवालयों में अभिषेक और विभिन्न

0: धार्मिक अनुष्ठान हुए। जिला स्तरीय स्वाभिमान पर्व कारोली गांव के भुवनेश्वर महादेव मंदिर में हुआ। जिले में जनगणना 2027 के तहत इन दिनों मकान सूचीकरण और आवास गणना का काम किया जा रहा है। इसके लिए प्रगणक घर घर जाकर सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं। 1 मई से शुरू हुई जनगणना प्रक्रिया के तहत शुरुआती 15 दिनों में लोगों को स्वगणना का विकल्प दिया गया। इस अवधि में इच्छुक नागरिकों ने खुद ही अपने परिवार और मकान से जुड़ा ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज किया। इसके साथ ही डूंगरपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश से सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, प्रदेश में कालेओं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रे शुरुआत वेला। जल संरक्षण ने जन आंदोलन बनावन सारू वेला कई कार्यक्रम। राज्य सरकार राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में खास बदलाव करया। तकनीकी अपग्रेडेशन सारू दी आजावन वाली सब्सिडी ने 1 करोड़ रुपया करया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करनो सरकार री ठावी प्राथमिकता। और प्रदेश रा घन करा हल्का माय करड़ी गर्मी और लू रो असर बनोड़ो है। आप तक कुछ दिन राहत रा आसार ने। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह। अरब समाचार विगतवार, प्रदेश में कालेऊं जल संरक्षण ने जन आंदोलन बनावन कानी महत्व मान्या जा रिया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान री शुरुआत वेला। गंगा दशमियों सरोवेरियो ओ अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस ताई चालेला। और ब्यूरो साथे समाचार कक्षों मारा सहयोगी जितेंद्र प्रधान।
2: जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कल से शुरू हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत राज्य भर में आम जन को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों, उद्योगपतियों, युवाओं और आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करने की पहल की है। अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक जिले के बीसलपुर बांध से जल पूजन और शिव अभिषेक से करेंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री भरतपुर के श्री गंगा माता मंदिर में आरती और सुजान गंगा नहर में दीपदान भी करेंगे। इसी तरह राज्य के विभिन्न जिलों में कुओं, बावड़ियों, तालाबों, नहरों और अन्य जल स्रोतों के पूजन के साथ जिला स्तरीय अभियान की शुरुआत होगी। जागरूकता को लेकर वंदे गंगा, प्रभात फेरियां, लेखन प्रतियोगिताएं, पीपल पूजन, पौधारोपण सहित कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
1: राज्य सरकार राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में खास बदलाव करया है। ये नीति रे तहत तकनीकी अपग्रेडेशन सारू दिया जावन वाली 32 सब्सिडी ने 50 लाख रुपयों बधार 1 करोड़ रुपया कर दी जा है। मुख्यमंत्री राज्य बजट 2026-27 रे तहत रोकड़ और विनियोग विधेयक माथे चर्चा रे दौरान ई बारा में ऐलान करियो हो। उद्योग और वाणिज्य आयुक्त श्री नीलाभ सक्सेना बतायो के तकनीकी अपग्रेडेशन माथे दिया जावन वाली सब्सिडी बधावणु प्रदेश रा उद्योग वैश्विक दौड़ मुजब आधुनिक तकनीक ने अपना सकेला। इणु उत्पादन बूतो बधण रे साथे साथे गुणवत्ता में सुधार वेला। इनके साथ ही स्थानीय उत्पादन ने बढ़ावो देवन सारू एक जिला एक उत्पाद ODOP 2024 में 2 महत्व बदलाव करी जा है। इनके तहत रत्नाभूषण उत्पादों जुड़िया कारोबारा रा फैलाव माथे मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाएला। साथ ही निजू संस्थानारी मार्फत तकनीकी अपग्रेडेशन ही वह सकेला। उद्योग महकमा कानियों काडीजी अधिसूचना मुजब सूक्ष्म इकाइया ने 20 लाख रुपया और लघु श्रेणी री इकाइया ने 15 लाख रुपया ताई री मार्जिन सब्सिडी मिल सकेला। वठे निजू संस्थाना री मार्फत तकनीकी अपग्रेडेशन सारू 5 लाख रुपया री सब्सिडी दी जाएला। अमेरिका रा विदेश मंत्री मार्को रूबियो रे काले जयपुर आवण रो कार्यक्रम है। वे आमेर मेल देखेला। श्री रूबियो रा दौरा ने लेर जिला प्रशासन और पुलिस कानियों तगड़ी तैयारियां करी जावे। अमेरिकी विदेश मंत्री री ई यात्रा ने भारत और अमेरिका रे बीच सांस्कृतिक कूटनीति और रणनीतिक संबंधों जोड़ने देखियो जावे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन रा भारत प्रवास माथे है। वे आज

नवी दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर उमेलिया। हैदराबाद हाउस में वी बतल में आथुणी एशिया संकटू पैदा मौजूदा हालात और हिफाजती मदद माथे बतल करीजी। इन रे पछे डॉक्टर जयशंकर कहो कि भारत और अमेरिका रे बीच गहरा वैश्विक सामरिक भागीदारी है। दोनों देशों रा संबंधों पूरी दुनिया माथे असर पड़ो है। वणा कहो कि बतल रो सिलसिलो चालतो रहेला और इन रा चोखा नतीजा मिलन री आस है। बालोतरा जिलारी रिफाइनरी जैसी महत्व परियोजनाओं देश री ऊर्जा हिफाजत रे साथ सामरिक और माली हिफाजत में महत्व भूमिका निभा रियो है। अठे सिवाणा रिंग कॉम्प्लेक्स में दुर्लभ खनिजारो भंडार मिलियो है जो देश ने रॉकेटू लेर न्यूक्लियर प्लांट्स रा कच्चा माल उपलब्ध करावण और साफ ऊर्जा रा हल्का में अगाड़ी बनावण में मदद करेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो कि सिवाणा रिंग कॉम्प्लेक्स और सिवाणा ग्रेनाइट में रियर अर्थ एलिमेंट और हेवी रियर अर्थ एलिमेंट मिलिया है। वणा एहलकारा ने निर्देश दिया कि सिवाणा रिंग कॉम्प्लेक्स रा असरदार क्रियान्वयन सारू प्रदेश में नोडल एहलकार नियुक्त कराया जावे जिणो काम में तेजी आ सके। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो।

0: ई पहल रो मकसद कारोबार ने साफ गोई बनावणो एर तकनीक ने बढ़ावो देवणो है। बांसवाड़ा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन पीठ री शुरुआत करी जी है। राणा पुंजा सभागार में आज हुआ एक कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव देवनानी पीठ री विधिपूर्ण शुरुआत करी। श्री देवनानी कहो कि विश्वविद्यालय कान्यों स्थापित आ अध्ययन पीठ भारतीय ज्ञान परंपरा, एकात्म मानववाद, अंत्योदय, ग्राम विकास, सामाजिक समरसता और सामाजिक जीवन मूल्य माथे आधारित राष्ट्र निर्माण जैसा मुद्दा माथे आला दर्जा रो शोध और अकादमिक गतिविधियां रो खास केंद्र बनेला। फिट इंडिया मूवमेंट रे तहत संडे ऑन साइकिल रे तहत प्रदेश रा न्यारा न्यारा ठोड़ा साइकिल रैली, योग अभ्यास समेत न्यारा न्यारा फिटनेस गतिविधियां भी। न्यारी न्यारी ठोड़ा अहलकारा, खिलाड़िया, नौजवाना और फिटनेस प्रेमिया उमावरे साथ ये मुहिम माए हिस्सो लियो। ई मौके जयपुर रा SMS स्टेडियम रा चारों मेर साइकिल रैली भी। लोगों ने स्वस्थ जीवन शैली रे प्रति जाग जगावन सारू ओ आयोजन भी हो। हनुमानगढ़, जैसलमेर, राजसमंद, कोटपुतली, बहरोड, सलूम्बर, बालोतरा, झुंझुनू और पाली माई साइकिल रैली री मार्फत लोगों ने स्वास्थ्य रे प्रति जागरूक रहण रो संदेश दे रिजियो। कई ठोड़ा योग दिवस काउंट डाउन कार्यक्रम ने इणो जोड़ ने योगा अभ्यास, जुम्बा, रोप स्किपिंग समेत दूजी गतिविधियां भी। और अबे मौसम, प्रदेश रा घनकरा हल्का माए करड़ी गर्मी और लू रो असर बनी उड़ो है। मौसम केंद्र जयपुर आज 18 जिला माए हीट वेव रो ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करियो है। राजधानी जयपुर माए आज दिन माए तेज तावड़ा माए आम जिंदगी माथे असर पड़ियो। जैसलमेर माए आंधी चालणो लोगों ने गर्मियों थोड़ो आराम मिलियो। चूरू माए आखे दिन लू चालती रहणो लोगों रा काम काज माथे असर पड़ियो। बाड़मेरू हमारा खबर नवीस बतायो कि वठे लोग करड़ी गर्मियों बचण सारू कई जतन कर रिया है।
1: जिले में तेज लू और चिलचिलाती धूप के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भीषण गर्मी के कारण दिन में बाजारों में लोगों की आवाजाही नहीं होने से चहल पहल कम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद BSF के जवानों को प्रचंड गर्मी के कारण खासी परेशानी हो रही है। भीषण गर्मी के चलते वन्य जीव भी व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने समेत कई जतन कर रहे हैं। इस बीच विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रहे हैं। प्रचंड गर्मी के मद्देनजर चिकित्सा विभाग की ओर से आमजन को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम महकमो आवता 3-4 दिन राजेरा घनकरा हल्का माए मौसम साफ रेवण एर धूल भरी हवा चालन, तापमान माए 2-3 डिग्री सेल्सियस री बढ़वार री आस जताई है। 26-27 मई ने आथुणी राजस्थान रा कुछ हल्का माए बत्ती रो तापमान 46-47 डिग्री सेल्सियस दर्ज होवण और कठे कठे लू चालन री आस जताई है। वठे 28-29 मई एक नुआ पश्चिमी विक्षोभ रा असरों प्रदेश रा कुछ हल्का माए आंधी और कठे कठे बिरखा होण री आस जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणियों हर महीना प्रसारित किया जाने वाला खास कार्यक्रम मन की बात में 31 मई ने आपरा विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी वेला। ई सारू आप ही मुफ्त नंबर 1-800-117-800 माथे 29 मई तई आपरा राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप एर माई GOV ओपन फोरम री मार्फती आप विचार भेज सको हो। ने अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फेरो सुन ले रहो। प्रदेश माए काल्यों वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू वेला। जल संरक्षण ने जन आंदोलन बनावन सारू वेला कई कार्यक्रम। राज्य सरकार राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 माए खास बदलाव करया। तकनीकी अपग्रेडेशन सारू दिया जावन वाली सब्सिडी ने 1 करोड़ रुपया करया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करनो सरकारी ठावी प्राथमिकता। और प्रदेश रा घनकरा हल्का माए करड़ी गर्मी और लू रो असर बनोड़ो है। आप तक कुछ दिन राहत रा आसार नी। नरेंद्र साथे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जाएला। नमस्कार।

66.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण परिवारों के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम खेती और घर। प्रस्तुत करता है नरेश नागदा और अनीता गन्ना।

0: राम राम अनिता भाई सा, राम राम।
1: राम राम नंदू भाई, राम राम।
0: खेती और घर हुणवा वाला हंगले किसान भाई बहना ने भी अपनो
1: राम राम, राम, राम
0: सा। देखो अनिता भाई सा, कार्यक्रम में अपी रोज आवा सा और आपने किसान भाई बहना वाते भांत भांतरी जानकारी लेने आवा सा। लारे लारे देखो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी लावा, समसामयिक मुद्दा पे भी बात करा और कनान कनान आपने स्टूडियो में कृषि विशेषज्ञ जो है वना ने भी बुलावा, वनों भी जानकारी जो है अपने किसान भाई बहनों करावा सा। और लारे लारे देखो राजस्थानी लोक संगीत भी अपने किसान भाई बहन ने हुणावा सा।
1: बिल्कुल सही कह रहा हूँ नंदू भाई। और देखो अपने चौपाल टेम भी और सब जना जो है अपना ये हरजी भाई, सोन जी, मोहन जी नी, देखो जमकू भाई नी, सब टेम भी तई ने चौपाल रे महीने उपस्थित हो गया है। और आपा भी अनारे वास्ते देखो चौपाल री बात में बात लाया, हाँ डिजिटल कृषि री है नी। डिजिटल कृषि री बात करा तो देखो भाई डिजिटल कृषि खेती री आधुनिक तकनीकी आधारित जो है खेती है, तकनीकी संचालित बनावा में एक या पहल है। अंडे महीने देखो सटीक खेती की दी जावे, अने महीने देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहवा, ड्रोन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जने महीने रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकार उपयोग करने फसल उत्पादन, मिट्टी की गुणवत्ता और आय में बढ़ोतरी भी की दी जावे।
0: बिल्कुल आप भी क्रियाओं को देखो जटे भारत में डिजिटल पहल री बात वेरी है और डिजिटल तरीकों खेती में भी उपयोग करियो जा रो है और वणी में डिजिटल कृषि मिशन भी चल रो है सा। और किसाना ने एक विशिष्ट डिजिटल पहचान यानी कि किसान आईडी देवारे वाते भारत सरकार ने शुरू की दो हो और ये एक महत्वाकांक्षी योजना है ऐसा।
1: अंडे लाल लाल देखो एग्री स्टेक री अगर बात करा तो किसान भैरी जो है भूमि है, फसल है, सरकारी योजना है, अनारी एकीकृत डिजिटल डेटा बेस पे भी ये अपने जो है ये सब काम करे है।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली जिन्हें आप ही एग्री DSS भी कांसा, यो कही है कि सटीक मौसम पूर्वानुमान है, फसल रो स्वास्थ्य री निगरानी करनो है, बाढ़ और सूखा प्रबंधन रे रिमोट सेंसिंग रो डेटा उपयोग करनो है, यो भी अंडो काम है सा।
1: बिल्कुल। और अंडे देखो लाभ री अगर बात करा तो टेम पे अपने जा भी जानकारी चाहिए हाँ वहाँ मल जावे, पारदर्शिता वणी तकी रहे, लागत महीने कमी आवे, जलवायु परिवर्तन रो भी प्रभाव वेवे। और जटे आप वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में नरी सारी समस्याओं जूझ रहा हाँ तो देखो अंडे डिजिटल कृषि री जटे बात कर रहे हाँ तो वणी महीने कृषि लागत में बढ़वार वेवे, सिंचाई जल री भी कमी वेवे, मिट्टी री उर्वरता में गिरावट आवे, कीट और रोगारो बढ़तो तो को जो प्रकोप है वो भी कम वेवे, बाजार संबंधी जानकारी है वनडे भी अपने आराम मिल सके सा।
0: बिल्कुल आप ठीक क्रियाओं के वर्तमान में देखो आप ही कृषि क्षेत्र में बहुत सारी समस्याओं जूझी रहा और अणा ने निपटवा वाते अपने डिजिटल कृषि जो है वन ने आप ही अपनाई रहा। ICT री सबों पहली बात करा तो ICT रे माध्यमों किसाना ने मौसम है, बाजार भाव है, कृषि योजना है और नई नई तकनीकों के बारे में आपी जानकारी जो है मोबाइल फोन है, इंटरनेट है और दूसरा जतरा भी माध्यम में वणों प्राप्त वेरी है साहब।
1: बिल्कुल। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स री अगर बात करा जिन्हें IoT भी केवा, अंडे आधारित सेंसर खेता में लगाया जावे जे मिट्टी री नमी है, तापमान है, वणा री आर्द्रता है और दूसरी जी जरूरी सूचना है वणा ने भेरा करे है। अंडे वाते किसान भाई पाणद और उर्वरक प्रबंधन भी ज्यादा ज्यादा प्रभावी बनाई सके सा।
0: बिल्कुल अनिता भाई सा, लारे लारे किसान भाई बहना ने कहना चाहूंगा कि देखो आजकल ड्रोन रो जमानो है सा और ड्रोन तकनीक रो जो उपयोग है कृषि में भी वेरो है सा। अंडो उपयोग जो है खेतारी निगरानी करवा वाते, फसल स्वास्थ्य रे परीक्षण रे वास्ते, कीटनाशक और उर्वरकारो छिड़काव करवा वाते और अंडे अलावा देखो कतरीदान फसल में क्षति बीजा यानी फसल रो खराबो बीजा तो वनडो आकलन करवा वाते भी ड्रोन तकनीक रो उपयोग करियो जावे सा।
1: बिल्कुल। कृत्रिम बुद्धिमत्ता री अंडे लाला रे बात करा AI री तो देखो अणु आधारित जीवी तकनीकी फसला है वणारे रोगारी हेदान रे वाते, उत्पादन पूर्वानुमान और कृषि सलाह या भी प्रदान करे है कि अणी महीने किसाना ने बेहतर निर्णय लेवा में भी मदद मले सा।
0: बिल्कुल अंडे लारे लारे उपग्रह और रिमोट सेंसिंग री जटे बात करा तो देखो उपग्रह चित्रारे माध्यमों खेत री स्थिति, फसल री वृद्धि और मौसम री

0: जानकारी प्राप्त करी जावे सा, और यह तकनीक बड़ा क्षेत्र में फसल निगरानी रे बाते बड़ी उपयुक्त वेवे सा।
1: बिल्कुल, और मोबाइल एप्लीकेशन की बात करा तो नरई सारा कृषि मोबाइल ऐप किसान भाया ने मौसम पूर्वानुमान, बाजार में कई मूल्य है, कृषि विशेषज्ञ की सलाह और सरकारी योजना की जानकारी भी देवे है सा।
0: बिल्कुल, आप ठीक क्रियाओ। देखो कृषि डिजिटल कृषि मुख्य उपकरण जटे बात करा
1: तो देखो यो एक ऑनलाइन कृषि बाजार है जटे

0: बात करा तो देखो यो एक ऑनलाइन कृषि बाजार है जटे किसान भाई अपनी उपज ने देश भर महीने विभिन्न देश भर रा जतरा भी बाजार है मणा महीने बेच सके सा।
1: बिल्कुल सान, अंडे अलावा पीएम किसान योजना री बात करा तो देखो अंडे अंतर्गत किसाना ने डिजिटल माध्यमों आर्थिक सहायता प्रदान करी जा रही है। अंडे अलावा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना री बात करा अड़ी योजना रे तहत किसाना ने मिट्टी रे परीक्षण रो डिजिटल रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा रही है जणियो कही कि किसान भाई बहन जो है संतुलित उर्वरक रो उपयोग कर सके सा।
0: बिल्कुल, और डिजिटल अगर कृषि री लाभ री बात करा तो देखो उत्पादन महीने बढ़वार वे डिजिटल तकनीका रो उपयोग अगर किसान भाई सही टाइम पे उचित सलाह अगर करे तो उत्पादन में बढ़वार वे लागत में भी कमी आवे, सटीक पाणा दे वे उर्वरक और कीटनाशक उपयोग देखो जतरा भी खर्चा वे वी कम भी जावे। जल संरक्षण री बात करा तो देखो सेंसर आधारित सिंचाई प्रणालियाँ जल री भी बचत करे, लाड़ लारे टेम री भी बचत वे, ड्रोन और जतरा भी दूसरा आधुनिक उपकरण है वे खेती बाड़ी रा काम ने तेज और आसान बनावे सा।
1: बिल्कुल आप ठीक रहे हो कि समय री बचत वे अंडे अलावा बेहतर बाजारी जानकारियां जो है अपने टाइम पे मिल जावे, जोखिम जतरा भी वेता मौसम रे कारण वणा मौसम रे जोखिम भी अपने कमी वे जावे, अंडे अलावा आय में तो वृद्धि वे से सा। तो अपनों तो अपने किसान भाई बहना ने यो इस कहना है कि जो डिजिटल क्रांति है वनडे थ्रू जो है डिजिटल कृषि जा वीरी है वणियों अगर आप भी वणे तकनीका ने अपनावांगा तो देखो आपने भी ज़्यादा फायदो वेगा सा।
0: बिल्कुल, और नंदू भाई देखो कार्यक्रम में आया है तो बातचीत जानकारियां तो और भी करांगा लेकिन एक आपको तो राजस्थानी गीत होना सा।
1: बिल्कुल होना सा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
3: तो अनीता भाई सा यो हुणियो आपी राजस्थानी लोकगीत और लर लर संदेश भी हुणियो सा। और कार्यक्रम में देखो अभी आगे बढ़ा तो मौसम री जानकारी जो है अपने किसान भाई बहना बात है बड़ी महत्वपूर्ण वे क्योंकि देखो मौसम री जानकारी के आधार पर अपना किसान भाई बहन जो है अपना काम जो है वंडो प्रबंधन करे सा। और अब देखो मौसम री जानकारी री बात करा तो देखो मौसम विज्ञान विभाग जयपुर

0: गुरु प्राप्त सूचना रे आधार पर बात करा तो देखो आवा वाला दना में हल्की वर्का और आसमान साफ रहवारी संभावना है सा। हवारी गति री जटे बात करा तो 15-23 किलोमीटर प्रति घंटा रे वेगू उत्तर पश्चिम चालेगा सा और अधिकतम तापमान जो है 43-44 और न्यूनतम 28-29 डिग्री रहवारी संभावना है। लारे लारे सापेक्ष आर्द्रता की बात करा तो 29-45 और न्यूनतम 10-12% रेवारी संभावना है सा।
1: तो देखो भाई नंदू भैया तो भी मौसम री जानकारी लार लारे अगर खेती बाड़ी री बात करा तो अने मौसम महीने देखो वेल वाली जी भी फसला है वणा में थोड़ी थोड़ी नमी वणाए राखनी चाहे नहीं तो कहिए कि मिट्टी महीने कम नमी वेगा तो परागकण पे असर नहीं वही सकेगा। जण्यू कहिए कि फसल रे उत्पादन में कमी आई सके। फलदार जी भी पौधा है वणारा बगीचा लगावार वाते उचित दूरी पे गड्ढा खोद ने खुला छोड़ देना ताकि कहिए कि वर्षा वेवे तो पौधारी रोपाई आराम कर सके।
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अबे जटे गर्मी में गहरी जुताई की बात करा तो देखो मक्का है दलहन है तिलहन है और सब्जी वर्गीय फसला में पुट्टी रेनिफॉर्म और जड़ गांठ सूत्र कमियारे प्रबंधन वाते खेता में 15-20 दिन रे अंतराल पर अपने गर्मिया में गहरी जुताई करनी पड़ेगा सा। फलदार पौधा जैसे कि अमरूद है अनार है नींबू वर्गीय फलार और बगीचों लगाऊँ पहली उचित दूरी जो है अपने 6x6 मीटर पर अपने गड्ढा खोदिन पचे खुला छोड़ देनो ताकि जो है गर्मियों में गहरी जुताई रो फायदो अपने मल सके सा।
1: बिल्कुल। और रिंगना री बात करें तो देखो रिंगना री फसल महीने प्ररो और फल छेदक कीट रे बचाव रे वाते जे भी फल और प्ररो भेरा करने पचे वणाने नष्ट कर देना चाहे। अगर कीट री जे संख्या है वह अगर वत्ती वे जावे तो देखो भाई स्पिनोसेट कीटनाशी 48 cc 1 मिलीलीटर 4 लीटर पानी री दरु छिड़काव करने आसमान साफ री दशा वे यदि छिड़काव कर देनो चाहे।
0: बिल्कुल आप ठीक क्रिया हो। अबे देखो मूंग री बात करा तो देखो तापमान में बढ़ोतरी ने देखता थका किसानों ने सलाह दी जा रही है कि वे ग्रीष्मकालीन मूंग में सिंचाई एनी टाइम पे कर दे वैसा।
1: वेल वाली साग भाजिया की बात करा तो देखो कुष्माण कुलरी जी भी साग भाजिया है भणा में लाल भ्रंग कीट अंकुरी तो नई पत्तिया ने खाई ने फसला ने हानि पहुंचावे अनारी रोकथाम रे वाते देखो अपने जे किसान भाई है भणा ने कई करनो है कि कार्बेरिल 5% चूरण 25 किलो प्रति हेक्टर ही दरु सुबह और हांज टेम पे बुरकाव करनो है सा।
0: अबे अभी बहुत संरक्षण री बात करा तो जेटे मिर्च है भिंडी तरबूज खरबूज में पित्त शिरा विषाणु रोग रो प्रकोप दिखी रो है सा वटे इमिडा क्लोरोपीड 8 ml रो 15 लीटर पानी में घोल बनाइन 8 दिन रे अंतराल में 2 दान छिड़काव करनो पड़ेगा सा। और अन्य पत्ती धब्बा रोग रे नियंत्रण रे वाते इमिडा क्लोरोपीड रो छिड़काव रे बाद 5 दिन बाद 22 टिन रो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी रो घोल बनाइन छिड़काव करेगा सा।
1: बिल्कुल। और भिंडिया री बात करा तो देखो तेज हवा चालवारी संभावना ने देखता तक अपने किसान भाई ने भिंडिया और दूसरी जी साग भाजिया भणारी तुड़ाई भी कर लेनी चाहे ताकि कहिए कि संभावित नुकसान बचो जा सके। लाल लारे देखो ढांडा चापा री बात करा तो पशुओं ने स्वच्छ और ताजा पानी भरपूर मात्रा में देनो है। जणे जे भी अपना पशु है वे सब शारीरिक प्रक्रिया जो है वणारे सुचारू रूप चाल सके और दूध उत्पादन में भी कमी नहीं वे वैसा।
0: बिल्कुल अनिता वैसा या तो आप ही देखो मौसम संबंधी जानकारी और आवा वाला दना में कशा कशा कृषि कार्य करना है अंडी जानकारी दीदी सा। अब आपको तो एक राजस्थानी लोकगीत अणि कार्यक्रम में और होना वा सा।
1: हाँ सा।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट

हाँ तो देखो भाई नंदू भाई, सुंदर सो मन भावन राजस्थानी गीत हुने और लाल लारे देखो भाई आपा जानकारी भरे तगा संदेशा भी हुनिया। और अभी देखो कार्यक्रम में आपने जो है भारत सरकार नरी सारी योजना चली रखी है, वणी महीने एक योजना है लाड़ो प्रोत्साहन योजना। अगर अणी योजना की बात करा तो देखो लाड़ो प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा अपनी जी बालकियां है वणारे सशक्तिकरण ने बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा रे वास्ते

0: राजस्थान सरकार द्वारा अपनी जी बालकियां हैं वनारे सशक्तिकरण ने बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा रे वास्ते शुरू की दी गई एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है। और योजना रे महीने बेटिया रे जन्म लेने यदि भी 21 वर्ष री वेजाए वत्री आयु तक कुल 1.5 लाख रुपया री जा आर्थिक सहायता है व 7 अलग अलग किस्ता में सरकार आड़ू दी दी जावे सा।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि अलग अलग किस्ता में दी जावे। वंडी बारे में बात करा तो देखो जन्म रे समय 2500 रुपया, एक वर्ष जनन व आयु पूरी कर ले वनी टाइम पे 2500 रुपया, अंडे अलावा बच्चे कक्षा 1 में जनन व प्रवेश ले वनी टाइम पे 10000 रुपया, अंडे अलावा कक्षा 6 में प्रवेश लेवा पर 15000 रुपया, 10 कक्षा में जनन व प्रवेश लेवे वनी टाइम पे सरकार 20000 रुपया देवे, अंडे बाद 12वीं में प्रवेश लेवा पर 25000 रुपया, और 21 साल या वनी स्नातक री पढ़ाई पूरी कर ली दिए वनी टाइम पे 70000 रुपया जो है सरकार जो है वंडे खाता में डाले सा।
0: बिल्कुल, और अंडे अगर पात्रता री बात करा तो देखो भाई जो भी बालकी है वह राजस्थान ने मूल निवासी वेणी चावे, बालिका रो जन्म कणी भी राजकीय या पंजीकृत अस्पताल में इन्हें वेणो चावे। अंडे लाल लारे देखो लाड़ो प्रोत्साहन योजना रे उद्देश्य की बात करा तो देखो बालिकाओं रे जन्म ने प्रोत्साहित करनो है, कन्या भ्रूण हत्या जैसी जी सामाजिक कुरूतियां हैं वनाने रोकनो है, बालिका री शिक्षा ने बढ़ावो देनो है, बाल विवाह जैसी जी भी समस्या है वनाने कम करनो है, अपनी बेना और जी बालिका है वनाने आत्मनिर्भर बनावनो है, समाज में बेटिया रे प्रति देखो सकारात्मक सोच जो विकसित करनी है, लाडला रे जी भी बालकिया है वनारे समग्र विकास ने भी सुनिश्चित करनो है।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रही है, और देखो समाज में यानी योजना रो लाभ लेवा जटे आप बात की दी कि योजना में बालिका ने विभिन्न चरणों में 7 चरणों में जो है वना ने आर्थिक सहायता प्रदान करी जा रही है सा, और योजना रे अंतर्गत पात्र बालिका ने जन्म लगन उच्च शिक्षा तक अलग अलग 7 चरणों में आर्थिक सहायता वेवे, और अणियों कही के परिवार जो है जितना भी वना पे आर्थिक बोझ भी नहीं पड़े सा,
0: और शिक्षा ने भी बढ़ावो मिले। या योजना बालिका ने विद्यालय और महाविद्यालय स्तर तक शिक्षा प्राप्त करवार वास्ते प्रोत्साहित भी करे, अणियों जो है बालिका शिक्षा रे दर महीने बढ़वार वेवे, सामाजिक सुरक्षा भी मिले, योजना रे माध्यम जी भी बालकियां हैं बनाने आर्थिक सुरक्षा मिले, जे अन्यों कहिए कि बनारे भविष्य जो है ज्यादा ज्यादा सुरक्षित वेवे, महिला सशक्तिकरण भी वेवे, जी भी शिक्षित और आत्मनिर्भर जी बालिका है बनारे भविष्य महीने समाज और राष्ट्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी देवे है सा।
1: बिल्कुल आप ठीक रिया हो ना, जटे लैंगिक समानता की बात करा तो देखो यह योजना समाज में बेटियां और बेटा रे बीच जा समानता की भावना है वन्य बढ़ावो देवे सा, और यह योजना रे बारे में आपने बतायो कि लाभ लेवा वाते कई कई शर्तें हैं, तो बालिका राजस्थान री निवासी वेणे चावे, जन्म पंजीयन वंडो जरूर वेणो चावे, परिवार सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणी में भी आनो चावे, और आवश्यक जो भी दस्तावेज वंडे कोडे उपलब्ध वेणा चावे, और योजना री दूसरी शर्तां जत्री भी है वंडो पालन भी करनो चावे।
0: बिल्कुल, और योजना रो अगर वना ने लाभ लेनो है तो वनारे जी दस्तावेज जी जरूरत पड़ेगा, वणी मैंने जी जरूरी दस्तावेज अगर वनारी बात करा तो देखो भाई आधार कार्ड वेणो चावे, जन आधार कार्ड वेणो चावे, जन्म प्रमाण पत्र वेणो चावे, निवास प्रमाण पत्र वेणो चावे, बैंक खाता रो विवरण वेणो चावे, पासपोर्ट आकार फोटो लगावनो है, मोबाइल नंबर और जी भी जतरा भी दूसरा आवश्यक दस्तावेज है भी वेणा चावे सा।
1: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, देखो समय समय पर सरकार जो है दिशा निर्देश जारी करती रहे और अणा में नवीनतम जानकारी भी रेवे सा, और संबंधित विभाग री आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय कार्यालय में आपी अंडे बारे में और भी ज्यादा जैन जानकारी ले सका सा।
0: बिल्कुल, और देखो या जो लाड़ो प्रोत्साहन योजना है या समाज पे सकारात्मक प्रभाव तो पड़ी रो है, अणी योजनाओं अपनी जी बालिका है वनारे प्रति लोगरी सोच में भी बदलाव आई रो है, ज्यादा ज्यादा परिवार अपनी बेटिया ने विद्यालय भेजवारे वास्ते प्रेरित भी कर रहा है, अणी योजना ने कारण बालिका शिक्षा ने बढ़ावो मिल रो है, बेनारे सशक्तिकरण दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति वे रही है, अणियो समाज में लैंगिक असमानता ने कम करवा में भी सहायता मिल रही है सा।
1: बिल्कुल आप ठीक रही हो, देखो अणी योजनाओं बहुत सारो फायदो अपने मिल रो है सा, और यह योजना जो है राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है, जिनडो उद्देश्य देखो आप ही बात की थी कि बालिका रे जन्म शिक्षा और सशक्तिकरण ने बढ़ावो देना है, यह योजना समाज में बेटिया रे प्रति सकारात्मक सोच भी विकसित कर रही है, लैंगिक समानता ने भी स्थापित कर रही है, अंडे अलावा आर्थिक सहायता रे माध्यम यह योजना जो है बालिका रे बेहतर शिक्षा और सुरक्षित भविष्य ने प्रदान कर रही है सा।
0: बिल्कुल सही कह रहा हो, तो देखो आपने भारत सरकार द्वारा जितनी भी योजना चली जावे इन सब जना अगर लाभ लेगा वहाँ पे जरूरी जी भी दस्तावेज है भी वेगा तो वहाँ ने भरपूर लाभ मिलेगा, जितने बालिका जो है 21 वर्री नहीं वही जावे। कार्यक्रम में देखो वाता चीतान जानकारियां तो और भी करांगा, लेकिन हूणा जटा पहली एक राजस्थानी लोकगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: तो देखो भाई नंदू भाई सुंदर सोमन भावन राजस्थानी गीत हुनियो लाड़े जानकारी हूँ भरिया तक संदेशा भी हुनिया। और देखो भाई सब किसान भाई हूँ आपा अपने चौपाल रिवाज भी कर रहा ने मौसम की जानकारी भी कर रही ने योजना रे बारे में भी बतायो ने अबे देखो अपने किसान भाई हूँ बात करा कि मोबाइल ऐप रो जो कई उपयोग है क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि हमारा टेम में यो जो टेम है विज्ञान और तकनीक रो युग है। आज मोबाइल फोन केवल बातचीत रही देखो

0: आवे सा, आर्थिक लाभ भी मिले, उत्पादकता में भी बढ़वार वेवे। मोबाइल ऐप जो है देखो अणु अपनी गोपनीयता संबंधी भी खतरा है भी कम वे जावे।
1: तो या तो देखो आपकी जानकारी दी कि मोबाइल ऐप रो उपयोग आप कितने कर सका सा। अब आपको तो एक राजस्थानी लोकगीत कार्यक्रम में और हुआ सा।
0: हाँ सा।

0: तो देखो भाई, नंदू भाई सुंदर सो मन भावन राजस्थानी गीत हुणियो। और अभी देखो कार्यक्रम महीने आपने किसान भाई लारे आपा बातचीत करा कि उर्वरक और अगर भी संतुलित प्रयोग करेगा तो देखो भाई वना ने खेती बाड़ी में हऊ बढ़िया जो है फायदो वेगा, सही पोषण वेगा, ज़्यादा उत्पादन वेगा, बेहतर गुणवत्ता, स्वस्थ मिट्टी और ज़्यादा ज़्यादा लाभ वेगा। फसला ने ज़्यादा नहीं बल्कि सही और संतुलित पोषण की जरूरत वे है। उर्वरकारों असंतुलित और अनुमान के आधार पर अगर भी उपयोग करे तो उत्पादन, गुणवत्ता और मिट्टी तीन ही चीजा ने नुकसान वही सके है।
1: बिल्कुल, आपने किसान भाई बहना ने आप ही कहना चाहूंगा कि देखो हर खेत की मिट्टी अलग वेवे, बिना जांच रे उर्वरक डालनो, पैसों खर्च करनो, यो बंडो कोई फायदो नहीं है और लाभ भी बनियो नहीं वेगा सा। और अपने सबों पहले ही तो मिट्टी रो परीक्षण कराना चाहे, बनियो कही है कि कई प्रकार पोषक तत्व की कमी है, अपने वंडी जानकारी मिलेगा, कतरी मात्रा वंडी देनी है वो भी पतो चलेगा, और उर्वरक रो उपयोग री क्षमता भी बने बढ़ेगा और लागत भी आपने बनियो घट जाएगा सा।
0: बिल्कुल, और अंडरलाल लारे देखो सही और संतुलित पोषण जो अगर वेगा तो संतुलन भी बराबर बनियो तको रहेगा। देखो संतुलित अगर आपा उपयोग करांगा तो जड़ा मजबूत वेगा, पौधा स्वस्थ वेगा, फूल और दाना भराव हऊ बढ़िया वेगा, रोग कीटारो असर कम वेगा, ज्यादा उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता वेगा सा।
1: बिल्कुल, आपनों किसान भाई बहना ने यूज कहना है कि देखो सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो भी सही मात्रा में आपने डालना, जैसे कि जिंक जो है कमी जो है वंडी पत्तियां जो है पीली पड़ जावे, वृद्धि रुक जावे, और समय पर अगर आप जाँच करावांगा तो वंडे आधार पर आप डाल सका, बोरॉन जो है अंडी कमी के कारण फूल जड़ जावे और फूलन भी कम वेवेसा।
0: और देखो भाई आयरन री बात करा तो आयरन री कमी पत्तियां पीली पड़ जावे है, और सल्फर री अगर बात करा तो देखो अंडी कमी भी प्रोटीन कम वे जावे है। तो टेम टेम पे जांच और पूर्ति जरूर करानी चाहे। और देखो भाई अगर किसान भाई बहन के अना वातारो ध्यान रखेगा तो जरूरत ज़्यादा उर्वरक नाकवा पे लागत घट जावे, उत्पादन में बढ़वाणी वेवे, अणी वाते ज़्यादा जो है लाभ वेणो चावे और उत्पादन हाउ बढ़िया वेणो चावे।
1: बिल्कुल, आपने किसान भाई बहना ने अपना ये कहना है कि देखो उर्वरक जनान भी डाला तो संतुलित मात्रा में डाला ताकि आपना जो है उत्पादन भी बढ़े सा और लागत भी कम वे सा। हाँ, यह तो देखो आपकी जानकारी दी। अब आपने किसान भाई बहना ने एक राजस्थानी लोकगीत और हुणावा सा।

0: तो देखो भाई नंदू भाई, जो तो सुंदर सो मन भावन राजस्थानी गीत हुनियो और घड़ी रियाड़ी नारा, तो देखो आपने कार्यक्रम रो टेम भी वेग्यो है, तो आपा चाला सा जय जवान
1: जय किसान।

ग्रामीण परिवार अभी सुन रहे थे उनका दैनिक कार्यक्रम खेती और घर। प्रस्तुतकर्ता थे नरेश नागदा और अनीता गन्ना। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 8 बज चुके हैं। एक बार फिर से सजा कर लाए हैं आपके लिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत आज केंद्रित है गीतकार संगीतकार राजेश रोशन पर, जिनकी धुनों में कभी प्यार मुस्कुराता है, कभी दोस्ती झूम उठती है, तो कभी दर्द भी सुर बनकर दिल में उतर जाता है। जी हाँ, आज जन्मदिन है हिंदी फिल्म संगीत के बेहद मधुर और संगीतकार राजेश रोशन का। 24 मई 1955 को जन्मे राजेश रोशन महान संगीतकार रोशन के पुत्र हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब राजेश रोशन बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था, लेकिन संगीत उनके खून में था, उनके रग रग में था और उन्होंने संघर्ष करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई। तो एक बार फिर बता दें, उनका जन्म आज ही के दिन 24 मई 1955 को हुआ था।

दोस्तों, जो दर्द को सुर बना दे वही असली संगीतकार कहलाता है। उनके जन्मदिन पर यानी कि राजेश रोशन के जन्मदिन पर आप सुन रहे हैं कुछ अनमोल नगमे। यह वही गीत था जिसने राजेश रोशन को रातों रात सुपरहिट संगीतकार बना दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। कुछ धुनें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, वे हर बार सुनने पर नई लगती है और दिल को हर बार लुभाती है।

श्रोताओं, आकाशवाणी उदयपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। इसे आज हमने केंद्रित किया है संगीतकार राजेश रोशन पर। उनका जन्मदिन है और इसी उपलक्ष्य में उनके कुछ चुनिंदा नगमे आप तक पहुंचा रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर के माध्यम से। आकाशवाणी उदयपुर आप सुन सकते हैं हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी।

साथियों, राजेश रोशन का ये गीत फिल्माया गया शशि कपूर और राखी गुलजार पर। आवाज़ थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। राजेश रोशन की धुनों में जीवन की सादगी और गहराई साफ महसूस होती है। रास्ते बदल जाएं तो गम नहीं, बस मुस्कुरा कर चलना आना चाहिए। अगला गीत आपको सुनाते हैं फिल्म खट्टा मीठा से। आवाज़ एक बार फिर किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

दोस्तों, ये गीत फिल्माया गया था राकेश रोशन और बिंदिया गोस्वामी पर। राजेश रोशन की सबसे बड़ी खूबी थी कि वे साधारण शब्दों को भी असाधारण धुन बना देते थे। खुशियां हमेशा बड़ी नहीं होती दोस्तों, कभी कभी छोटी छोटी बातों में भी जिंदगी मुस्कुरा उठती है। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं स्वामी फिल्म से, आवाज़ येसुदास की। ये गीत फिल्माया गया है शबाना आज़मी पर।

0: काल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: दोस्तों, जो सुर दिल से निकलते हैं वे सीधे आत्मा तक पहुंचते हैं। ऐसा ही गीत अब आपके लिए लेकर के आ रहे हैं फिल्म देश परदेश से, जिसके बोल हैं आप कहें और हम ना आएं, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीत के बोल लिखे हैं अमित खन्ना ने, और ये गीत फिल्माया गया है अपनी अदाओं के लिए जाने जाने वाले देव आनंद और टीना मुनीम पर।

श्रोताओं, आप कहें और हम ना आएं, ये हो नहीं सकता। आप बुलाएं और हम ना आएं, ये हो नहीं सकता। आप बताएं और हम ना सुनें, ये हो नहीं सकता। आप सुनें और हम ना सुनाएं, ये भी हो नहीं सकता। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर के कार्यक्रम फिल्म संगीत, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। फिल्म संगीत आज केंद्रित है सुप्रसिद्ध संगीतकार राजेश रोशन पर। इश्क जब सुरों में ढल जाए तो हर धड़कन गुनगुनाने लगती है, ऐसा ही एक गीत आपके रेडियो सेट पर, फिल्म कहो ना प्यार है से। गीत के बोल ना तुम जानो ना हम, जिसे गाया है लकी अली और साथियों ने, फिल्माया गया है ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल पर।

0: श्रोताओं, इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त करते हैं। फिल्म संगीत आज केंद्रित था सुप्रसिद्ध संगीतकार राजेश रोशन पर। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले होंगे, समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
3: We want peace and stability.
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
3: Importer of energy and much of it comes from that region.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
4: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण

0: रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री

इन्हीं आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और सीबीएसई परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक सीबीएसई की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने सीबीएसई को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यूपीएससी ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए यूपीएससी टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर के कार्यक्रम मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में लगातार 10 बजे तक आप सुनिए ये नगमे।

श्रोताओं, इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अभी ही समाप्त करते हैं। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर रात्रि के 10 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी है। रवि वासरी अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाली विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य उस समय के बंबई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रशांत दे रॉय।
1: इन द रवि वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय पंडित हरुशंकर भट्टाचार्य। बोर्न इन अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली ऑफ अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियंस वेयर हिज ग्रैंडफादर द रिनाउंड सितारिया श्री लाल मोहन भट्टाचार्य इज सेड टू हैव लेड द फाउंडेशन of this rich legacy, and Pandit Harishankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father Sri Ganga Shankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Murali Das Thakur of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Harishankar Bhattacharya moved to Bombay, present day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for his Beenkar style. A top grade sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Harishankar Bhattacharya, with his unique artistic identity as a Zafar Khani Baj, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An empaneled artist of the Indian Council for Cultural Relations, Pandit Harushankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Harushankar Bhattacharya is accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: Pandit Harushankar Bhattacharya sitar vadan ki is prastuti ka aarambh raag darbari ke saath karenge. Yeh bandish aalap aur jod ke saath shuru hogi jo gat

0: में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात मध्य लय तीन ताल में आबद्ध है।
1: पंडित हरशंकर भट्टाचार्य स्टार्ट्स हिज सितार रिसाइटल विद राग दरबारी बिगिनिंग विद अलाप एंड जोर द कंपोजिशन ऑफ द राग इज सेट टू गत इन विलंबित तीन ताल फॉलोड बाय मध्य लय तीन ताल।

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छायानट सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आवत है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानट इन द सितार रिसाइटल। Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Rag Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the Rag is set to Gat in Deep Chandi and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरो शंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत दे रॉय।
1: यू आर लिसनिंग टू राग जिला काफी इन द सितार रिसाइटल बाय पंडित हरो शंकर भट्टाचार्य। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय प्रशांत दे रॉय।
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: एंड विद दिस वी एंड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वाज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी कोलकाता।
2: हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले होंगे। समाचारों की प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि यह फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले

0: That is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी संध्याकालीन प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सवेरे 5:53 पर पहली सभा के प्रसारणों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि। जय हिंद।